0: दूसरों के बारे में गलत बात ना कहें, किसी भी मादक पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 26।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं टिका सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गईं, जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भली भांति परिचित थीं। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहां उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहां होने का कोई अर्थ नहीं है। गुरु, पिता माता, भाई देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूं जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा मन वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

0: प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
2: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी।

0: इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच, एचआईएसटी और आईपीटीवी सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
3: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना

0: बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खडकुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
1: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज एमवी ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तट रक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेनजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी।

0: पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है। बोले, चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमेरिका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार, मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैम्प व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार, कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Centre notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting at Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And in wrestling, Mansi Lathar wins silver medal at Under-20 World Championships in Slovakia. Tanvi and Komal claim bronze medals. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the Bharatiya Janata Party at its headquarters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening its connect with the people. BJP President Nitin Nobin also held a meeting with the newly appointed national office bearers of the party. During the meeting, the BJP passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. A report.
3: BJP President Nitin Nabin said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. In a social media post, Mr. Nabin said that in the resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programs. He said that the party is resolved to undertake a nationwide campaign through BJP workers to take the history, meaning, national significance and glorious legacy of Vande Mataram to every corner of the country. Following the conclusion of the first meeting of the nation

0: Democracy was edged 1-2 by China's Chen Ling Song in a closely contested bout, settling for the silver medal. India added two medals in the bronze medal playoffs. Tanvi defeated Canada's Agnia Kraskova 10-4 in the 57-kilogram category, while Komal overcame Hungary's Eda Balaz 5-2 in the 59-kilogram division to claim bronze. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka will begin today in Colombo. The match will start at 10 a.m. Indian Standard Time. India won the first test by 165 runs and currently lead the series 1-0. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thank you, Pramod. BJP backs Vande Mataram's legacy, headlines The Pioneer, while Hindustan Times headlines, BJP plans drive targets Congress in Vande Mataram resolution. The Asian Age headlines, BJP will weaponize Vande Mataram to blunt opposition attack, woo Gen Z. Almost all leading newspapers carry on the front page the story of the first meeting of the newly appointed office bearers of the BJP. The Tribune headlines, BJP forms special team for Gen Z outreach, Naveen Smriti key faces. While The Hindu says, it's about ideas, perspectives, says Modi after Team Naveen meet. And finally, a story in the Sunday Tribune says, a Kangra girl and her father aced the LLB exam, securing first and third ranks respectively. Anshika Rana topped, while her father Praveen Rana secured third rank. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at the party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Centre notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS Sports Ministers meeting in Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी की नई तश्कील शुदा टीम से मुलाकात की। पार्टी ने वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। मरकज ने टेलीविजन चैनलों पर इश्तेहारात के लिए 12 मिनट की हद खत्म करने को नोटिफाई किया है। भारत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वुज़रा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से होने वाली खूनरेजी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहदा से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। 24 रुकनी अमले वाला एक कार्गो जहाज उड़ीसा के साहिल के करीब खलीज बंगाल में डूब गया। भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और बहरिया ने बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। और कुश्ती में स्लोवाकिया में जारी 20 साल की उम्र तक की आलमी चैंपियनशिप में मानसी लाथर ने चांदी का तमगा जीता, जबकि तन्वी और कोमल ने कांसे के तमगे हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि तंजीम की मीटिंगें नए ख्यालात और नुक्ताए नजर पर मबनी हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत बनाना और अवाम के साथ उसके ताल्लुक को मजीद गहरा करना है। बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने भी पार्टी के नए मुकर्रर करदा कौमी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान बीजेपी ने कौमी गीत वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी की टीम भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के वजीर आजम ने मोदी के अज़्म को पूरा करने के लिए पार्टी की बुनियाद को वसी करने की खातिर मुकम्मल लगन और खलूस के साथ काम करने के लिए अहद बस्ता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नवीन ने कहा कि वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक करारदाद में पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले

0: की मजम्मत और वाजे तौर पर मुखालफत की है जो इस माह की 19 तारीख को लिया गया था। इस फैसले के तहत कांग्रेस ने अपनी 1937 की करारदाद को दोबारा नाफिज करने और कांग्रेस के प्रोग्रामों में वंदे मातरम को सिर्फ उसकी पहली दो बंद तक महदूद रखने का फैसला किया था। पार्टी ने यह अज़्म भी जाहिर किया कि पूरे वंदे मातरम के एहतराम, वकार और विरसे और कौमी हैसियत को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम भारत के कौमी गीत के तौर पर मुल्क के कौमी शऊर और आज़ादी की जिद्दोजहद की एक लाजवाल अलामत है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि बीजेपी कारकुनों के जरिए मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी ताकि वंदे मातरम की तारीख, मफहूम, कौमी अहमियत और शानदार विरसे को मुल्क के हर कोने तक पहुंचाया जा सके। कौमी ओहदेदारों की पहली मीटिंग के अख्ताम के बाद रियासती सुदूर जनरल सेक्रेटरीज और दिगर ओहदेदारों के साथ सेवा संकल्प अभियान के लिए एक कौमी वर्कशॉप मुनक़िद की गई। सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने ऐलान किया कि बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 17 सितंबर को आने वाली सालगिरह के मौके पर एक माह तवील मुल्कगीर सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस मुहिम का मकसद अवामी खिदमत के लिए उनके अज़्म को उजागर करना और बिलखसूस नौजवानों को खिदमत के काम अंजाम देने की तरगीब देना है। नई दिल्ली से सौम्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: मरकजी हुकूमत ने टेलीविजन चैनलों के लिए इश्तहारात की 12 मिनट की हद खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क ज़वाबित 1994 में तरमीम को गजट में शाया किए जाने के बाद नाफिजुल अमल हो गया है। इससे कबल वजारत इतलात व नशरियात ने कहा था कि टेलीविजन नशरियात के शोबे में आने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र इश्तहारात की मुद्दत से मुतालिक मौजूदा ज़वाबित पर दोबारा गौर करने की जरूरत महसूस की गई थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: वजारत ने कहा है कि भारत में टेलीविजन नशरियात का शोबा वसी हद तक इश्तहारात पर मुनहसर है, ख्वाब वो पे चैनल हो या फ्री टू ईयर। वजारत ने मजीद कहा कि रिवायती टेलीविजन चैनल और डिजिटल मीडिया के दरमियान गैर मुसाबकती माहौल था, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर इश्तहारात के दौरानिए की हद से मुतालिक ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं थी। केबल टेलीविजन नेटवर्क जाब्ते 1994 के तहत 2006 में पहली मरतबा टेलीविजन इश्तहारात के लिए दौरानिए की हद मुतारिफ की गई। इसके बाद से टीवी नशरियात के शोबे में नुमाया तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। वजारत के मुताबिक नशरियाती शोबे में नुमाया तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। 2006 में जहां सिर्फ 62 टीवी चैनल्स थे, वहां अब इनकी तादाद 900 से ज्यादा हो गई है। पहले केबल टीवी टेलीविजन चैनल्स की जरूरियात की बुनियाद का जरिया था और इसकी नशरियाती गुंजाइश महदूद थी, जिसके बायस सारिफिन के पास पसंद या नापसंद का महदूद मौका था। आकाशवाणी दिल्ली से जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: भारत ब्रिक्स 2026 की अपनी सदारत के तहत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेलों के वुजरा की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन ममालिक के खेलों के वजीरों और वफूद के सरबराहान के साथ मीटिंग में शिरकत करेंगे। पेश एक रिपोर्ट।
0: ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के वजीरों की मीटिंग का मकसद खेलों के जरिए ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान ताउन को मजीद मुस्तहकम करना और अवाम से अवाम के दरमियान करीबी राबते को फरोग देना है। मीटिंग में रिवायती और मकामी खेलों, खेलों की टेक्नोलॉजी और खेलों के साजो सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मीटिंग में ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन ममालिक के नुमाइंदों के हुकूमती बयान, दोतरफा मीटिंगें और सकाफती सरगर्मियां भी शामिल होंगी। तवक्को है कि मीटिंग के अख्ताम पर खेलों से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों का मुश्तरका ऐलामिया मंजूर किया जाएगा। प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर शरीक मुल्कों के दरमियान दोस्ती, यकजहती और ताउन के जज्बे को फरोग देने के लिए आज सुबह सवेरे ब्रिक्स दोस्ती साइकिलिंग दौड़ का इनेकाद किया गया। विशाखापट्टनम में कल ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के खेल के वजीरों की मीटिंग मुश्तरका ऐलामिया को मंजूर किए जाने के साथ इख्तिताम पजीर हुई। मीटिंग में नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी के फरोग, कारोबारी सरगर्मियों, जिद्दत तराजी और समाजी तरक्की के शोबों में मौके को उसत देने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: केमिकल्स और खादों के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कल खरीफ के मौजूदा और आइंदा रबी सीजन के लिए खाद के महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में मुनक़िदा मीटिंग में महकमा खाद के सेक्रेटरी और आला अफसरान मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मुल्क में खाद की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद की मुसलसल और बिला रुकावट फराहमी और बरवक्त दस्तयाबी को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। مرکزی وزیر محترمہ انوپریہ پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کو تحقیق، جدت ترازی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی بنیاد پر دنیا کی فارمیسی کی اپنی شناخت سے آگے

बढ़कर दुनिया की तजर्बागाह के तौर पर उभरना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में मुनाकिद IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 के तीसरे एडिशन से खिताब करते हुए मोहतरमा पटेल ने सेहत के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनकलाबी सलाहियतों और उसके मुस्बत असरात को उजागर किया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर आज से रूस का दो रोजा सरकारी दौरा करेंगे। वजीर मौसूफ तिजारती, इक्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफती ताउन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन के 27वें इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 70 से ज्यादा बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने अकवाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को खत लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल पर मुदाखलत करने की अपील की है। उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से होने वाली खूनरेजी को रोकने और शहरियों की जानों के तहफ्फुज के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। यह अपील मकबूजा इलाके में बढ़ते हुए तशद्दुद और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के दरमियान सामने आई है, जहां पाकिस्तानी फोर्सेज की सख्त कार्रवाई में सैकड़ों अफराद हलाक और जख्मी हो चुके हैं। यह खित्ता इस वक्त भी सख्त नाकाबंदी, कर्फ्यू और मवासलात की मुकम्मल बंदिश का शिकार है। बरतानवी कानून साजों ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल अब मुसलसल बैनुल अक्वामी तवज्जो और कोशिशों की मुतकाजी है, ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके, जवाबदही तय की जा सके और पुरअमन हल की राह हमवार हो सके। उन्होंने अक्वामे मुत्तहदा से भी अपील की कि वह पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर दे कि लोगों की मनमानी गिरफ्तारियों का खात्मा किया जाए, गिरफ्तार अफराद को कानूनी कार्रवाई का मुनासिब हक और कानूनी मदद तक रसाई दी जाए और मकबूजा इलाके में इंसानी हकूक के आजाद मुशाहिदीन को मुनासिब रसाई फराहम की जाए। हुकूक इंसानी के इदारे बलूच यकजहदी कमेटी ने बलूचिस्तान के मस्तंग इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से शहरियों पर किए गए ड्रोन हमले को सरकारी दहशतगर्दी का वाकया करार दिया है। जुमे को मस्तंग जिले के खड़कोचा इलाके में एक बागीचे पर ड्रोन हमले के बाद यह बयान सामने आया है। इस हमले में वहां काम करने वाले 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 3 दीगर जख्मी हुए। पाकिस्तानी फिजाइया के जरिए बलूचिस्तान के सुराब जिले के गिदर इलाके में रिहायशी इलाके पर मुबैना अंधाधुंध बमबारी के महज चंद दिन के बाद यह हमला किया गया है। इस बमबारी में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा अफराद मारे गए थे। पनामा का एक परचम बरदार जहाज जिसमें अमले के 24 अफराद सवार थे कल खलीज बंगाल में डूब गया। इस जहाज में ज्यादातर अमला चीनी शहरियों पर मुश्तमिल था। हुक्काम ने बताया कि जहाज ओडिशा के साहिल से तकरीबन 240 बहरी मील दूर गर्कयाब हुआ। जहाज MV ओशन विनर पर सवार अमले में 20 अरकान चीन के, 3 म्यांमार के और एक बांग्लादेशी शहरी शामिल थे। यह जहाज ओडिशा से तकरीबन 38,000 टन लोहे का खाम माल लेकर सिंगापुर जा रहा था। यह 20 अगस्त को रात तकरीबन 11:42 पर पारादीप बंदरगाह से रवाना हुआ था। भारतीय साहिल मुहाफिज दस्ते और भारतीय बहरिया ने इमदाद और बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 2 अफराद को बचाया जा चुका है। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा है कि तिजारती मुजाकरात नाकाम होने के बाद कनाडा अमरीका की जानिब से आयात किए गए नए महसूल का जवाब डॉलर के बदले डॉलर से देगा और कनाडा अपने कारकुनों, किसानों, खानदानों और कारोबारों के तहफ्फुज़ के लिए अहद बस्ता है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा कि मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल और विदर्भ के इलाकों में आज शदीद बारिश के हालात रहने का इम्कान है। स्लोवाकिया में जारी 20 साल की उम्र तक की आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खातून पहलवानों ने मुल्क के लिए मजीद 3 तमगे जीते। मानसी लाथर ने चांदी, जबकि तन्वी मकदूम, गंदेश मकदूम और कोमल ने कांसे के तमगे हासिल किए। 68 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में मानसी लाथर को चीन की चैनलिंग सॉन्ग ने सख्त मुकाबले में 1-2 से शिकस्त दी, जिसके बाद उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। भारत ने कांसे के तमगों में मजीद 2 तमगे हासिल किए। 57 किलोग्राम जुमरे में तन्वी ने कनाडा की एग्निया को 10-4 से शिकस्त दी, जबकि 59 किलोग्राम जुमरे में कोमल ने हंगरी की एडब्लेजिस को 5-2 से हराकर कांसे का तमगा जीता। क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था और भारत को इस सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है।
भारतीय एथलीट्स रोहित यादव और मुरली श्री शंकर ने बिलतरतीब नेजा फेंकने और लॉन्ग जंप मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। ये मुकाबले कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले आलमी एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर

0: 2026 के तहत मुनाकिद हुए। रोहित यादव ने नेजा फेंकने के अपने छठे और आखिरी कोशिश में 87.68 मीटर की जाती तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए यह खिताब अपने नाम किया। खवातीन के लॉन्ग जंप में कौमी रिकॉर्ड याफ्ता एनसी सोजन ने 6.71 मीटर की छलांग के साथ भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कामयाबी का आगाज किया। शायली सिंह ने 6.56 मीटर के साथ दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद ने तीसरे नंबर पर रहीं। नौमर एथलीट अबानिया राजाराजन ने भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए खातिन की 100 मीटर दौड़ में 11.34 सेकंड में फाते रहीं और 20 साल से कम उम्र का कौमी रिकॉर्ड दोबारा अपने नाम किया। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के सिलीगुड़ी के दौरे को खसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने सिलीगुड़ी में मगरबी बंगाल के पहाड़ी इलाकों के नुमाइंदों और दीगर मुतालिका फरीकों के साथ मीटिंग की और कहा कि आईन के दायरे में उनके मसाइल का जल्द से जल्द तस्फिया किया जाएगा। वजीर खारजा डॉ ए जयशंकर आज रूस के 2 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इंकलाब की खबर है, भारतीय बहरिया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची की जानिब से तैयार करदा तीसरा आबदोशिकन जहाज मंगरोल सौंपा गया।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी की नई तश्कील शुदा टीम से मुलाकात की। पार्टी ने वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। मरकज ने टेलीविजन चैनलों पर इश्तिहारात के लिए 12 मिनट की हद खत्म करने को नोटिफाई किया है। भारत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वुजरा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से होने वाली खूरेजी के खात्मे के लिए अक़वामे मुत्तहिदा से मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य हस्ताक्षर एवं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सोई हुई राष्ट्र चेतना को जागृत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनके काव्य में भारत के स्वर्णिम अतीत का गौरव, मानवीय संवेदना और नवजागरण का उज्जवल भविष्य समाहित है। गुप्त जी के युगांतकारी साहित्यिक अवदान, राष्ट्र विमर्श में उनकी प्रासंगिकता तथा उपेक्षित नारी पात्रों जैसे यशोधरा, उर्मिला के प्रति उनकी संवेदनशील दृष्टिकोण पर लीजिए सुनिए परिचर्चा। अतीत का आदर्श, भविष्य का उत्कर्ष। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुधा सिंह, श्यामलाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत कुकरेती, लेखिका और प्राध्यापक डॉक्टर पूनम सिंह। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं डॉक्टर पूनम।
1: भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ, है देवभूमि वह भारत वर्ष हमारा है। आज हम एक ऐसे कवि की पूरे साहित्यिक मूल्यांकन पर अपनी दृष्टि को डाल रहे हैं, जो अतीत में उन्होंने आदर्श जो हमारे समक्ष रखा और उसी के आधार पर भविष्य के उत्कर्ष की नींव रखी है। जब कोई राष्ट्र अपनी अस्मिता के संकट से जूझ रहा होता है, जब पराधीनता का अंधकार भविष्य के सारे सपनों को लील रहा होता है, तब साहित्य ही वह आलोक स्तंभ बनता है जो राह दिखाता है। मैथिली शरण गुप्त का संपूर्ण साहित्यिक अवदान इसी आलोक स्तंभ की भांति भासवान है। उनका काव्य केवल शब्दों का समुच्चय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों का एक विशाल शब्द कोश है। उन्होंने वर्तमान की दिशा देने के लिए अतीत के गौरव मई पृष्ठों को पलटा है। उनका मानना था कि जब तक हम अपनी जड़ों को, अपने अतीत के उदात्त आदर्शों को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम एक दीप्तिमान भविष्य

0: का निर्माण नहीं कर पाएंगे। मैं प्रोफेसर सुधा मैम से ये पूछना चाहती हूँ कि जो उनका अतीत का आदर्श उन्होंने अपनी रचनाओं में रखा, जिसके बारे में कहा जाता कि भारत भारती जो है एक तरह से सांस्कृतिक जागरण का दस्तावेज कहा जाता है, उस पर मैम आपके विचार जानना चाहते हैं।
1: दरअसल मैथिली शरण गुप्त जिस संस्कृति का निर्वहन करते थे और जिसको आदर्श रूप में लेकर वह अपने साहित्यिक रचनाओं में आए, वे स्वयं अकेले उनकी समझ से केवल नहीं पनपा था बल्कि पूरे वातावरण में व्याप्त था। और मैथिली शरण गुप्त जी की खासियत यह है कि द्विवेदी युग के साथ साथ उनका क्रमिक विकास हुआ, उनके रचनाशीलता का, उनके भावबोध का, विचार बोध का क्रमिक विकास हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी पृष्ठभूमि थी जो उनको विरासत में मिली थी, जो उनके पिता से उनको मिली थी, और उस वैष्णव भक्ति परंपरा से जो उनकी पारिवारिक संस्कृति का एक हिस्सा थी, उस वैष्णव भक्ति परंपरा का वो अपने भीतर भी कहीं ना कहीं एक सूत्र पाते थे। लेकिन सवाल था कि उस समय केवल वैष्णव भक्ति परंपरा से काम चल जाता तो शायद मैथिली शरण गुप्त चला लेते। देश पराधीन था, सबसे बड़ी चिंता जो थी देश की पराधीनता की थी और देश के सांस्कृतिक नवोत्थान की थी। एक तरफ नवजागरण की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, नवजागरण के इस दूसरे कालखंड को जिसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आगे बढ़ाते हैं, जागरण सुधार काल कहा गया। जागरण काल भारतेंदु युग था और जागरण सुधार काल यह द्विवेदी युग कहा गया। यह जो जागरण सुधार काल था, आप देखिए भारतेंदु युग में जिस साहित्य की जो भावभूमि बदली, संस्कृति के एक अंग के रूप में साहित्य को देखा जाता है, और संस्कृति में तब्दीली जब आती है या उस पर दबाव जब बनता है, बाहरी या भीतरी दबाव या अंतर्द्वंद किसी तरह का पैदा होता है, तो वह साहित्यिक प्रतिफलन के रूप में भी दिखाई देता है। तो जो पहला दौर था, जो भारतेंदु युग का दौर था, उसमें आप बहुत साफ देख सकती हैं कि सांस्कृतिक बोध के बदलने के साथ साथ साहित्यिक बोध भी बदलता है, साहित्य का आधार भी बदलता है।
0: बिल्कुल।
1: अब साहित्य जनता की तरफ यानी जनोन्मुखी साहित्य का एक दौर चलता है। अब वो साहित्य वो नहीं था जो केवल राजाओं महाराजाओं के कान में मकर ध्वज की छींटे डालने वाला साहित्य नहीं था। अब साहित्य की भावभूमि बदलती है। सवाल सबसे बड़ा यही था कि ये साधारण बोली बानी जो साहित्यिक अभिरचना का आधार बन सकती थी, इसको किस तरह से उस सांस्कृतिक भावभूमि जो प्राचीन संस्कृति और साहित्य का वहन करते हुए आ रही थी और नवीन आधुनिक चेतना, इन दोनों से समन्वित करके ठीक तरीके से इसको उकेरा जाए और खड़ी बोली हिंदी का निर्माण किया जाए। आप देखें कि भारतेंदु स्वयं दुविधाग्रस्त थे खड़ी बोली हिंदी को लेकर, लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते अब ये स्पष्ट हो गया कि खड़ी बोली हिंदी ही कविता की भाषा हो सकती है और इसी में सारी कुश्ती करनी है, सारा जो दाव पेच है इसी में चलना है, खड़ी बोली हिंदी को संवारना है। एक नई चीज थी ये, कविता की भाषा गद्य की भाषा दोनों एक होगी और इस तरह से चिंतन की भाषा भी अंततः वही होगी, ये एक बहुत बड़ी चीज थी।
0: तीनों का समन्वय कितना अपने बहुत आप बड़ा, बड़ा बहुत बड़ा काम था
1: और एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक दायित्व था जिसको मैथिली शरण गुप्त ने पूरा किया। और इसमें देखिए कि खड़ी बोली हिंदी को जिस रूप में मैथिली शरण जी ने संवारा वो अभूतपूर्व है। कोई चीज जो परंपरा से आ रही थी उनसे छूटी नहीं।
0: हाँ।
1: और आधुनिक बोध और जिसे हम युग बोध कहते हैं।
0: हाँ।
1: जो उस समय गांधी जी के प्रभाव से हिंदी खड़ी बोली और पूरे सामाजिक जनजीवन में जो चीज धीरे धीरे चेतना रूप में पसर रही थी कि हमें औपनिवेशिक संस्कृति से, औपनिवेशिक दासता से, औपनिवेशिक पराधीनता से मुक्ति पानी है, उनकी संस्कृति से भी मुक्ति पानी है, एक अपनी समानांतर संस्कृति विकसित करनी है जो आधुनिक हो लेकिन पुरातनता के अच्छे संस्कारों को छोड़कर न चली आए, उसमें केवल दो लोग ऐसे थे जो युग की चेतना के साथ साथ चल सके, उसमें एक नाम और सबसे महत्वपूर्ण नाम मैथिली शरण गुप्त जी का है, दूसरा बड़ा नाम हरिऔध जी का है। हरिऔध जी ने भी कम प्रयोग नहीं किए, ठेठ हिंदी का ठाट, अधकिला फूल जैसे रचनाएं उन्होंने लिखी, भाषिक प्रयोग किए, लेकिन जो सफलता मैथिली शरण गुप्त जी को मिल पाई वह शायद हरिऔध जी को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। लेकिन दोनों नाम लिया जाए तो ये दो बड़े नाम द्विवेदी युग में बहुत प्रत्यक्षता आपको दिखाई
0: देते। लगता है कि हरिऔध जी में वो संस्कृति का वो विस्तार रूप हम नहीं देख पाते हैं, वो उस तरह से वर्ण विषयों की विविधता नहीं देख पाते हैं जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी ने संस्कृति को पूरे समग्र रूप में, जिस तरह से उन्होंने एक समग्र चेतना के रूप में, एक राष्ट्रीय चेतना के रूप में और एक सांस्कृतिक धर्म के रूप में,
1: इसका कारण है, इसका कारण ये है कि मैथिली शरण गुप्त जब लिख रहे थे तो हरिऔध जी की तुलना में गुप्त जी ज्यादा उन चरित्रों के करीब गए जो जनता के जीवन में रचे बसे चरित्र थे, जैसे राम।
0: हाँ।
1: सीता, उर्मिला, यशोधरा, गांधारी, कैकेयी, ये वे चरित्र थे जो महाकाव्यात्मक

0: चरित्र हैं। और महाकाव्यों की खूबी ये होती है कि वे चाहे निरक्षर जनता हो चाहे साक्षर जनता हो, दोनों को प्रभावित करती
1: में वो बसे
0: क्योंकि
1: ही
0: उसके
1: है।
0: आर्ट फॉर्म अलग अलग होते हैं। आप उसे पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समूह गायन भी कर सकते हैं, मंचन भी कर सकते हैं। इतनी विविधता है उसमें महाकाव्यात्मक रूपों में। जनजीवन में उसकी पैठ इतनी गहरी है कि शिक्षित अशिक्षित सब उससे प्रभावित होता है। चुनौती यहाँ थी कि जो चले आते चरित्र हैं उन चरित्रों में कोई नई चीज कैसे शामिल की जाए जो युग चेतना के अनुकूल हो, और यहीं पर एक बड़े कवि की पहचान होती है। देखिए, सामाजिक समस्याएं तो थीं। आप एक घड़ी सोच लीजिए कि कविता साहित्य 1920 1910 में ना लिखा जाता
1: जी।
0: तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? बिल्कुल सामाजिक आलोड़न विलोड़न जो चल रहा था, क्रांतियां जो हो रही थी, परिवर्तन की आहटें जो सुनाई दे रही थी, है ना, देश में मुक्ति की आकांक्षा, स्वतंत्रता की आकांक्षा, नए परिवर्तनों को लेकर ललक जो थी वो तो थी, वो तो रहती। सवाल था कि कविता उसके साथ कैसे चले, साहित्य उसके साथ कैसे चले, जिसमें युग की धड़कन दिखाई दे, युग का स्पंदन दिखाई दे। और यह काम मैथिली शरण गुप्त ने किया। उन्होंने चली आती जो धारा थी उसको तो अपने साथ लिया ही, लेकिन उसको युग के साथ जोड़ा, और उसमें उन्होंने ऐसे चरित्र गढ़े जो मुक्ति के आकांक्षी थे, ऐसे चरित्र गढ़े जो मिथकीय होते हुए भी नए सवाल खड़े कर रहे थे,
1: बिल्कुल,
0: और ऐसे चरित्र गढ़े जो राष्ट्र और धर्म की प्रेरणा भी बन रहे थे, ऐसे चरित्र गढ़े जो मानवता और विश्व मानवता का संदेश भी दे रहे थे। तो संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने,
1: स्वर्ग बनाने आया।
0: ये क्या
1: बिल्कुल,
0: था?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये नई सांस्कृतिक उद्भावना ही तो थी।
1: हाँ, हाँ।
0: जो एक व्यक्ति में विश्व देखती है।
1: हाँ, अब मैं प्रोफेसर कुकरेती जी से बात कर रही हूँ। जो पूरा का पूरा मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य है, उनका पूरी जो रचना का पूरा धरातल है, वो बहुत लंबे समय से अगर हम देखें, उनका पूरा जो टाइम पीरियड है वो नवजागरण काल का है, जैसा कि मैडम ने कहा। तो नवजागरण में खास तौर से जो प्रवृत्तियां थी वो उनकी रचनाओं में पूरी तरह से आई हैं, पूरे प्रभाव के साथ आई हैं। लेकिन आपको कहाँ ऐसा लगता है कि उस नवजागरण की प्रवृत्तियों का भी अतिक्रमण करके कुछ नए जागरण, नई चीजें किस तरह से उन्होंने आत्मसात किया नवजागरण को, और आत्मसात करते हुए भी उसको छोड़ा भी, जैसा कि मैडम ने भी कहा। और उनकी कालजयी रचनाओं का जो आज भी हम पाठ कर पाते हैं और लगता है कि वो वर्तमान की ही समस्याएं हैं, आज भी हम उन्हीं सारी चीजों से जूझ रहे हैं। तो नवजागरण के संदर्भ में अगर हम मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को देखें तो हम किस प्रकार से उसका आकलन कर पाते हैं?
2: देखिए, अगर हम उनके साहित्य को समग्रता में देखते हैं तो वो उन तीन रचनाकारों में दिखाई देते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक लिखा। हरिवंश राय बच्चन थे, सुमित्रानंदन पंत थे और मैथिली शरण गुप्त। संयोग से ये तीनों रचनाकार एक कालखंड में साथ साथ भी रहे।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन ये जो दो रचनाकार थे, चाहे बच्चन जी हो या पंत जी हो, इनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इन्होंने अपनी कंडीशनिंग को नहीं तोड़ा, लिखते रहे ये। लेकिन जब हम मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को देखते हैं तो वो जैसे अपने लिए खुद चुनौतियां पेश करते हुए नजर आते हैं। एक जैसे विषय ऊपर से दिखाई देते कि उन्होंने लगभग एक जैसा विषय लिया। विचार के धरातल पर देखें तो गांधीवाद के साथ वो जुड़े रहे,
1: बिल्कुल,
2: है ना। लेकिन वो केवल गांधीवाद तक नहीं रहे,
1: गर्म दल के साथ भी उनकी हो रही है क्रांति वाली भावनाएं जो है उनकी। बिल्कुल।
2: लेकिन दो तीन टैग उनके साथ लगाए जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: कि एक तो सामान्य तुकवादी कवि हैं, दूसरा कि वो एक सामान्य से वैष्णव कवि हैं, राम कथा लिख देने से आप सीमित उसको कर देते हैं। तीसरा जो इनके ऊपर लगाया गया कि केवल इनके यहाँ सांस्कृतिक चेतना मिलती है, लेकिन उस संस्कृति में भी क्या ऐसा है, जैसे सुधा जी ने बताया कि बहुत सारी चीजों को छोड़ते भी चले गए।
1: बिल्कुल।
2: उनके यहाँ एक संपादन जो है दिखाई देता है।
1: हाँ।
2: कि अपने आप को भी संपादित होकर करते चलते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो ये बड़ी बात है क्योंकि हम लोग अपने आप को नहीं बदलते।
1: हाँ।
2: जो कि इनको बड़ा कवि बनाता है। तो जो अतीत था वहां से वो सांस्कृतिक आत्मविश्वास अर्जित करते हैं। क्या लिया उन्होंने अतीत से? उनकी जितनी भी अतीत पर आधारित रचनाएं हैं, तो वहां वो सांस्कृतिक आत्मविश्वास अर्जित करने के लिए जाते हैं। जो वर्तमान है वहां पर भी वो जाते हैं, यानी वर्तमान के कवि हैं वो। उस दौर में, द्विवेदी युग के दौर में, मुझे लगता है कि हरिओत से भी ज्यादा अपने वर्तमान को अगर किसी ने परीक्षित किया है तो मैथिली शरण गुप्त है।
1: हाँ, उनकी रचनाओं में आप, हाँ, इस विषय, हाँ, आप देखिए बहुत सारे पैराडाइम,
2: हाँ,
1: उनकी,
2: यानी वो नवजागरण के जितने पहलू हो सकते हैं कि उसमें है, तो वहां पर भी वो सबसे पहले एक हमें बड़ा मूल्य देते हैं कि जो वर्तमान है इसमें सबसे पहले हमने अपना आत्म परीक्षण करना है।
1: बिल्कुल।
2: और जो भविष्य है वो उनको कर्म के लिए पुकारता है। तो तीनों जो उनके कविता के आयाम हैं वो उनको उस दौर का यानी आधुनिक हिंदी नवजागरण का एक महत्वपूर्ण रचनाकार उनको सिद्ध करता है। दूसरी बात

0: रचनाएं अगर हम देखें, यशोधरा है, भारत भारती है और साकेत, ये रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कि ये अतीत के बहाने वर्तमान को डिफाइन करती हैं। यहां तक कि जो उनकी रामकथा है वो तुलसी या वाल्मीकि की रामकथा से अलग है। तो कुछ चीजें थी जो कि उनको अपने समकालीनों से अलग साबित करती थी। एक और यहाँ पर वो जुड़ती है बात कि जो उनका भारत भारती है, तो हाल ही ने एक मुसद्दस लिखा था,
1: हाँ
0: उनके साथ भी
1: बिल्कुल
0: टकराने की वो बात करते हैं कि जी उसकी प्रतिक्रिया में लिखा गया, ऐसा नहीं था। दोनों की भावभूमि बिल्कुल अलग है। और मैथिली शरण गुप्त का जो भारत भारती है, आप ये कह सकते हैं कि जो आजादी की लड़ाई के लिए, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, जो भारतीय है वो क्या सोचते हैं और उनको क्या करना चाहिए। मुसद्दस की जो कहना चाहिए आधार भूमि है वो कुछ हद तक धार्मिक है। इनके यहाँ वो राष्ट्र के साथ
1: राष्ट्र
0: जुड़े,
1: की
0: यानी
1: भावना।
0: देशबोध,
1: हाँ
0: देशबोध को
1: देशबोध के
0: जगाने
1: लिए।
0: वाली जो बात
1: हाँ
0: है इनके यहाँ है, वो दिखाई देती है।
1: प्रोफेसर सुधा मैम, मैं जब बात करती हूँ मैथिली शरण गुप्त की, उनकी जो नारी दृष्टि है वो एक व्यापक रूप में हम देख पाते हैं, और जहाँ पर वो कह सकती हूँ मैं कि छायावादी कवियों से भी ज्यादा नारी दृष्टि उनकी उज्ज्वल, मैं उदात्त देख पाती हूँ।
2: दरअसल नवजागरण का पूरा एजेंडा स्त्री के बगैर अधूरा है। हालांकि नवजागरण के केंद्र में स्त्री है, कहीं घोषित नहीं किया गया कि स्त्री के लिए नवजागरण था, फिर भी नवजागरण
0: हाँ
2: में जिन अंधेरे कोनों में प्रकाश डाला गया, अंधेरे कोनों में रोशनी बिखेरी गई, सबसे अंधेरा कोना स्त्री का था, तो जाहिर है
1: बिल्कुल
2: उसे तो आना ही था।
1: जी
2: और ये चेतना बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक के नवजागरण में थी, पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में भी इसका असर पड़ा। बंगाल के नवजागरण से, जैसा सुमित सरकार ने अपनी पुस्तक में लिखा है, बंगाल के नवजागरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित था हिंदी नवजागरण, हिंदी बेल्ट का।
1: जी
2: और संयोग से हिंदी पत्र पत्रिकाओं और मीडिया का जो संसार था वो बंगाल से ही पनपा। और इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ साथ रविन्द्रनाथ की भी बड़ी भूमिका थी।
1: जी
2: रविन्द्रनाथ ठाकुर ने काव्य उपेक्षिता
1: हाँ
2: एक निबंध लिखा था, जिसमें उन्होंने लक्षित करके बताया था कि कविता में, यानी जो हमारी माइथोलॉजिकल कविता है, उसमें कितनी स्त्रियां उपेक्षित रह गईं, संभावनाशील स्त्रियां उपेक्षित रह गईं, और उन उपेक्षित स्त्रियों को कैसे उनके योग्य स्थान समाज में और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में नहीं मिल पाया। इस लेख से महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसको मैथिली शरण गुप्त जी से कहा, और गुप्त जी इस कार्य को, जैसे सिपाही अपने सूबेदार के कहने पर या नेता के कहने पर सन्नद्ध हो जाता है कार्यपूर्ति के लिए, गुप्त जी सन्नद्ध हो गए और उन्होंने एक के बाद एक जितनी मिथकीय चरित्रों की महत्वपूर्ण स्त्रियां थी उन सबके ऊपर उन्होंने लिखा, और इतना शानदार लिखा कि आज भी चाहे हम किसी भी पंक्ति को उठा लें, जब बात करते हैं तो गुप्त जी एक मानक के रूप में सामने खड़े हो जाते हैं।
1: बिल्कुल
2: चाहे
1: बिल्कुल
2: जयशंकर प्रसाद की पंक्ति उठा लें या बाद के परवर्ती लेखकों कवियों की पंक्ति उठा लें, लेकिन मानक के रूप में हमारे सामने पहले मैथिली शरण गुप्त खड़े होते हैं
1: जी
2: कि उन्होंने कैसी यशोधरा गढ़ी थी, उन्होंने कैसी कैकेयी गढ़ी थी, उन्होंने कैसी
1: कैसे
2: उर्मिला गढ़ी
1: उर्मिला
2: थी,
1: गढ़ा
2: कैसी
1: था
2: सीता
1: बिल्कुल
2: गढ़ी थी, कैसी राधा गढ़ी थी, कैसी यशोधरा गढ़ी थी। फिर आप देखिए कि बाद के लोगों ने जब कहा कि अश्रु से भीगे अंचल पर यह संधि पत्र लिखना होगा, जयशंकर प्रसाद ने जब कहा, तब तुलना की जाती है कि गुप्त जी कहाँ तक पहुंचे थे और जयशंकर प्रसाद कहाँ तक पहुंचे। अब जैसे एक चित्र आप देखिए, कैकेयी का जिक्र हम लोग अमूमन जिस तरह से समाज में होता है एक कुटिल स्त्री के रूप में, हालांकि राजरानी थी, कैकेयी के गुण इतने ज्यादा थे, माइथोलॉजी में भी मिथक में भी कैकेयी के गुण इतने ज्यादा बताए गए हैं कि वह एक समर्थ सशक्त युद्ध कला में पारंगत स्त्री थी जो दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। कैकेयी को वरदान ही कैसे मिला था, अगर इस प्रक्रिया को जान लें कि वो वरदान जिसके कारण राम को वनवास हुआ और पूरी रामायण की कहानी लिख दी गई, वह कहानी घटित ही क्यों हुई अगर कैकेयी इतनी सशक्त ना होती, इतनी पावरफुल चरित्र नहीं होती माइथोलॉजी में, तो वरदान उसे ना मिलता, इतनी योग्य
1: बिल्कुल
2: कुशल ना होती। उसने रथ के पहिए में अपनी उंगली
1: उंगली
2: लगा दी
1: जी
2: और इस
1: बिल्कुल
2: तरह से आप समझिए, ये रथ केवल मिथकीय रथ है, ध्यान रखिएगा। अभी जब हम सभ्यता संस्कृति के विकास की बात करते हैं तो चैरियट इज अ मतलब बहुत बड़ा एक उपकरण है सभ्यता के ट्रांसफॉर्मेशन का, और उस रथ के संचालन में कैकेयी की भूमिका कोई छोटी भूमिका नहीं है।
1: जी
2: जब आप हैरोल्ड इनिस को पढ़ते हैं, मार्शल मैक्लुहान को पढ़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तकनीक का विकास कैसे सभ्यता के विकास को
1: बिल्कुल
2: संभव बनाता है,
1: बिल्कुल
2: और उस सभ्यता के विकास में एक एक इंस्ट्रूमेंट का, इस घड़ी का, आपके कैलकुलेटर का, आपके कैलेंडर का, आपके सूरज घड़ी का, और इस रथ के पहिए का, रथ के पहिए में भी जो पत्थर का रथ था उसके पहिए का, लोहे के रथ के पहिए का, बेत के रथ के पहिए का, लकड़ी के रथ के पहिए का, अलग अलग सभ्यता के विकास को गति देने में भूमिका है।
1: जी
2: और उस रथ के पहिए में कैकेयी अपना हाथ लगा देती है और दशरथ को रथ से गिरने से बचाती है और युद्ध कौशल में वो युद्ध संचालन करते हुए जीत जाते हैं, तब खुश होकर ये वरदान मिलता है। कितने उदाहरण मिलते हैं स्त्रियों के युद्ध स्थल पर जाने के, बहुत कम। उसमें कैकेयी थी, उस कैकेयी के मन में किस तरह से दुर्भावना आ गई राम के प्रति और एक लोभ आ गया अपने पुत्र मोह में भरत के प्रति। पुत्र मोह की ही कहानी महाभारत है,
1: बिल्कुल
2: ध्यान रखिएगा। पुत्र मोह एक ऐसा डायमेंशन है जो महाभारत में भी है और रामायण में भी है।
1: जी,
2: फर्क इतना है कि रामायण स्त्री के पुत्र मोह की कहानी है और महाभारत पुरुष के धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की कहानी है। तो उस पुत्र मोह के कह सकते हैं आरोप से या उसके आक्षेप से या उसकी लांछना से स्त्री के लिए जिस एक सामाजिक हेय और निंदनीय पदबंधों का निर्माण होता है, धृतराष्ट्र के लिए तो वैसा नहीं हुआ। मैं ये नई बात आज आपके सामने कह रही हूँ, कैकेयी जिस तरह से एक कलंकित स्त्री के रूप में आ गई, सारे गुण उसके पीछे चल गए। धृतराष्ट्र तो अवगुणों के कह सकते हैं कमियों के खान थे, कैकेयी तो नहीं थी। कैकेयी और धृतराष्ट्र में कोई तुलना है?
1: नहीं,
2: कोई तुलना नहीं,
1: नहीं है।
2: दोनों के चरित्र में, दोनों को जिस तरह से महाभारतकार ने और रामायणकार ने खड़ा किया है, कैकेयी सर्वगुण संपन्न स्त्री है और बुद्धि कौशल विजडम जिसे हम कहते हैं, बुद्धि और विवेक उससे संचालित स्त्री है। लेकिन कैकेयी के सारे गुण जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं सिर्फ पुत्र मोह में। और धृतराष्ट्र का जो स्वयं शुरुआत ही जिनकी कमियों के कारण जिनको राजसत्ता से वंचित किया जाता है बड़े पुत्र होने के बावजूद भी, और भी बहुत सारी कमियां थी उनमें, लेकिन धृतराष्ट्र के साथ वो कलंक नहीं जुड़ता, बस एक मोह का अंधापन उनका दिखता है। कितना सौम्य है भाषा स्त्री के लिए और पुरुष के लिए, मजेदार चीज है। यहाँ एक युग कवि की परीक्षा थी कि मैथिली शरण गुप्त कैकेयी को कैसे लाए। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जब मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कैकेयी के संदर्भ में, तो यहाँ पर वो तुलसीदास को याद कर लीजिए। तुलसीदास कहते हैं कि सारा दोष गिरा का है, यानी सरस्वती का है। वो जवान पे आ गई, दिन में एक बार आती है और गलत सही जो भी बोल दो सच हो जाता है। तो इस तरह से सरस्वती पर दोष डालकर तुलसीदास मुक्त हो जाते हैं, मंथरा के मुंह से वो कुटिल वाक्य कहला देते हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी का काम इतने से नहीं चलता, क्योंकि इससे आधुनिक जो पाठक है, आधुनिक जो अध्ययन करता है, आधुनिक जनता है, वो प्रभावित नहीं होती। तो कैकेयी के मन में आता है कि मेरा पुत्र जिसको मैंने इतने संस्कारों से पाला, इतने सच्चरित्र जीवन की शिक्षाओं को देकर पाला, बढ़िया अस्त्र शस्त्र संचालन सिखाया जिसे, अपने संबंधों को निर्वहन करना जिसे सिखाया, वह मेरा पुत्र अचानक राजा दशरथ के अविश्वास का पात्र क्यों बने? सबको निमंत्रण भेजा, मेरे पुत्र को निमंत्रण नहीं भेजा, उसे ननिहाल वो गया था, उसे छोड़ दिया। और वो कहती है, भरत से पुत्र पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे गे। यानी जो दुख है, कचोट है, कसक है, मर्म व्यथा है, वो ये है कि मेरे जैसे पुत्र, जैसे राम पुत्र हैं आपके, वैसे भरत पुत्र हैं। तो भरत से पुत्र पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे, ये है कसक, ये है दुख। और यहाँ से प्रतिकार शुरू होता है, एक नया डायमेंशन देते हैं जो आधुनिक पाठक के साथ रिलेट हो जाता है।
1: जो मनोविज्ञान का जो है,
2: यानी जो पुराना जो चरित्र है, जो चला आ रहा चरित्र है, उसको कैसे नए परिवेश में ग्राह्य बनाया जाए और उसकी जो प्रासंगिकता है, उसकी जो उपादेयता है, वो सिद्ध की जाए। इसी तरह से गांधारी का एक चरित्र, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, जय भारत में द्रौपदी वस्त्र हरण का एक प्रसंग आता है, उस समय सभा में अचानक गांधारी को भी उपस्थित कर देते हैं। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है और कृष्ण से वो आह्वान कर रही हैं कि आओ मेरा वस्त्र बढ़ाओ ताकि मैं विवस्त्र होने से बचूं और मेरी रक्षा हो, तो ये तो मिथकीय कहानी है, ये सबको पता है। लेकिन इसमें नयापन क्या है? नयापन ये है कि गांधारी उस सभा में मौजूद है मैथिली शरण गुप्त जी के यहाँ, और गांधारी क्या कहती है सुनिए। हाय, लोक की लज्जा भी अब नहीं रह गई लक्षित क्या, आज बहू का तो कल मेरा, कटिपट नहीं अरक्षित क्या। ये है नवीनता, ये है नवीन उद्भावना, और उन चरित्रों को भी मनुष्य के रूप में उनकी संवेदनाओं को धड़कने देने का अवसर देना, जो एक बड़े युग कवि की पहचान है। ऐसे ही नहीं ये राष्ट्र कवि कहलाए।
1: बिल्कुल,
2: यशोधरा को याद करिए, क्या दुख है सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो क्या अपने पथ की पगबाधा ही पाते, कह के जाते। संगिनी का धर्म निभाना चाहती है वो, सहधर्मिणी कहते हैं आप, संगिनी कहते हैं, जीवन संगिनी कहते हैं। जीवन संगिनी का अर्थ ये थोड़ी होता है कि आप एक पक्ष सुनाकर चले जाएं, फैसला लेकर चले जाएं, फैसले साथ साथ लेने होते हैं, क्योंकि एक फैसले का असर जब एक सामाजिक बंधन में कोई दो व्यक्ति होता है तो दोनों पर होता है, किसी एक व्यक्ति पर नहीं। और वो कहती है कि तुम अपने काम के लिए जा रहे हो, बड़ा नाम कमा के आओगे, लेकिन मेरा जो कष्ट है, जाओ नाथ अमृत लाओ, बुद्ध को कहती है, जाओ नाथ अमृत लाओ, तुम मुझ में मेरा पानी, मेरा स्वाभिमान मुझ में ही रहने दो, तुम अमृत लेकर आओ, जाओ नाथ अमृत लाओ, तुम मुझ में मेरा पानी, कहाँ तुम्हारी गुणगाथा, में मेरी करुण कहानी, तुम्हारी जो गाथा पूरा संसार पूरी दुनिया गाएगी, देश विदेश गाएंगे, उसमें मेरी यशोधरा की क्या भूमिका होगी? मैं तो जहाँ हूँ वही हूँ, अपने पुत्र का पालन कर

0: और एक बहुत अच्छी जो चीज है, इनकी जितनी स्त्रियां हैं वो कहीं से कट नहीं होती हैं अपने
1: यही चीज मैं आपसे कहना चाह रही थी
0: हाँ
1: कि
0: कि
1: कोई उस तरह
0: उन्होंने
1: का आक्षेप नहीं है,
0: हाँ, उन्होंने अमृत ही दिया
1: अमृत ही
0: उन्हें
1: दिया।
0: जी। आज ये जो चर्चा थी महेश्वर गुप्त की, वो इतने अच्छे मोड़ पे पहुंच गई थी जहां से हमें वापस आने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय की सीमा अपनी होती है, इसलिए जो है इस परिचर्चा को यहाँ विराम देते हुए श्रोताओं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आप दोनों का भी धन्यवाद,
1: धन्यवाद,
0: प्रोफेसर
1: बहुत
0: सुधा
1: बहुत
0: मैम
1: धन्यवाद,
0: और प्रोफेसर हेमंत कुकरेती जी,
1: बहुत
0: आपका
1: बहुत
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद पूनम
0: धन्यवाद।
2: जी, धन्यवाद।
3: अतीत का आदर्श, भविष्य का उत्कर्ष। अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुधा सिंह, श्यामलाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत कुकरेती, लेखिका और प्राध्यापक डॉक्टर पूनम सिंह। परिचर्चा का संचालन कर रही थी डॉक्टर पूनम। और आइए अब सुनते हैं इस सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां। प्रस्तुत कर रहे हैं युवा पत्रकार श्रीदीपक दीप।
4: 16 अगस्त 2026 को हिंदुस्तानी भाषा अकादमी एवं डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सामाजिक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादकों का समागम विमर्श और सम्मान समारोह डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के नालंदा सभागार में गर्मापूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली NCR की विभिन्न साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों, साहित्यकारों, संपादकों और सांस्कृतिक कर्मियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रश्मि सिंह, वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर वर्तिका नंदा, भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक और डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निदेशक श्री कर्नल आकाश पाटिल मंचासीन रहे। इसी दिन दिनांक 16 अगस्त को ही नवल रश्मि एक भोर नई साहित्यिक संस्था द्वारा राजेंद्र पार्क एक्सटेंशन नांगलोई में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली NCR के तमाम कवि कवित्रियों ने अपने काव्य पाठ से सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली में शानदार त्रिभाषा एक शाम वतन के नाम का आयोजन किया गया। शांति मानस फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत गजलों की संगीतमय प्रस्तुति और सरस्वती वंदना के बाद शुरू की गई। इस कार्यक्रम में दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों से आए कवि शायरों ने देशभक्ति के साथ विविध रंगों से सजे अपने बेहतरीन कलाम सुनाए। कार्यक्रम में सर्वश्री डॉक्टर रूबी मोहंती, श्रीमती रेणु हुसैन, इंदु राज निगम, उषा मुंशी, मनोज अबोध, डॉक्टर खुर्रम नूर, अंजलि अदा, अनिमेय शर्मा आतिश, आलोक अविरल, गुलाम रसूल देहलवी, आनंद कुमार मंदिरा घोष, सरफराज अहमद, फराज दहलवी, सज्जाद अख्तर, डॉक्टर वसीम राशिद, संतोष कुमार तिवारी, डॉक्टर सफीना, राजेंद्र निगम राज, डॉक्टर अखलाक, फरीद अहमद फरीद आदि ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन कृष्णा शर्मा दामिनी ने किया और बेहतरीन संयोजन अंजलि अदा और डॉक्टर रेणु सहनवाज ने किया। कार्यक्रम के दूसरे भाग में हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं के लिए संगीत और सावन गीतों का आयोजन भी किया गया। 16 अगस्त को ही प्रस्तुति खुला मंच द्वारा प्रतिष्ठित कहानीकार तेजेंद्र शर्मा के फरीदाबाद आगमन पर उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति खुला मंच के तत्वावधान में लेखिका अनीता वर्मा की दो पुस्तकों शेष अशेष डायरी के पन्ने व ऊंच नीच का पापड़ बाल गीत संग्रह का लोकार्पण व परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री तेजेंद्र शर्मा ने की। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता प्रतिष्ठित साहित्यकार सुश्री अलका सिन्हा रही। अन्य वक्ताओं में श्री ऋषि कुमार शर्मा, पूर्व उप सचिव हिंदी अकादमी व रेडियो उद्घोषक ने पुस्तक पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम का शुभारंभ रचना गोयल की सरस्वती वंदना से हुआ। वरिष्ठ साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा ने कहा कि यह पुस्तक निर्धारित ही प्रारूप से इतर नवीन प्रतिमान रचती हुई विमर्श करती है। इस अवसर पर दिल्ली व फरीदाबाद के प्रतिष्ठित साहित्यकारों में डॉक्टर मंजू गुप्ता, मृदुला भटनागर, डॉक्टर अरुणा गुप्ता, सुमन माहेश्वरी, आशमा कौल, अंजू दुआ जैमिनी, सुश्री बबीता, रचना गोयल, प्रोमिला काजी ने विशेष उपस्थिति दर्ज की। इस आयोजन में सभी रचनाकारों ने अपनी कविताओं का पाठ किया। दिनांक 18 अगस्त 2026 को नारायणी फाउंडेशन द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन कविनगर गाजियाबाद में किया गया। कार्यक्रम 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक अनवरत चलता रहा, जिसमें श्रोताओं ने कविताओं का भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर देश के प्रख्यात कवियों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दी। कवियों में शामिल सर्वश्री प्रवीण शुक्ल ने हास्य के

0: झड़ियां बिखेरी, सुदीप भोला ने ओज भरा, मणिका दुबे, स्वयं श्रीवास्तव, शायरा कीर्ति और पल्लवी मिश्रा ने श्रृंगार के गीत गजलों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और खूब तालियां बटोरी। चलते चलते आपको ये जानकारी देते चलें, आज अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक साहित्य मंच और हिंदी साहित्य परिषद राजधानी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में सकारात्मक साहित्य मंच का वार्षिक उत्सव दोपहर 2 बजे से राजधानी कॉलेज राजा गार्डन में होगा। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार और राजनेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा की जाएगी।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे श्री दीपक दीप। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारे अतिथि। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गेना भाई पटेल, जो कि एक समाज सेवी और पद्मश्री से सम्मानित है, उनकी वार्ता, उनसे भेंट की है और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है काजल सूरी की। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ये कार्यक्रम। आपको बता दें साथियों कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं काजल आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हमारे अतिथि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे अतिथि कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत की, जिन्होंने अपने नवाचार, परिश्रम और कृषि के प्रति समर्पण से न केवल किसानों की तकदीर बदली बल्कि देश का गौरव भी बढ़ाया। आज के इस हमारे अतिथि कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पद्मश्री से सम्मानित जाने माने कृषि वैज्ञानिक गेना भाई पटेल जी। आइए इनसे जानते हैं इनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के बारे में। गेना भाई पटेल जी, आपका आकाशवाणी में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: सबसे पहले तो मैं आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कृषि की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ।
4: नमस्कार मित्रों, मैं गुजरात से लाखनी तहसील से बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, अभी हमारा नया वाव थराज जिला बन गया है। वहाँ से मैं एक छोटा गांव, सरकारी गोलिया गांव है, वहाँ से आता हूँ। और मेरे पिताजी भी किसान थे, उन्होंने भी वो किसानी करते थे। मैं 5 भाई है और एक बहन है। 5 भाई में मैं सबसे छोटा हूँ
3: जी।
4: और मुझे 12 महीनों के टाइम के बाद में मुझे पोलियो हो गया था। तो मेरे पिताजी, मेरे भाई और मेरी माँ बहुत चिंता करती थी कैसे इसका गुजारा होगा
3: जी।
4: लेकिन हमारे भाइयों ने और हमारे पिताजी ने हमें हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए लेके गए। मेरे बड़े भाई कंधे पे बैठा के वो लेके जाते थे।
3: क्या बात।
4: तो मैं 11 तक पढ़ा हूँ। 12वीं कक्षा तो मैंने ये बेटा बेटियों को जब मोटिवेट करने के लिए जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप घबराइए मत। 12वीं कक्षा मैंने 40 साल के बाद में पास की है। हाँ, तो कि बेटा बेटी क्या है, वो अपघात कर लेते हैं, तो उनके लिए कि कोई वो ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्य नक्की करते हैं तो वो उसके पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने पढ़ाई करने के बाद में 12 तक ये पढ़ाई किया, फिर छोड़ दिया। और मेरे पिताजी, मेरे भाई जो एक कृषि करते थे तो उनमें क्या होता था, उसमें बहुत ज़्यादा आय नहीं होती है। राई लगाते हैं, कैस्टर लगाते हैं, कॉटन लगाते हैं, पशुपालन करते हैं
3: जी।
4: तो उसमें पैसे इतना, किसान को जितना चाहिए इतना पैसा नहीं रहता है। तो हम सोचते थे कि किसान के लिए क्या किया जाए कि हमारे पड़ोसी का भला कैसे हो। हमारा तो होता ही है लेकिन पड़ोसी का अच्छा होना चाहिए। हमारा पड़ोसी मजबूत होगा तो हम मजबूत रहेंगे
3: जी।
4: तो हमने सोचा कि हमने उसी टाइम, आज से करीबन 1990 में मैंने वो मस्टर्ड का यानी राई का कोऑपरेटिव मंडल बनाया और उनकी वजह से किसानों को रासायनिक खाद है, उनका सीड से है, कम लागत में उसको अच्छा सीड मिलता था। फिर बाद में हमने दूध का डेयरी बनवाया तो गांव के किसान दूध का व्यापार करते थे
3: जी।
4: लेकिन उनसे भी हम जो चाहते थे वो नहीं होता था
3: जी।
4: तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि उसकी वजह से

0: किसान के घर में बहुत पैसे आए, तो हमने बहुत सर्च किया, हमने बहुत भारत भ्रमण किया, यानी तीन चार राज्य में मैं घुमा, राजस्थान गया, महाराष्ट्र गया, यूपी गया, फिर मैंने देखा कि ये अनार की खेती बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उसी टाइम हमने हमारे भाइयों को भी बोला कि ये करने जैसा है, और वो मेरे को विश्वास करते थे
1: जी
0: कि नहीं ये बोलता है तो कुछ होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो हमने उसी टाइम 2004-05 में अनार के पौधे 18,000 पौधे लाके लगा दिए।
1: 18,000?
0: हाँ।
1: कहाँ से लाए आप?
0: महाराष्ट्र से।
1: और कहाँ लगाया आपने?
0: हमारे खेत में।
1: अरे वाह, 18,000, बहुत बड़ा नंबर है ये। जी।
0: एक क्योंकि इसका मैं एक सोच ऐसी रखता था कि अपने को एक ट्रक तो होना ही चाहिए, मान
1: जी
0: एक ट्रक भर के हम कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन किसान के पास छोटे रूप में जो माल रहता है तो उसको बेचने में बहुत तकलीफ होती है।
1: जी।
0: फिर पौधे के लगाने के बाद में बहुत सारी, जब हम कुछ नया करते हैं तो किसान लोग हो कि कोई भी लोग रहते हैं वो बहुत नेगेटिव बात करते हैं कि होने वाला
1: शुरुआत में,
0: हाँ शुरुआत में कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऐसा है, ऐसा है, लेकिन वो लगा दिया, उसके बाद में 3 साल के बाद में हमारे पौधे में माल आ गया।
1: अरे वाह, फल आ गया।
0: फल आ गए, क्योंकि पहले तो हमने अनार भी देखा ही नहीं था, सत्यनारायण भगवान की कथा में कोई फ्रूट देखे थे पहला, उसके बारे में कुछ जानकारी हमें नहीं थी। तो हमारी यूनिवर्सिटी है, सरदार कृषि नगर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी हमें गाइड किया, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिक वैज्ञानिकों ने हमें गाइड किया, हमारे जिला के खेतीबाड़ी अधिकारी लोग रहते हैं उन्होंने भी गाइड किया, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब कृषि मेले लगाए थे उसी वक्त उन्होंने बात किया था कि सर ये किसानों का बहुत दिक्कत वाला मामला है पानी के बारे में। तो हमारे क्या है, हमारे बनासकांठा ड्राई एरिया है बिल्कुल, तो वहाँ पे पानी का कोई वो नहीं रहता है, इसीलिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों के लिए 50% सब्सिडी बना दिया ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर के लिए, तो उसकी वजह से छोटे किसानों को बहुत फायदा हुआ। हमारे लगाने के बाद में 3 साल के बाद में जब हम पैसे मिलने लगे तो किसान भाइयों ने भी लगाना शुरू कर दिया, वो आने लगे हमारे खेत पे। तो उसी टाइम करीबन 10 साल में मेरे फार्म पे 80,000 किसानों ने मुलाकात की है, मेरे फार्म के किसान लोग आते थे, गाड़ियां आती थी, बसें आती थी, बाइक पे आते थे, सभी आते थे। तो हम सुबह से 6:30 बजे से बैठ जाते थे और किसान भाइयों को बताते रहते थे कि आप ऐसे खेती करो, आप ऐसे खेती करो। हमारे बड़े भाई है जो फील्ड में बताते थे हमारा फार्म। तो फिर उसके बाद में किसान लोग जुड़ने लगे, तो हमने सोचा कि किसानों को हेल्प करना चाहिए, तो हमने वो नर्सरी बना दी अनार की। तो उसमें नई मुनाफा नई नुकसान, ऐसी तरह से हमने किसानों को पौधे उनको लगाने के लिए पौधे देने लगे। फिर उस जो कोई गरीब किसान है उसके पास हमने पैसे नहीं लिए और सभी किसानों को बोला कि आप लगाइए, और हमारा ट्रैक्टर रहता था उसकी वजह से उनको छिड़काव करना है दवाइयाँ वगैरह का, तो हम करते थे बिल्कुल फ्री में, आप काम कीजिए, और ऐसी तरह से हमारी ये अनार की क्रांति काम आ गई
1: जी।
0: फिर बहुत सारे किसानों ने लगा दिए, हमारे बनासकांठा में करीबन 11,000 हेक्टर में लग गया, फिर हमारे कच्छ में 11-15,000 हेक्टर में लग गया, फिर
1: अनार
0: अनार, फिर हमारे पास में राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, जालौर जिला है, जैसलमेर जिला है, वहाँ पे बहुत सारे अनार लग गए, जो रेती के टिंबे रहते थे वहीं पे अनार का पौधे लहलाते रहे।
1: क्या बात, क्या बात। तो इसके लिए क्या करना पड़ा आपको, जो हमने रेतीली खेतों में रेतीली जो एरिया था वहाँ भी अनार की खेती?
0: हाँ, उसे वो
1: मेहनत लगी होगी बहुत, उसमें वो चैलेंजेस भी आए होंगे।
0: बिल्कुल चैलेंजेस, लेकिन ये जब ड्रिप इरीगेशन आ गया उसकी वजह से किसान का सब मेहनत वो था वो कम हो गया, क्योंकि पानी हर पौधे के उसमें जाता है, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत वाला मामला नहीं रहा, और किसान इतने खुश हो गए कि मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान अनार के किसान है, 1 हेक्टर की मैं बात करता हूँ, तो 1 हेक्टर में 1,000 पौधे लगाते थे
1: जी।
0: तो 1 पौधे से 25 से 30 किलो माल आता है, मेरा तो सरेराज 50 टन माल निकला था, लेकिन 25 टन मानते हम, तो 1 पौधे से 25 किलो माल मानते हैं और 100 रुपया 1 किलो की आय होती है, तो 1 पौधा 2500 रुपया देता है,
1: 2500 रुपये देता है,
0: और 1,000 पौधे 1,000 × 2500 यानी 25 लाख रुपया 1 हेक्टर से किसान को मिल जाता
1: है। तो इतना आपने किया, बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम। तो ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि आपकी जो सोच रही है उसमें समाज और किसानों के प्रति जो आपका आपकी संवेदनशीलता थी वो कैसे आई, कैसे आपकी सोच इस तरह से निकली?
0: मैं, मेरे पिताजी ने मुझे वारसा में दिया है ये, तो कि अपने किसी को हेल्प करना है, कोई जो गरीब किसान है कि कोई गरीब और भी है कुछ भी, तो उसी के लिए काम करना है, वो तो

0: हमने परंपरा से चली आती है
1: जी
0: कि हमारा दुश्मन भी हो तो भी उसको अच्छा रास्ता बताना
1: क्या
0: है।
1: बात, वाह वाह। जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्किल इंडिया की जो बात करते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो ये आपका एक तरह से आपने इसी स्किल को डेवलप किया और अनारों की खेती शुरू कर दी जो आज इस मकाम पर पहुंची है। तो लोग आपको एक कर्मयोगी के रूप में देखते हैं, क्या आप खुद को ऐसा मानते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में?
0: मैं ऐसा तो कुछ नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारे गुजराती में कहावत है, जो काम करते हैं वो उनको परसेवा लगता है, लेकिन जो परसेवे से नहाते हैं उसका ही ये काम होता है। इतना पसीना ज्यादा निकलेगा इतना पैसा ज्यादा
1: क्या
0: आएगा।
1: बात, जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप अनुशासन से रहोगे, जितना आप पैशन को लेकर काम करोगे, उतना
0: बिल्कुल
1: आपको फायदा होगा, उतना आपके पास पैसा आएगा, उतनी आपको खुशी भी मिलेगी।
0: बिल्कुल
1: तो आपके द्वारा किए गए जो मेन कृषि प्रयोग हैं और जो शोध कार्य हैं जिनसे किसानों को खास तौर पर लाभ हुआ है,
0: हाँ
1: उनके बारे में क्या कहेंगे आप?
0: हाँ ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तो उस टाइम जब सीएम थे उसी टाइम में ये किसानों के लिए उन्होंने जो ड्रिप इरीगेशन लगाया था,
1: जी जी
0: ड्रिप इरीगेशन में सब्सिडी दी थी, तो हर किसान के पहले हम खेत में जाते थे तो उनको ड्रिप इरीगेशन करवाते थे,
1: जी
0: तो हमारा बनासकांठा जिला है वो ड्रिप इरीगेशन में नंबर वन हो गया। फिर
1: जी
0: उसके बाद में हम फर्टिगेशन के लिए जो किसान को उनको खाद देना है उनको क्या करना है तो उनके पौधे में उसके रूट में सीधा हमारा जो प्राकृतिक तरीके से हम जीवामृत बनाते हैं तो वो जीवामृत सीधे सीधा ड्रिप इरिगेशन से जाता है, वो एक हमारा वो है। फिर पॉलीथिन मल्चिंग जो इसको खरपतवार निकलता है तो उसकी वजह से वो पौधे के आसपास में पॉलीथिन मल्चिंग कर देते तो उसमें नमी रहती है और पौधा अच्छी तरह से उसमें वो खरपतवार नहीं होता है।
1: जी
0: फिर हमारे जो पौधे हैं उनके ऊपर जो पक्षी है वो जो बगाड़ते
1: हाँ,
0: हैं तो
1: खा
0: उसके
1: जाते हैं।
0: हाँ तो उसके लिए हम बर्ड नेट लगाते हैं,
1: अच्छा,
0: तो बर्ड नेट की वजह से उसके ऊपर छांव रहती है और जो फ्रूट रहता है वो बहुत एकदम हेल्दी और
1: रहता
0: सही
1: है, हाँ, ठीक रहता है।
0: क्वालिटी वाला
1: जी
0: निकलता
1: जी
0: है, वो एक हमने किया था। एक तोता हमारे जो अनार में बहुत बिगड़ करता है, जो अच्छा फ्रूट रहता है उसके ऊपर आके वो चांच मारता है, तो हमने क्या किया कि तोते को भी पेट तो भरना है
1: हाँ,
0: तो उसके हमने अनार के साथ में हमने गेहूं लगवा दिए,
1: अच्छा,
0: तो तोता जब वो पहला उसको धान चाहिए तो वो गेहूं की वो फली
1: बाली जो
0: काट
1: होता है,
0: के
1: हाँ,
0: लेके
1: काले,
0: जाता है और उसका पेट भरता है। और जो इसके ऊपर हमने रिफ्लेक्टर पट्टी एक आता है जो ऐसे वो पवन से हिलती है, उसके सूर्य के प्रकाश से उसके तोते के आंख में वो प्रकाश पड़ता है तो भी भाग जाता है। फिर हमने एक मिनी ट्रैक्टर बसाया तो मिनी ट्रैक्टर की वजह से हमारा जो ये जीवामृत है या हमारा जो कोई स्प्रेड है तो वो ट्रैक्टर की वजह से छोटे ट्रैक्टर से वो स्प्रेड हो जाता है। फिर हमने ये जीवामृत वाला आपको बताऊं तो जीवामृत में कैसा होता है कि हमारी गाय होती है उसमें 10 किलो गोबर लेना है, 10 किलो यूरिन लेना है, 2 किलो बेसन लेना है, 2 किलो गुड़ लेना है, 500 ग्राम सजीव माटी होती है वो लेके उसको एक ड्रम में 200 लीटर में डालते हैं और उसके बाद में वो स्प्रेड बनता है
1: जी
0: तो हर हफ्ते में वो देना है तो
1: जी
0: उसकी वजह से हमें कोई रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं
1: ये
0: रहती।
1: सबसे बड़ी बात
0: ये
1: है कि
0: सबसे
1: कोई ऐसे पेस्टिसाइड या रासायनिक
0: बिल्कुल
1: खाद देने की
0: पेस्टिसाइड
1: जरूरत
0: हम
1: नहीं
0: डालते
1: है।
0: ही नहीं है।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात, बहुत अच्छी बात कही आपने।
0: जी
1: मैं एक चीज आपसे यहाँ जानना चाहूंगी,
0: जी
1: जो ट्रेडिशनल खेती होती है, जो परंपरागत खेती होती है, और जो आधुनिक तकनीक है, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: परंपरागत खेती रखनी चाहिए और हम तो एक ही बात बताने कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं कि अपने को रागी है, ज्वार है, हमारा जो हमारा परंपरागत जो धान है हमें ये प्राकृतिक तरीके से करना चाहिए, उसमें जहर नहीं आता है। और
1: बिल्कुल, आपको जब देश का जो इतना बड़ा अवार्ड मिला, आपको प्रतिष्ठित अवार्ड जो आपको मिला पद्मश्री, तो उस पल आपका अनुभव कैसा रहा, क्या बदलाव आया
0: क्या
1: है?
0: बताओ, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ और उन्होंने जब एक किसान के बेटे को पद्मश्री जब दिया तो कोई इतनी सरकारें आती आती गई गए सब गए लेकिन किसी ने कोई किसान को जो रियल गांव में काम करते उनको माननीय प्रधानमंत्री जी समझ सकते, तो उन्होंने जब मैंने अप्लाई किया था 2017 में अप्लाई किया उसी टाइम हमने वो करके भूल गए थे, लेकिन 26 जनवरी 2017 के दिन सुबह में मुझे 6:30 बजे कॉल आया तो पहले तो बिल्कुल वो हो गया कि हमारा कोई उठ गया क्योंकि सुबह में कॉल किसी
1: हाँ,
0: का ऐसे ही
1: लगता
0: गलत
1: है, डर
0: कॉल आता
1: लगता
0: है।
1: है, डर लगता है।
0: फिर
1: हाँ जी,
0: बाद में हमें उन्होंने बधाई दी कि आपको बधाई हो गया ना भाई, आपको भारत सरकार पद्मश्री से नवाजा जा रही है, तो फिर बाद में मुझे 26 जनवरी को ये इसका ऐलान हो गया पद्मश्री का और 13/12/2017 के दिन माननीय प्रधानमंत्री की हाजिरी में माननीय प्रणब मुखर्जी से

0: कमला से मुझे ये पद्मश्री सम्मान दिया गया।
1: और क्या बदलाव आया उसके बाद आपके जीवन में?
0: उसके बाद में तो हमें कोई जानता नहीं था और सभी लोग जानने लगे कि गहना भाई कौन है, गहना भाई कौन है। सब मीडिया वाले आ गए, सब अखबार वाले आ गए सभी। और फिर तो बाद में किसान लोगों को बहुत हर्ष हुआ कि नहीं वाकिफ में
1: वाकई वाकई।
0: इसका
1: और आप जिम्मेदारी की जो भावना होती है वो और बढ़ जाती
0: और
1: है।
0: बढ़
1: खुशी
0: जाती है।
1: के लिए बहुत काम किया
0: बिल्कुल।
1: आपने। और
0: उनके बाद में तो बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया है।
1: जिम्मेदारी दुगनी बढ़ गई। तो
0: बिल्कुल।
1: आने वाले समय में कृषि क्षेत्र के लिए आपका क्या विजन है, क्या कहते हैं
0: आने
1: आप?
0: वाले इसमें हम क्या करने हैं, एक तो हमने एक FPO का गठन किया है, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो, और उसका एक हमने संघ बनाया है। अभी हमारे साथ में 20-21 FPO जुड़ गए हैं, तो सभी हम का मिल के काम करते हैं। किसान भाई की क्या जरूरत रहती है, उनको ट्रैक्टर चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको जो चाहिए वो FPO के माध्यम से हम पूरा करते हैं। उसको अच्छा सीड चाहिए तो भी मिलते हैं। और अभी हम हाईटेक खेती पे जाना चाहते
1: क्या
0: हैं,
1: बात,
0: तो
1: वाह।
0: वो उसमें क्या है, उसमें उर्वरक जो रहते हैं प्रबंधक, वो हम करने ऑटोमेशन ड्रिप लगाएंगे कि इनको कितना पानी
1: हाईटेक
0: चाहिए,
1: यूज करेंगे
0: हाईटेक
1: खेती
0: करेंगे
1: में।
0: ये। बिल्कुल
1: तो गेना भाई पटेल जी, आपने अमूल्य विचार और अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आज हमने जाना कि समर्पण, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति से कैसे खेती को लाभकारी और सम्मानजनक बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ मैं काजल आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। हमारे अतिथि में आज आपने सुनी गेना भाई पटेल, जो कि एक समाजवाद समाज सेवी और पद्मश्री से सम्मानित है। उनका

Bye.

يد الله فوق أيديهم.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जुड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्रिस्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचा

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृह लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी प्यारी प्यारी बहनों और सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: रेनू कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले।
1: भाई क्या बात है, बहुत सही कहा। और देखो यमुना मस्ती, और अगर ऐसे में सावन हो तो फिर तो कहना ही क्या है। अब देखो जैसे आज जब मैं सुबह आ रही थी तो हल्की हल्की रिमझिम जो थी ना,
0: जी
1: बहुत ही अच्छी लग रही थी, मन को एकदम लुभावनी। और बस उसमें अगर थोड़ी सी बूंदे हमारे शरीर पर पड़ जाएं तो कहना ही क्या। ऐसे लगता है ना कि जैसे जो गर्मी थी पूरे शरीर को एकदम से ठंडक का एहसास हो गया, और जो मन है वो भी बहुत ही सुहाना हो जाता है।
0: जी हाँ, सावन हो, सावन में झूले पड़े हों, हार श्रृंगार हो, महिलाएं
1: बिल्कुल
0: सज धज के तैयार होकर के जब निकलें तो एक अलग ही अनोखी एक छटा सी बिखर जाती है। और
1: बिल्कुल
0: साथ ही में
1: बिल्कुल
0: हमारा तीज त्यौहार जो है हमारी पारंपरिक विरासत है ना रेणु,
1: बिल्कुल
0: तो हम बड़े उसे उत्साह के साथ मनाते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं कि ये तीज त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे हमारे मनाने का कारण बहुत से होते हैं, वो क्या है और
1: बिल्कुल
0: उन पर हम क्या क्या पकवान बनाते हैं, कैसे कैसे हम घर को सजाते भी हैं।
1: बिल्कुल। और देखो जैसे तुमने अभी इसकी बात की कि हमारे जो व्रत पर्व वगैरह होते हैं उनको सभी बहुत उत्साह से साज श्रृंगार के साथ मनाते हैं, ऐसे ही आज 23 अगस्त को भी पुत्रदा एकादशी है।
0: जी
1: और जो बहुत सी महिलाएं हैं सावन में इस एकादशी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और कई महिलाएं और पुरुष भी बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत रखते हैं और विष्णु भगवान की पूजा आराधना की जाती है। और मनीषा जितने भी हमारे जो पर्व है ना, एक तरह से ये हमारी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को मजबूत करते हैं, क्योंकि बताते हैं कि अगर सावन हो या कोई भी मास हो, हर मास में एक व्रत रखना जो होता है वो हमारे शरीर के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही शुभ होता है और अच्छा होता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: और आज सावन का व्रत हो तो उसमें बात ही कुछ और है, रिमझिम
1: बिल्कुल
0: रिमझिम बूंदे गिरती रहती
1: बिल्कुल
0: है।

0: देखिए रेनू, होता ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं
1: बिल्कुल
0: वो परिवार की हमारी ऐसी रीढ़ होती हैं जिसके बिना घर परिवार अंदर बाहर कुछ भी काम नामुमकिन
1: बिल्कुल
0: है। बच्चों का, बूढ़ों का, सभी का बहुत ध्यान रखती हैं, और उसके लिए ज़रूरत होती है उन्हें अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की।
1: बिल्कुल
0: तो ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी बीमारियां होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें महिलाओं को खास तौर पर प्रभावित करती हैं। इनमें से एक हमारी जो बीमारी है वो बड़ी आम समस्या है महिलाओं में, एनीमिया की। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, और
1: बिल्कुल
0: ये आजकल बहुत आम है। जिससे थकान होती है, इसमें कमजोरी हो जाती है, और हमारी सरकार है एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए एक एनीमिया मुक्त भारत अभियान भी चला रही है, जिसके तहत महिलाओं और बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इसके निदान के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पौष्टिक आहार, यानी कि किचन से ही हमारी शुरुआत
1: बिल्कुल
0: होती है, तो पौष्टिक आहार लें। और हमारे अंदर खून की कमी है, कितनी है, उसकी जांच भी बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल
0: और इसके जो मोटे मोटे लक्षण हैं,
1: देखो इसके ये बहुत ही मनीषा जो बात बोली तुमने, वो पता है जो महिलाएं होती हैं वो इन जो समस्याएं हैं इनसे गुजर भी रही होती हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। उन्हें पता है क्या लगता है, मैंने बहुत अधिक काम कर लिया होगा तो शायद मुझे थकान हो गई होगी। जैसे अभी तुमने लक्षणों की बात की, अगर देखो कोई भी महिला और बहन उसे बहुत अधिक थकान या कमजोरी महसूस हो रही है, या चलते चलते उसकी सांस फूल रही है, या फिर जैसे जो हमारी त्वचा होती है उसका रंग एकदम से जो
0: पीला पड़ गया
1: सामान्य
0: है
1: से पीला पड़ रहा हो, या
0: जी।
1: फिर चक्कर आने लगे अगर हम कोई काम करें और चक्कर आने लगे, इसके अलावा दिल की धड़कन जो है वो हमारी एकदम से तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ये सारे लक्षण होते हैं। तो ये जो ऐसी समस्याएं हैं जो रोजमर्रा में मुझे लगता है महिलाओं को महसूस होती हैं, लेकिन वो ये सोचकर कि भाई अधिक थकान, ज्यादा काम किया तो इसलिए हो गया होगा,
0: नजरअंदाज हो जाती हैं
1: नजरअंदाज करती
0: जी
1: है, और ये भी सोचते हैं कि थोड़ा आराम करने के बाद सब ठीक हो जाएगा,
0: जी हाँ
1: लेकिन सब ठीक नहीं होता है। और वो सब ठीक कैसे होगा, जब जो हमारी बहनें और महिलाएं वो बचाव करेंगी, खान पान अपना अच्छा करेंगी, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां लेंगी, और जो मौसमी फल होते हैं मौसम के अनुरूप जो जो फल होते हैं उनका सेवन करना मनीषा बहुत जरूरी होता है।
0: जी हाँ। और
1: तो ये
0: साथ
1: सब
0: ही रेनू एक चीज़ छोटी सी मैं बताऊंगी कि एनीमिया की कमी में ज़्यादातर हम महिलाओं को डॉक्टर भी बोलते हैं कि अनार खाएं, चुकंदर
1: बिल्कुल
0: खाएं, और गुड़ का सेवन भी ज़रूर करें,
1: बिल्कुल
0: और विटामिन सी भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आयरन को अवशोषित करता है।
1: बिल्कुल
0: नियमित जांच कराते रहें, और ज़्यादा अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी होती है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।
1: जरूरी है
0: और जब भी इतना सब कुछ हम लाल चुकंदर, लाल अनार खाएंगे रेनू, तो हमारे गाल भी लाल लाल हो जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: हम सुंदर
1: बिल्कुल
0: खूबसूरत दिखेंगे, और महीना चल रहा है सावन का,
1: सावन का
0: और ऐसे में जब हम खूबसूरत दिखेंगे तो हमें भाई एक शिकायत अक्सर महिलाओं को रहती है कि हमें तो वो देखते ही नहीं है,
1: बिल्कुल सही बात
0: ध्यान
1: है
0: नहीं देते, क्यों जी,
1: सही
0: नौकरी है
1: बात
0: बहुत
1: है
0: सारे काम है। तो महिलाओं की शिकायतों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ऐसे में महिलाएं अक्सर यही गुनगुनाती हैं, हाय हाय ये
1: क्या
0: मजबूरी
1: बात है बिल्कुल सही बात है।

0: मनीषा भाई देखो, हमारी जो बहनें हैं महिलाएं, उनकी शिकायत जायज भी है, क्योंकि अब वो अगर अपने ऊपर ध्यान देंगी और योग और व्यायाम भी करेंगी, और अगर ऐसे में भाई उनके जो पिया हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो यही कहेंगी कि क्योंकि सावन का महीना भी है और सावन बीता भी जा रहा है, तो
1: जी
0: ऐसे में जो हमारे भाई हैं उनको अपने परिवार की, खास औरतें पत्नी की इस मौसम में तो सुन ही लेनी
1: जी
0: चाहिए।
1: हाँ, हम गीत संगीत और भी चलता रहेगा। अब
0: बिल्कुल
1: रेनू आगे क्या सुनवा रही हैं आप?
0: देखो, अब ना जैसे कि अभी हमने बात की कि महिलाओं को अनीमिया की समस्या हो जाती है, खाने पीने के साथ साथ योग और व्यायाम भी हमारे जीवन में मनीषा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम योग को नियमित रूप से अपना लेते हैं तो अपने आप ही जो हमारा शरीर है वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है।
1: जी
0: तो ऐसे में हम अपनी बहनों को अनीमिया के बारे में तो हमने बताया, तो नियमित योग और व्यायाम भी उनको अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। तो आज मनीषा हम अपनी बहनों के लिए बातचीत लेकर आए हैं, बातचीत का विषय है

0: योग और ध्यान से महिलाओं का समग्र विकास, और डॉक्टर एनएस यादव से हमारी बहन कमलेश मुद्गल इस विषय में बातचीत कर रही हैं।
1: मेरी हर बहन चहकती रहे और उसके चेहरे पर यूं ही मुस्कान बनती रहे, क्योंकि पूरी गृहस्थी जो है वो हमारी बहनों के आसपास उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। कहूँ तो रीढ़ की हड्डी हैं हमारी बहनें, क्योंकि घर उनके बिना चल ही नहीं सकता। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए समय समय पर हम नित नई जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो है योग और ध्यान से महिलाओं का समग्र स्वास्थ्य। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सत्यनारायण यादव को, जो योग विशेषज्ञ एवं प्राकृतिक चिकित्सक है। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: जब भी हमारी बहनों से हम योग की बात करते हैं, बहनें कहेंगी हमारे पास तो समय ही नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि सुबह बच्चों का काम करना है, उसके बाद में फिर खेती बाड़ी का भी काम करना है, भाई हमारे पास तो योग का समय नहीं है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि योग के लिए चाहे 20 मिनट निकालो, चाहे आधा घंटा निकालो, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ समय आपको अपने उस शरीर के लिए देना है जिससे कि आप पूरे दिन दौड़ भाग करती हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि योग क्या है।
2: योग आजकल बच्चा बच्चा भी जानता है, भारत सरकार ने योग दिवस के रूप में बहुत प्रचार कर दिया है। तो योग तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तैरना, खेलना, टहलना सब जरूरी है, उस तरह से ऋषि मुनियों की एक ऐसी विद्या है जो अनेक प्रकार के आसन हैं, मुद्राएं हैं, कैसे रिलैक्स किया जाए, कैसे अपने मन को शांत रखा जाए, कैसे अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखा जाए, तो बीमारियों से बचने का और बीमारियों से स्वस्थ रहने का एक मार्ग है योग।
1: जब हम बात करते हैं योग की तो दिमाग में यही आता है कि भाई ये इतने कठिन आसन है, हम तो नहीं कर पाएंगे, इसमें इतना समय लगेगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो जब हम योग की बात करें तो ऐसे वे कौन कौन से सिंपल आसन है जिन्हें की हमारी बहन करके स्वस्थ रह सकती है?
2: आजकल तो गांव-गांव में, शहर के हर जगह योग सिखाने वाले लोग हैं, तो अपने निकटतम जगह पर पूछे, उसमें कुछ आसनों का मैं नाम बताता हूँ महिलाओं के लिए। जैसे गोमुख आसन है, ताड़ासन है, कोण आसन है, सूर्य नमस्कार है, श्वास की क्रियाओं में लोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, अगर इतना करते हैं तो वो हमेशा पर्याप्त है। दूसरा जो आज का संदर्भ है ध्यान का,
1: जी
2: ध्यान भी जरूर करना चाहिए महिलाओं को।
1: देखिए, योग का क्या एक समय निश्चित है, या जब योग करें तो योग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान हमारी बहनें रखें?
2: योग के बारे में थोड़ा सा और बता दूं अपनी बहनों को कि योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम ध्यान ही नहीं है। योग का मतलब गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि युक्त आहार व्याहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधश्च योगे नहि दुखा। योग का मतलब होता है समय से भोजन करना, ऋतु के अनुसार किस ऋतु में कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो गांव के लोगों के लिए ईश्वर ने इतने कृपा किया है कि उनको सब्जियां हर सीजन में अलग अलग होती हैं, सीजन के अनुसार ही सब्जियां खाएं और फल खाएं, अनाज खाएं, तो जो उनके खेतों में जिस समय जो हो रहा है वो खाएं और समय से खाएं। और गांव के लोग तो अनुशासित होते ही हैं, सूर्यास्त से पहले जो भोजन कर लिया, लेकिन सूर्यास्त के बाद जितना जल्दी हो सके भोजन कर लें और ऋतु के अनुसार करें, सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, तो वो भी एक योग है। दूसरा आचरण भी अपना अनुशासन करें, जैसे हम दूसरे के बारे में ना सोचें, दूसरे की आलोचना ना करें, वो भी एक योग है। और अपने काम को पूरा मन से पूजा समझ के, एक कर्तव्य समझ के, चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे महिला हो, अगर अपने काम को पूरा ध्यान से करे, एकाग्रता से करे, वो भी एक योग है।
1: यानी योग जो है वो पूरे हमारे जितने भी दिनचर्या है उस सब में समाया हुआ है, चाहे हम सुबह उठते हैं वहाँ से लेकर और रात को सोते हैं वहाँ तक। जब बार बार महिलाओं की बात करते हैं, अगर हमारी बहनें तनावग्रस्त होती हैं या परेशान हो जाती हैं, तो दूसरी बहन उनको सलाह देती है कि ऐसा कर, थोड़ा ध्यान कर लिया कर, तो तनाव से ना मुक्ति मिल जाएगी। जब तनाव आता है तभी हम ध्यान की तरफ क्यों जाते हैं, तो ये ध्यान क्या है?
2: ध्यान कहने के लिए तो बहुत सरल है, बहुत कठिन भी नहीं है
1: जी,
2: इसको बस समझ लिया जाए। ध्यान से जैसे दादी जी भी कहती हैं अपने पोते को जब जाता है, चाहे बेटे को भी कहते हैं माता पिता, ध्यान से जाना, ध्यान से टिफिन खा लेना। तो ध्यान का मतलब कि वर्तमान में रहना, जो भी हम काम करें अगर हम वर्तमान में, अगर सांस भी लेते हैं, माता पिता हम कई बार सिखाते हैं कि हाथ कैसे धोना है बचपन से ही, बाल कैसे रखना है, क्या करना है, सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता है कि सांस कैसे लेनी है
1: जी।
2: हम अपने सांस को बैठ के कभी देखते हैं, बड़े से बड़े भी, पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन जब हम बैठ के आंख बंद करके जब हम अपनी सांस को देखने लगे, हस्तक्षेप ना करें, कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है, कितनी देर आने में लग रहा है, कितनी देर निकलने में लग रहा है, अगर हम एक एक सांस को केवल 5 मिनट अगर इतना कर लेते हैं ना, इससे सरल और इससे अच्छा और

0: लाभकारी कोई ध्यान नहीं है। देखेंगे ध्यान के बहुत सारे प्रकार हैं, जितना हम अभ्यास करेंगे उतने प्रकार के ध्यान के मार्ग अपने आप प्रशस्त होते चले जाएंगे। तो सबसे पहला ध्यान है कि आंख बंद करके बैठ जाए, और करने का समय क्या है, खाली पेट, नाश्ते से पहले, दोपहर के भोजन से पहले, रात के भोजन से 1 घंटा पहले, जब भी आपके पास समय है। तीनों में से तीनों समय कर सकते हैं, 5-5 मिनट, एक भी समय तो जरूर करना चाहिए। तो बैठ करके सबसे पहले अपने आंख बंद करके अपने शरीर को देखिए कि मैं कैसे बैठी हूँ। एकदम शांत मन से उस समय सब चिंता छोड़ दीजिए, मेरा काम क्या हुआ, क्या होना है, न पीछे जाइए न आगे का सोचिए।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, हर समय जब भी हम आंख बंद करते हैं तो विचारों का जो उधेड़बुन है वो तो चलती ही रहती है, तो उस उधेड़बुन को सबसे पहले तो हमारी बहनों को कंट्रोल करना है। एक आम इंसान के रूप में भी जब हम बात करें तो उसको तो हमें पहले कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी क्या कुछ पहले हमें सोचना पड़ेगा या उसका कुछ अभ्यास करना पड़ेगा?
0: कि इस फील्ड में मुझे 45 साल से ज्यादा हो गया कराते हुए, दुनिया में सब पर विजय प्राप्त की जा सकती है, मन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती
1: जी। और जब हम मन पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं तब
0: तो भाई मन, लोग कहते हैं कि मन भी तो नहीं एकाग्र होता है। शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी शाणुत मापनोति तत्व वायु निरोधेत। कैसे मन को एकाग्र किया जाए, न कोई दुनिया में सर्जरी है न कोई दवाई है। कि अगर श्वास को आप देखना शुरू कर दीजिए रोज रोज, तो आपका मन भटकना ही बंद हो जाएगा
1: जी।
0: और करके देखिए तो जैसे जैसे मन पर विजय प्राप्त होने लगे, पहले अगर 1 मिनट में 100 जगह जाता है तो 50 बार जाएगा, फिर 25 बार जाएगा, फिर 10 बार करते करते शून्य हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा बच्चे की तरह।
1: यानी जैसे जैसे हमारी बहनें अभ्यास करेंगी तो अभ्यास के बाद जो है वो अपने श्वासों को आते जाते बिल्कुल ध्यान से देख पाएंगे, कैसे सांस जा रही है, कैसे आ रही है। वो जो उधेड़बुन उनके पहले दिमाग में रहती थी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी,
0: खत्म हो जाएगी। और अब सारी बीमारियों का जड़, आज जितना भी तनाव है, किसी डायबिटीज है, किसी को सिर दर्द है, महिलाओं की अनेक समस्याएं हैं, सारी समस्याएं हैं तनाव के कारण
1: जी।
0: और तनाव को दूर करने का दुनिया में अगर कोई रास्ता है तो ये ध्यान है
1: जी,
0: प्राणायाम है। तो इस श्वास को ही अगर देखना शुरू करें, उसके बाद ये लेट के भी करें, बैठ के नहीं बैठा जाता। कई लोगों से कमर में दर्द है या कोई थका हुआ है या बीमार है, ताकत नहीं बैठने की, तो वो लेट जाए और लेट करके शरीर को ढीला छोड़ के आंख बंद करें, बंद करके भी अपने शरीर को देखें, फिर श्वास को देखें
1: जी।
0: और ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद उनको लगेगा कि वाकई मन शांत हुआ। और उसे केवल मन नहीं शांत होगा, सिर दर्द कब दूर हो गया, अनिद्रा की बीमारी, गुस्से, चिड़चिड़ापन, नकारात्मकता, और भी बीमारियां, पाचन की बीमारियां, सब धीरे धीरे केवल इससे दूर हो जाएगा
1: जी।
0: तो ये अभ्यास करें। और उसके बाद ध्यान के साथ साथ कहते हैं 3 तरह का ध्यान होना है। शरीर का ध्यान, पहले शरीर को शिथिल करिए बैठ के चाहे लेट के, फिर उसके बाद मन को करिए श्वास के द्वारा। इसके बाद कोई विचार नहीं आना चाहिए। जैसे हम सोने के लिए जाते हैं तो चप्पल को बिस्तर पर नहीं अलाउ करते, उसी तरह से बोलिए ध्यान करते समय कि मेरा समय है। विचारों को प्रणाम कीजिए नम्रता से
1: जी।
0: तो उस तरह से थॉट को, विचारों को ध्यान के समय बोलिए कि थोड़ी देर के बाद मैं मिलूंगी, सारे काम बाकी हैं, उपला भी पातना है, पशुओं को चारा भी देना है, खेती में भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, कुछ भी हो सकता है। बोलिए कि लेकिन ये मेरा 5 मिनट है ना, ये मेरा समय है, चाहे 15 मिनट, रोज एक टाइम अपना निकालिए, न पति के लिए, न बच्चे के लिए, न परिवार के लिए, न दुनिया के लिए, 5 से 15 मिनट अपना समय निकालिए 24 घंटे में से, और उसमें केवल प्राणायाम करिए, ध्यान करिए और रिलैक्स करके विचारों पर ध्यान कीजिए कि विचार नहीं आना चाहिए। तो उसका क्या लाभ होगा कि धीरे धीरे इतना नियंत्रण हो जाएगा कि जब चाहेंगे तभी गुस्सा आएगा, तो फिर गुस्सा ही नहीं आएगा तो समझिए कि अनेक बीमारियां दूर, तनाव ही, कहते हैं नो एक्सपेक्टेशन नो फ्रस्ट्रेशन। तो इससे क्या होगा, संतुष्टि का भाव होगा ध्यान करने से। कैसे लाभ होगा स्वास्थ्य पर, कि केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा है नैतिक स्वास्थ्य, कि हम अपनी नजर में हम ऊंचा उठना चाहते हैं लेकिन अगर नैतिक पतन हमारा हो चुका है तो हम अपनी नजर में भी नहीं उत्थान कर पाते हैं। लेकिन ध्यान करने से, प्राणायाम करने से आत्म दृष्टि में हम ऊंचा उठते हैं। तो नैतिक उत्थान, शारीरिक, मानसिक, उसके बाद आध्यात्मिक उत्थान। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। आध्यात्म का मतलब होता है अपनी धी कहते हैं विद्या को, आत्मबुद्धि को हम शोधित कर सकते हैं, अपनी कमियों को हम देखने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, वो ध्यान से सबसे बड़ी बात आती है
1: जी। और योग और ध्यान में जब हम बात करें तो ऐसा भी कर सकते हैं हमारे कि एक दिन योग कर लें, एक दिन ध्यान, या ध्यान ज्यादा इफेक्टिव है योग के बजाय?
0: वो एक दूसरे का भाग है। जैसे भोजन है, सब्जी का अलग भूमिका है, रोटी की अलग भूमिका है, फल की अलग है। तो अगर हम आसन करके और ध्यान करें तो ज्यादा लाभ होगा। जैसे गांव के लोग की भाषा में दही को जब मतते हैं, दूध को जब खूब मतते हैं तब घी ऊपर आता है, बिना मत्थे जो है बाहर नहीं आएगा। तो योगाभ्यास करने से क्या होता है, जब शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है तो शरीर के जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, गंदगियां हैं, वो एक

0: इकट्ठे हो जाती हैं, तब उनको फेफड़ा को निकाल के बाहर करने में, किडनी को निकाल के यूरिन से बाहर निकालने में आसानी हो जाती है। अगर नहीं हम करते हैं, सीधा ध्यान करते हैं तो भी निकलेगा, लेकिन अगर आसन की बात करें तो ज्यादा लाभ होगा।
1: तो मैं तो यही सलाह दूंगी अपने बहनों को कि अपने स्वास्थ्य का भी उनको बहुत ही ध्यान रखना है, योग और ध्यान से अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारी बहनों को इतनी अच्छी और उत्तम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी बहनें सुन रही थी बातचीत। बातचीत का विषय था योग और ध्यान से महिलाओं का समग्र विकास। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर एनएस यादव और इनसे बातचीत कर रही थी कमलेश मुद्गल। तो रेनू, योग भगाए रोग, यानी कि स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो योग का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना
3: चाहिए।

मनीषा देखो, आज हमारा जो देश है वो हर जगह पर बहुत आगे है, किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में देख लें, उद्योग के क्षेत्र में देख लें, या फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देख लें। और हमारे देश को आज यहां तक पहुंचाने में बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम, हमारे जो सेनानी थे उनका बहुत योगदान रहा। हमारे देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जो सर्वस्व है वो हमारे देश पर अर्पित कर दिया था। मनीषा, इसके साथ साथ हमारे देश के साथ साथ कई विदेशी भी ऐसे थे जो हमारी भारत की भूमि पर आए, और उसके बाद उन्हें हमारी मातृभूमि ने, हमारी संस्कृति ने इतना आकर्षित किया कि वो

0: लोग यहीं पर रच बस गए। न केवल रचे बसे बल्कि उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम भी किए और योगदान भी दिया।
1: जी हाँ, और ऐसी ही एक महिला थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक प्रमुख ब्रिटिश समाज सुधारक थी, स्वतंत्रता सेनानी थी और थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और महिलाओं के अधिकारों के लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: बिल्कुल। और इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को इंग्लैंड में हुआ था, और जब ये भारत में 1893 में यहाँ पर आई तो उसके बाद यहाँ की मिट्टी से ये पूरी तरह से जुड़ गई। और मनीषा, इन्होंने 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर भारत में होम रूल लीग की शुरुआत की थी।
1: जी हाँ रेनू, और वो एक आध्यात्मिक महिला थी। उन्होंने भारतीय संस्कृति को ऐसे अपना लिया था कि वो फर्क नहीं था उनमें किसी भारतीय महिला में। उनका जीवन एक संत की तरह था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के लिए बहुत योगदान किया और हमारे ग्रंथों से भी वो बड़ा लगाव रखती थी। उन्होंने गीता का अनुवाद भी किया और साथ ही साथ बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की, जो कि बाद में मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना। और ऐसी वीरांगना को, ऐसी जो हमारी धरती पर आई ऐसी महिला को, एनी बेसेंट को हम शत शत नमन करते हैं।

0: और मनीषा, हम बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही कारण है कि आज हम अपने देश में चैन की सांस ले रहे हैं। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे राजकुमार शुक्ल, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज 23 अगस्त को ही इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बिहार के चंपारण के किसानों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी जी को वहां पर आने के लिए राजी किया था, और 1917 में गांधी जी वहां पर गए और भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। राजकुमार शुक्ल जी का यह महत्वपूर्ण योगदान था कि उनके इस प्रयास से गांधी जी को भारत की मुख्य राजनीति में स्थापित होने में बहुत ही योगदान मिला था।
1: जी हाँ, और ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक हमारे रहे अन्नामणि। ये मौसम वैज्ञानिक थे, ये भारत की प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम वैज्ञानिक थी। इन्होंने सटीक उपकरण बनाए भारत में मौसम की भविष्यवाणी करने वाले, तापमान, हवा को नापने वाले, और दर्जनों उपकरणों को उन्होंने खुद ही डिजाइन किया। तो कितनी बड़ी उपलब्धि थी हमारे देश के लिए। और ऊर्जा क्षेत्र में इन्होंने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च

0: के देश को आगे बढ़ाया और इन्हें वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता
1: और
0: है।
1: मनीषा ऐसी जो महान महिला थी अन्नामणि जी, इन्होंने मौसम की सटीक भविष्यवाणी की, तभी तो ऐसे गीत भी बने, ये मौसम
0: मौसम
1: का
0: का
1: जादू
0: जादू
1: है
0: है
1: मितवा।
0: मितवा।
2: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: और इस दिन 23 अगस्त 2023 को इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग की याद में ये दिन मनाया जाता है। और इस उपलब्धि के साथ भारत पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश हमारा भारत बना। और चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान 3 उतरा था उस स्थान का नाम शिव शक्ति रखा।
1: बिल्कुल, और मनीषा इसको इसीलिए मनाया जाता है, आज 23 अगस्त को विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि जो हमारे देश के युवा हैं उनके अंदर और विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और नवाचार के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो और हमारे देश में विज्ञान के लिए नए नए आविष्कार किए जाएं, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो विज्ञान से जुड़ें और देश को विज्ञान के क्षेत्र में और आगे लेकर जाएं।
0: जी हाँ, और चांद तारों तक पहुंच जाएं और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते रहें।

0: मनीषा, बेटियां जो हैं वो हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रही हैं, और अभी खेलों में भी हमने अपनी बेटियों का दमखम देखा। हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसने सच में वास्तव में अपना काम किया है। यह जो योजना है ये 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरू की गई थी, और मनीषा इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि देश में घटते बाल लिंगानुपात में सुधार हो और जो बालिकाएं हैं वो अधिक से अधिक जन्म लें और उनकी शिक्षा अच्छे से शुरू की जाए और उन्हें सशक्त भी बनाया जाए।
1: जी हाँ, यानी कि जो मुख्य उद्देश्य है बाल लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सोच बदलना।
0: बिल्कुल।
1: और जो हम कहते हैं ना कि कोई महिला गर्भवती होती है तुरंत बड़ी जिज्ञासा होती है इसका लिंग परीक्षण कराने
0: बिल्कुल,
1: की, तो उस पर भी रोक लगाई जाए, और ये चल भी रहा है, इस पर बहुत सख्ती भी है। और ये योजना है ना रेणु, ये हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय

0: की संयुक्त पहल है, यानी कि
1: बिल्कुल
0: तीनों मंत्रालय भरपूर जोर लगा रहे हैं बेटियों की सुरक्षा और संरक्षण में।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: इसके तहत सुकन्या समृद्धि योजना जैसी जो बचत योजनाएं हैं उनको भी बढ़ावा दिया गया है, ताकि माँ बाप बेटियों के भविष्य के लिए पैसे बचा सकें।
1: बिल्कुल। और मनीषा, हमारी जो लाडली हैं, जब वो पढ़ेंगी तभी वो आगे भी बढ़ेंगी।

0: और मनीषा, हमारी बहनें भी अगर हमसे अपनी कोई बात साझा करना चाहती होंगी, हमें कुछ बताना चाहती होंगी, तो वो हमें अपना पत्र भेज सकती हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001।
1: जी हाँ, चिट्ठी भी लिख सकती हैं और साथ ही साथ अपना फ़ोन उठाइए, अपना लैपटॉप उठाइए और हमें ईमेल भी कर सकती हैं। और ईमेल का पता है feedback@gmail.com।
0: बिल्कुल
1: यानी कि बहनों को कोई भी शिकायत हो, कोई सुझाव देना हो, तो बेझिझक हमें मेल या पत्र ज़रूर लिखें।
0: बिल्कुल। और आज के हमारे जो कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं वो हैं तुषार पाराशर,
1: और कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
0: तो इसी के साथ मनीषा हम अपनी बहनों को अब कहते हैं बहनों राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में श्री मोदी ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इस बीच ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूरी पर यह दुर्घटना हुई। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। एफआईएच हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को पूल ई का यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एक ही फिल्म से प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं फिल्म की कहानी के साथ फिल्म के गीत और फिल्म से जुड़ी रोचक बातें। आज हम बात करेंगे साल 1975 की एक ऐसी फिल्म की जिसमें एक ही परिवार के तीन कलाकार असली जिंदगी में भी आपस में जुड़े थे और पर्दे पर भी पिता बेटा की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आज की फिल्म है धर्म करम। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1 दिसंबर 1975 को। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था शोमैन राज कपूर साहब ने और डायरेक्शन की कमान संभाली थी उनके बेटे रणधीर कपूर ने। फिल्म में अन्य कलाकार थे रेखा, प्रेमनाथ, दारा सिंह और जगदीश राज। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था आरके फिल्म्स लिमिटेड और यशराज फिल्म्स ने। अब बात करते हैं इस फिल्म के बेहतरीन संगीत की। फिल्म का संगीत दिया था पंचम दा यानी राहुल देव बर्मन ने और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। तो दोस्तों, जब आरडी बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी की जोड़ी हो तो गीत तो कमाल के ही होंगे। तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही एक कमाल का गीत फिल्म धर्म करम से, जिसे गाया मुकेश ने।

वाह क्या गीत है दोस्तों। ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि इस फिल्म की आत्मा है। इतना प्रसिद्ध हुआ ये गीत कि मजरू सुल्तानपुरी साहब को इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार की श्रेणी में फिल्म फेयर नामांकन मिला था और मुकेश को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी और उसके किरदारों के अभिनय की। दोस्तों फिल्म धर्म करम की कहानी लिखी थी प्रयागराज ने और इस कहानी की खासियत यह थी कि इसमें रिश्तों की गहराई, संघर्ष और भावनाओं का एक खूबसूरत मेल था। तो आइए सुनते हैं फिल्म का एक और खूबसूरत गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा आपके साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ip.radio.delhi@gmail.com। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आपका पसंदीदा चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से प्रोग्राम। और हमारी आज की फिल्म है 1975 में बनी फिल्म धर्म करम। अब आपको सुनाते हैं इस फिल्म की कहानी संक्षेप में। कहानी है शंकर नाम के एक अपराधी की, जो अपनी गर्भवती पत्नी कांता के साथ एक झोपड़ी में रहता है। शंकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है कि अगर उसकी पत्नी को बेटा हो तो वो उसे कभी अपने जैसा अपराधी नहीं बनने देगा। बेटे का भविष्य संवारने के लिए शंकर एक बड़ा फैसला लेता है। वो चुपके से अपने नवजात बेटे को एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार के बच्चे से बदल देता है। अब सवाल ये है कि क्या इंसान की तकदीर उसके खून में लिखी जाती है या फिर परवरिश और माहौल उसे बदल सकता है। यही उलझन, यही टकराव है फिल्म धर्म करम की कहानी का। इस उलझन को सुलझाने के लिए दोस्तों, आप ये फिल्म एक बार जरूर देखिए और फिल्म का पूरा आनंद लीजिए। अब पेश है इसी फिल्म का अगला खूबसूरत गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

इस खूबसूरत गीत के बाद अब हम अपने श्रोताओं के मेल शामिल कर लेते हैं जिनका उनको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो पहला मेल हमें मिला है इंदिरापुरम भवरपुर से राधेश्याम और चंपा और राजू देवांगन का, और इन्होंने लिखा है कि एक ही फिल्म के गीत इनको पसंद आ रहे हैं, शानदार प्रस्तुति के लिए बधाई, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद हमें मेल भेजने के लिए। अगला मेल हमें मिला है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल उषा और टिल्लू नायक जी का, इनको भी हमारी आज की फिल्म की कहानी और गीत पसंद आ रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगला मेल हमें मिला है धर्मेंद्र छिप्पा जी का, इन्होंने लिखा है कि आप चर्चा कर रहे हैं अपने दौर की बेहतरीन फिल्म धर्म कर्म के बारे में, बेहतरीन रोचक बातें किस्से कहानी और नगमे सुनवा रहे हैं, तो धन्यवाद मुकेश कुमार धर्मेंद्र छिप्पा जी, आपने बहुत अच्छा हमें ये मेल भेजा है और हमारे प्रोग्राम की तारीफ कर रही है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये मेल हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी हमें ये मेल भेजा है। और अगला मेल हमें मिला है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ जी का, ये है विरम गांव गुजरात से और इनके साथ हैं अजीत भवसार और

प्रमिला और भावेश कुमार भवसार जी, इनको भी आज की फिल्म धर्म करम बहुत पसंद आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दो मेल और मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। अगला मेल हमें मिला है प्रेमिला जैन का। इन्होंने फिल्म से जुड़ी रोचक बातें हमें लिखी हैं कि प्रसिद्ध हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसे राज कपूर ने प्रोड्यूस किया। हाँ, ये हम बता चुके हैं। इसके लिए जानकारी के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अगला मेल हम शामिल करते हैं अहमद फूलवाले का। ये हमें मेल मिला है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से, और इनके साथ हैं इनके परिवार के अन्य सदस्य दुखनी जूही और इमरान अहमद। और इनको भी आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, और खासकर फिल्म के सभी गीत इनको पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से मेल भेजकर हमारी हौसला अफजाई करते रहिए जिससे हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बना सकें। तो अब बढ़ते हैं कलाकारों के अभिनय के बारे में, कुछ बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मशहूर अभिनेता राज कपूर साहब की, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक अहम किरदार में भी नजर आए। उनके सजीव अभिनय ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए। उनके बेटे रणधीर कपूर ने न सिर्फ फिल्म को डायरेक्ट किया बल्कि पर्दे पर भी वो एक बेटे की भूमिका में दिखे। असली जिंदगी का रिश्ता पर्दे पर भी उतना ही असरदार नजर आया। बेहतरीन अदाकारा रेखा जी ने इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय से एक अलग ही रंग भरा। आइए सुनते हैं रेखा पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: कमर कर धनिया देखी
1: चल बन रे।
2: चल बन क्या है बोलो हमें न सताओ, हाय हाय बोलो सैया हमें न सताओ।
0: चल ससुरिया बनती है

दोस्तों, आपको इस फिल्म की एक और दिलचस्प बात बता दें कि राज कपूर साहब, जो खुद एक महान निर्देशक और अभिनेता थे, उन्होंने अपने बेटे रणधीर कपूर को निर्देशन की कमान सौंपी और उन्होंने अपने पिता राज कपूर के साथ मिलकर एक ऐसी यादगार फिल्म बनाई जो पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की गहराई को दिखाती है। कुल मिलाकर फिल्म धर्म धर्म करम बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तो चलते चलते सुनते जाइए इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

नहीं संगीत के साथ मैं कुछ मेल शामिल करना चाहूँगी। हमें ये मेल मिला है असलम खान, रेशमा खान, फातिमा गांव नांगली जाजू बिजनौर से। इनको भी हमारी आज की फिल्म और उसके गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। और एक दो मेल मैं जल्दी से और शामिल करना चाहूँगी। अगला मेल हमें मिला है भगवत वर्मा जी का, और इनके साथ हैं इनके परिवार के अन्य सदस्य। इन्होंने भी कहानी और सभी गीत इनको बहुत पसंद आ रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और एक और मेल चलते चलते शामिल करूंगी रोहित वशिष्ठ जी का, कि ये वी आर एंजॉयिंग द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और इनको फिल्म और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही अपनी दोस्त नंदा इसर को अनुमति दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलाड़ खेत्र के स्टार्टअप्स के सीईओ नाल गलबात की। श्री मोदी ने कहा कि पुलाड़ स्टार्टअप्स ने सरकार विच अपना भरोसा प्रगट किया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम विच ब्रिक्स खेड मंत्रियों की मीटिंग शुरू हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वालों एक बार फिर

0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दो दिन के दौरे पर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सहेली आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ईरान ने पड़ोसी मुल्कों को अपने खिलाफ अमरीका की इक्तसादी मुहिम में शामिल होने के खिलाफ खबरदार किया है। क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कोलंबो में जारी है। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय खवातीन का मुकाबला आज रात ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खला के शोबे के स्टार्टअप इदारों ने सरकार में अपने एतमाद और भरोसे का इजहार किया है। खला के शोबे के स्टार्टअप CEOs के साथ गुफ्तगु के दौरान जनाब मोदी ने उन पर जोर दिया कि अपनी कोशिशों में तसलसल बरकरार रखें और खला के शोबे का एक ऐसा मजबूत इको निज़ाम बनाएं जो दुनिया भर से बासलाहियत अफराद को रागिब करने की सलाहियत रखता हो। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में एक ऐसा साजगार माहौल तैयार किया जाना चाहिए जहां दुनिया भर के लोग खला के शोबे में अपना कैरियर और मुस्तकबिल बनाने के लिए भारत को तरजीही मुल्क के तौर पर देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि लागत और खर्च के एतबार से भारत इंतहाई मुसाबकती मुल्क है और जोखिम उठाने की मजबूत सलाहियत के साथ उसके पास बासलाहियत अफराद भी हैं। वजीर आजम ने कहा कि ये इम्तिजाज मुल्क को आलमी सतह पर खला के शोबे में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर तेजी के साथ खुद को कायम रखने की कुव्वत बख्शता है।
1: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया, जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है।
0: पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुल्क आज खला का कौमी दिन मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चांद पर चंद्रयान स्वयं के कामयाबी से उतरने की याद में मनाया जाता है। 2023 में आज ही के दिन ये खलाई जहाज चांद के जनूबी कुतुब खत्ते के नजदीक उतरा था। इस तारीखी वाकये के बाद भारत ये कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क और खला से मुतालिक शोबों में काम करने वाले दुनिया के सरकर्दा मुल्कों में शामिल हो गया। खला के कौमी दिन के मौके पर न सिर्फ एक तारीखी कामयाबी का जश्न मनाया जाता है बल्कि ये दिन नौजवान नस्ल को खलाई साइंस और इख्तरा की जानिब रागिब करने का एक मौका भी फराहम करता है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज खला के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि खला के शोबे में दरियाफ्त के काम में भारत की काबिल कदर कामयाबियां मुल्क के साइंसी कारकर्दगी, इख्तराक के जज्बे और इल्म के हुसूल के तहत लगन और अज़्म की अक्कासी करती हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि नए आलमी निजाम में भारत अपने खला के शोबे को लगातार उसत दे रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि आज जेन जी इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और साइंसदान नई नई टेक्नोलॉजियां तैयार कर रहे हैं। आज खला के कौमी दिन के मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 की तारीखी कामयाबी को याद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने 23 अगस्त 2023 के उस लम्हे का तस्करा किया जब चंद्रयान 3 चांद के कुतबे जुनूबी के खित्ते पर कामयाबी के साथ उतरा था। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से भारत खला के शोबे में दुनिया के सरकर्दा मुल्कों में शामिल हो गया था। साथ ही उन्होंने भारतीय साइंसदानों की काबिल कदर खिदमात की सताइश भी की। ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के महकमे के वजीरों की मीटिंग आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जारी है। नौजवानों की उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया और इसी महकमे की वजीर ममलिकत रक्षा निखल खडसे ने सभी 11 ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के खेलों के महकमे के वजीरों और वफूद के सरबराहों का खैर मकदम किया। वजारती इजलास में खेलों के जरिए ब्रिक्स मुल्कों के माबैन इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। विशाखापट्टनम में कल ब्रिक्स मुल्कों के नौजवानों के उमूर के वजीरों की मीटिंग हुई थी जो मुश्तरका बयान मंजूर करने के साथ खत्म हो गई। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने तंदुरुस्ती और माहौलियात के लिए साइकिलिंग के फायदों को

0: उजागर करते हुए इसे सेहतमंद तर्ज जिंदगी का बाजाबता हिस्सा बनाए जाने पर जोर दिया है। आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स दोस्ती साइकिलिंग प्रोग्राम के बाद नवानिगारों से बात करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग फिट इंडिया तहरीक का लाजमी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की संडे ऑन साइकिल पहल का मकसद लोगों को साइकिलिंग अख्तियार करने और तंदुरुस्ती के कल्चर को फरोग देने की हौसला अफजाई करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर रहजा शंकर आज से रूस का दो रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वजीर मौसूफ तजारती इकतसादी साइंसी तकनीकी और सकाफती इश्तराक से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन के 27वें इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के वजीर खारजा सेर्गी लाफरूफ से भी मुलाकात करेंगे और इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ उड़ीसा और वस्ती आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय साहली कर्नाटक मशरकी उत्तर प्रदेश गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल और झारखंड में भी कहीं कहीं तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली के बाद हिस्सों में आज सुबह हल्की से लेकर औसत बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक शहर में बेशतर मकामात पर हल्की से लेकर बहुत हल्की बारिश और कहीं कहीं औसत बारिश हो सकती है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने हमसाया मुल्कों को तंबीह की है कि ईरान के खिलाफ अमरीका की इकतसादी मुहिम में शामिल न हो। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी मुल्क इसमें शामिल होते हैं तो ईरान उन्हें अपना दुश्मन तसव्वुर करेगा। IRIB के साथ एक इंटरव्यू में जनाब रजाई ने कहा कि ईरान कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अगर हमसाया मुल्कों ने अमरीका के इकतसादी दबाव डालने के इकदाम की हिमायत की तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर खित्ते के मुल्क अमरीका की मुहिम में शामिल होते हैं तो ईरान खलीज फारस और आबनाए हुरमुस से तेल की बरामदात को रोक सकता है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी फिर से बढ़ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा एक तस्वीर शेयर की है जिसमें अहमियत की हामिल आबनाए हुरमुज को नए अमरीकी इलाके के तौर पर दिखाया गया है। सदर ट्रंप ने इस महीने की 18 तारीख को भी इसी तरह की तस्वीर शेयर की थी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 2 विकेट पर 150 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम में एक तब्दीली की गई है। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले ऑलराउंडर सारंश जैन अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। कुलदीप यादव इन्फेक्शन की वजह से टीम में शामिल नहीं हैं। भारत को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने पहला टेस्ट 165 रन से जीता था। FIH हॉकी वर्ल्ड कप में आज रात भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। पूल ई का यह मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। भारत के क्वालिफाई करने का इन्हिसार चीन और नीदरलैंड्स के दरमियान होने वाले मैच पर भी होगा। आखिर में खास खबरें एक बार और। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खला के शोबे के स्टार्टअप इदारों पर जोर दिया है। तो आलमी सतह पर हुनरमंद अफराद को रागिब करने के लिए मजबूत इको निज़ाम तैयार करें। वज़ीर-ए-आज़म ने खला के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। ब्रिक्स मुल्कों के खेलों के महकमे के वजीरों की मीटिंग आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर रूस के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा और साहली आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ईरान ने पड़ोसी मुल्कों को अपने खिलाफ अमरीका की इकतसादी मुहिम में शामिल होने के खिलाफ खबरदार किया है। क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कोलंबो में जारी है। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला आज रात ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent. Extends greetings on National Space Day. BRICS sports ministers meeting underway in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to embark

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस के इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन

0: व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये आईएनएस सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि जीआरएसई ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। जीआरएसई की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब

0: तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, होर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रिजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल भाव पड़ेगा जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
2: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

दोस्तों, इस गाने में जिस तरह से सायरा बानो ने अपनी नृत्य प्रतिभा का परिचय दिया है, वो आज भी लोगों को बेहद पसंद आता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी कलाकार कौन हैं। जी हाँ, वो हैं बीते ज़माने की जानी मानी अभिनेत्री सायरा बानो। और आज हम उनकी फिल्मों के कुछ गाने आपको सुनवाएंगे और साथ ही में उनकी जिंदगी और उनके करियर से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से भी आपको बताएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार, अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी के साथ। नमस्कार।

आशा भोसले जी की आवाज में ये गाना सायरा बानो के सबसे प्रसिद्ध गानों में से एक है और इस गाने में उनके डांस स्टेप्स को आज भी लोग कॉपी करते हैं।

फिल्म शागिर्द जो कि 1967 में रिलीज हुई थी, इसी फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हैं। और इसमें जिस तरह से सायरा बानू ने अपने नृत्य का परिचय दिया है वो आज भी हम सबको बेहद पसंद आता है।

दोस्तों, सायरा बानो भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज और बेहद ही लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। उन्होंने 1960 और 70 के दशक में अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए दोस्तों हम सब के दिलों में राज किया है। बात करें अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की, तो उनका जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था और उनको अभिनय की कला के साथ साथ नृत्य की कला भी अपने परिवार से ही मिली थी, क्योंकि उनकी माँ अपने जमाने में जानी मानी अभिनेत्री हुआ करती थी और उनकी

माँ का नाम था नसीम बानो और उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार भी कहा जाता है। और इसके साथ ही अगर उनके पिता की बात करें तो उनका नाम था एहसान उल हक जो कि जाने माने फिल्म निर्माता थे। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि परिवार से ही उन्हें फिल्मों के बारे में बेहद अच्छी जानकारी मिली और एक्टिंग का जो उनका अभिनय था उसकी यात्रा थी उसमें उनके परिवार का भी सहयोग मिला। इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से सायरा बानो ने जब अपनी ये बात अपनी माँ को बताई कि वो एक कलाकार बनना चाहती हैं, एक एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, हीरोइन बनना चाहती थी, तो उनकी माँ ने इस चीज़ के लिए उन्हें मना किया। आपको भी जानकर हैरानी हुई ना, लेकिन ये सच है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात से स्वीकार किया था कि दरअसल फिल्मी दुनिया के जो कार्य करने के तरीके हैं, जिस तरह की वहाँ पर नियम और कानून हैं, जिस तरह से वहाँ का माहौल रहता है, ये उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वे नहीं चाहती कि उनकी बेटी फिल्मों में आए। लेकिन सायरा बानो को तो फिल्मों में आना था और इस तरह से उन्होंने कैसे कन्विंस किया अपने माता को, और पिता तो पहले से ही राजी थे, और इस तरीके से उनको पहली फिल्म मिली शम्मी कपूर के साथ जंगली, और उनके अभिनय करियर की हो गई शुरुआत। और ये फिल्म आई थी 1961 में और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था।

झुक गया आसमान इस फिल्म से आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गीत उनसे मिली नजर।

दोस्तों, सायरा बानो जब लगभग 6 साल की थी तो उनको पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन भेजा गया और वहाँ के मशहूर एलिट स्कूल क्वींस हाउस में उनकी पढ़ाई हुई। और जब छुट्टियाँ होती तो वे हिंदुस्तान चली आती अपने माता पिता के पास। और ऐसे ही एक छुट्टी में वो अपने घर आई हुई थी और फिल्म देख रही थी आन। और आन फिल्म महबूब खान साहब ने बनाई थी और इस फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार। और इस फिल्म को देखते वक्त दिलीप साहब की अदाकारी इतना सायरा के बालमन को भाई कि उन्होंने दिल ही दिल में ये तय कर लिया कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से। और लंदन में पढ़ाई के दौरान भी सायरा बानो ने ये सोचा था कि एक दिन वो दिलीप कुमार से मिलेंगी और उनसे अपनी शादी की चाहत को बताएंगी। और ये बात उन्होंने एक बड़े मीडिया हाउस के साथ इंटरव्यू में भी कही है। और ये जब पता चला सायरा की माँ नसीम बानो को, तो उन्होंने कह दिया कि अगर आपको दिलीप कुमार की शरीक हयात यानी पत्नी बनना है तो पहले उनकी पसंद नापसंद और उनके शौक को, उनके मिजाज को तो जान लीजिए, समझ लीजिए। और इसके बाद सायरा बानो ने ऐसा ही किया। और उन्हें जब मालूम हुआ कि दिलीप कुमार साहब को उर्दू बेहद पसंद है, शेरो शायरी करना भी बेहद पसंद है, तो सायरा बानो ने बाकायदा मौलवी साहब से उर्दू पढ़ना लिखना और सीखना शुरू कर दिया। यहां तक कि दिलीप साहब को सितार पसंद था तो सायरा बानो ने सितार सीखने की कोशिश भी की। ऐसे ही कुछ और दिलचस्प किस्से जो कि हमारे आज की कलाकार सायरा बानो पर आधारित हैं वो हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो साथी अरुणीश द्विवेदी के साथ।

साल 1955 से जुड़ा हुआ जब तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फिल्म आजाद की शूटिंग चल रही थी और इसी दौरान फिल्म प्रोड्यूसर एस वासन ने दिलीप कुमार की मुलाकात एक मशहूर ज्योतिषी से कराई और ज्योतिषी ने कहा कि उनकी शादी 40 बरस के बाद होगी और जो उनकी दुल्हन बनेगी वो उनसे करीब आधी उम्र की होगी और वो फिल्मों से भी जुड़ी होगी। अब इस भविष्यवाणी को सुनकर दिलीप साहब बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए और उन्होंने इसे एक मजाक के तौर पर लिया, लेकिन उनको नहीं पता था ये भविष्यवाणी आगे चलकर सच होगी। और जब दिलीप कुमार की शादी सायरा बानो से हुई तब ये भविष्यवाणी सच निकली।

दोस्तों, इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं और ये मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी शहनाज अब्बासी का ईमेल आया है और इन्होंने लिखा है कि आपको मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार। और सायरा बानो पर केंद्रित कार्यक्रम एक ही कलाकार बेहद पसंद आ रहा है और अभी हमने सागिर्द फिल्म का गाना सुना और झुक गया आसमान से जो गाना आपने सुनाया, उनसे मिली नज़र, ये भी हमें बेहद पसंद आया। इसी तरीके से एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आप गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो पर केंद्रित गाने सुनवा रहे हैं, उनकी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं और उनका फिल्मी सफरनामा बेहद रोचक जानकारी के साथ आप प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें बेहद ही पसंद आ रहा है। यादगार प्रस्तुति के लिए आपको बधाई। ये कहना है हीरामणि वर्मा दत्रेगी भाटापारा से। ऐसे ही हम कुछ और संदेश लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि सायरा बानो के अगर फिल्मी करियर की बात करें तो बहुत सारी अच्छी खासी फिल्मों में उन्होंने काम किया है और उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी लोगों को पसंद आते हैं। जैसे कि 1968 में एक फिल्म आई थी पड़ोसन, और इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया बिंदु का किरदार आज भी बेहद कल्ट माना जाता है। उसी तरह से 1970 में आई थी पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार के साथ इस फिल्म में उनकी भूमिका को बेहद सराहना मिली। शागिर्द 1967 में आई थी जॉय मुखर्जी के साथ, इस सुपर डुपर हिट फिल्म में उनके लिए फिल्म फेयर नामांकन

भी मिला था। इसके अलावा और भी कई फिल्में हैं, जैसे कि आई मिलन की बेला, ब्लफ मास्टर, झुक गया आसमान, विक्टोरिया नंबर 203। और बात अगर दिलीप कुमार साहब की हो, क्योंकि उनके साथ भी उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है, और उनमें से कुछ बेहतरीन फिल्मों के अगर नाम लेना हो तो गोपी, सगीना और बैराग प्रमुख हैं। तो लगभग 2 दशकों तक फिल्मी दुनिया में वे सक्रिय रहीं, और आज 23 अगस्त है और आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था, तो इस तरह से हम उनकी जन्मदिन की शुभकामनाएं भी अपने इस चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल की ओर से और अपने श्रोताओं की ओर से दे देते हैं। और साथ ही अब आपको पड़ोसन फिल्म से ही एक बेहद प्यारा सा नगमा सुनाते हैं, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार साहब ने।

और एक ऐसा मैसेज हमारे पास और भी आया है जो कि मेरठगंज से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का है। इन्होंने लिखा है, अरुणेश भाई नमस्कार, कैसे हैं आप जी? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। आप जैसे श्रोताओं का प्यार है और हाँ लगाव है जो हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतरीन बना देता है। और कुछ और मैसेज जल्दी से ले लेते हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हैं। इसके अलावा गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, और इन्होंने लिखा है कि एक ही कलाकार में आज आप सायरा बानो पर जो जानकारी दे रहे हैं, उनकी फिल्मों के गाने सुनवा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए जो दिलचस्प किस्से सुना रहे हैं वो हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से भी मैसेज आया है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सायरा बानो की, और सायरा बानो की अगर कुछ और बातें करें उनकी फिल्मों के बारे में खास तौर पर, तो आपको पता है ना दिलीप कुमार साहब जो है बेहद ही शांत और गंभीर स्वभाव के माने जाते थे, जबकि सायरा बानो तो बेहद ही चुलबुली और शरारती अंदाज वाली महिला थी। और 1967 में फिल्म पन्हाला में शूटिंग के दौरान एक दिन रात में बिजली चली गई। ऐसे में दिलीप साहब चुपचाप बाहर निकल जाते और खिड़की पर छोटे छोटे पत्थर मारते। अब सुनसान माहौल में पत्थरों की आवाज सुनकर सायरा और उनका स्टाफ डरने लग जाता और इसमें दिलीप साहब को बेहद मजा आता। ऐसा ही एक और किस्सा है, फिल्म पूरब और पश्चिम की शूटिंग के दौरान सायरा बानो की तबीयत अचानक खराब हो गई और इसके बाद उन्हें इलाज के लिए लंदन जाना पड़ा। और इसी दौरान फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर मनोज कुमार साहब से किसी ने कहा कि वे सायरा बानो की जगह किसी दूसरी एक्ट्रेस को लेकर के फिल्म को पूरी कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मनोज कुमार साहब ने कहा कि वह सायरा के ठीक होने का इंतजार करेंगे और जरूरत पड़ी तो फिल्म को बंद कर देंगे, लेकिन सायरा बानो के बिना पूरब और पश्चिम फिल्म नहीं बनेगी। और इस व्यवहार से मनोज कुमार के इस व्यवहार से दिलीप साहब यानी दिलीप कुमार साहब बेहद प्रभावित हुए। और बहुत सालों बाद जब मनोज कुमार ने क्रांति फिल्म बनाई और दिलीप कुमार साहब को उसमें काम करने का ऑफर दिया, तो उन्होंने बिना स्क्रीन प्ले यानी बिना कहानी सुने ही या पढ़े ही इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। दिलीप कुमार ने इसे मनोज कुमार के पुराने

एहसान का सम्मान बताया। एक और भी दिलचस्प किस्सा यह है कि जब दिलीप कुमार का और सायरा बानो से पूछा गया कि उनका अगर बेटा होता तो कैसा होता, तो उन्होंने कहा था कि अगर उनका बेटा होता तो शाहरुख खान जैसा होता। दरअसल एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि दुख और दर्द भी सायरा बानो की ज़िंदगी में आया। दरअसल दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में सायरा बानो की प्रेगनेंसी को लेकर के एक ज़रूरी बात ये बताई थी कि उस दौरान कुछ फिल्मी जो मैगजीन्स होती हैं या जो अखबार होते हैं जो फिल्मों की गॉसिप्स लिखते हैं, और उसमें ये लिखा गया था कि सायरा बानो माँ नहीं बन सकती हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। दिलीप कुमार साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके मुताबिक 1972 में सायरा बानो प्रेग्नेंट हुई थी, और जब वो 8 महीने की गर्भवती थी तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के चलते वे बाथरूम से गिर गई थी, और इसके बाद जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो ऑपरेशन नहीं हो पाया और गर्भनाल में फंसने की वजह से बच्चे को बचाया नहीं जा सका। तो ये एक बेहद ही दर्दनाक हादसा था, और इसके बाद सायरा बानो ने दोबारा फिर कभी इस दिशा में नहीं सोचा। तो कुल मिलाकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सायरा बानो और दिलीप कुमार की जो जोड़ी थी वो बेहद ही दिलचस्प, और उन्होंने सुख दुख सब साथ साथ अपनी ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों को साथ साथ महत्व दिया है। और अब दोस्तों हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो आपको इस कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों मैं भी चला अब अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत इस वायदे के साथ, फिर किसी न किसी कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन।
1: वंदना सखी, देखो जैसे ही सामान लगे ना, मोए तो मायके की बहुत याद आवे।
0: हाँ।
1: पेड़न पे पड़े झूले और गीत गाती सखी याद आवे।
0: हाँ बहना, मायको तो मायको हुए, हमारो बचपन तो वही मायके में बीतो है ना। कितने हंसी ठिठोलिन की गूंज वह आंगन में बसी है, सावन की झरी के संग वे गीत हूँ याद आमे।

0: बोयो। सखी बस जे ना है कि हम झूला झूलते और गीत गाते, भैया ते झगड़ो हु खूब हो तो जब भैया अलबेटा में फंसाए देते।
1: और बहन बहन भाई के झगड़े में एक लंग सबरी बहने है जाती और दूसरे लंग सबरे भाई।
0: हाँ
1: पर देखो ना, ब्याह के बाद याई बंधन के काजे भाई बहन एक दूजे के काजे हुड़के हैं, याद करे हैं, कितेक लोक गीत या के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।
0: हाँ सखी, भैया के काजे बहना दरवाजे पे खड़ी प्रतीक्षा करें और भैया की राह देखें। इन सब में हूँ कितेक आनंद आए और कितेक हुड़क होए माए की जावे की।
1: हाँ, आनंद तो प्रतीक्षा में हूँ होए बहना, पर देखो अब तो मोबाइल ने, मेट्रो ने, गाड़ी ने समय की प्रतीक्षा को कम कर दियो है।
0: हाँ, और सखी रक्षाबंधन तो पूरे देश में मनायो जाए, पर जो हमारे ब्रज में सनूने की प्रथा चली आ रही है ना, वो सबते अनूठी है, क्योंकि ब्रज में दामाद को घी बूरो खवायो जाए यह दिना।
1: हाँ, और चुटकी हुले में के कहा घी बूरो खाए बिना जाए रे।
0: हाँ, और सनूने पे दीवार पे गेरुते लीप के खड़िया ते सनूने रखी जाए।
1: बहना श्रवण कुमार हूँ बनाए जामे, माता पिता को तराजू में बिठाए भय। देखो बहना, जे त्योहार ऐसा है कि जामे रंग बिरंगे धागे पवित्र बंधन ते आत्मा की गहराई तक जुड़े हैं, और यह पवित्र सात्विक बंधन की प्रथा सदियों पुरानी है। यही रक्षा सूत्र ने देवतान की रक्षा करी जब इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी।
0: हाँ सखी, और यमुना ने यमराज को राखी बांध के अमरता को वरदान प्राप्त कियो, और द्रौपदी ने हूँ श्री कृष्ण को धागो बांधो, तो देखो ना कैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चीर बढ़ाए के लाज राखी। या त्योहार पे बहना जब भाई की कलाई पे राखी बंधे तो जे ही सोचे के बुरे वक्त में हमारो भाई हमारी रक्षा करे।
1: और बहना, इतिहास और लोक साहित्य ते कई कहानी निकसे हैं। एक कहानी है कि जब सिकंदर दुनिया जीत पे निकसो हो तो वाकी रानी ने राजा पुरु को धागा भेज अपने पति की रक्षा की याचना करी, और याई तरिया मेवाड़ की रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के आक्रमण ते बचाव के काजे हुमायूं को राखी बांधी और रक्षा की कामना करी।
0: सखी बड़ो ही पवित्र त्योहार है जे भाई बहन के रिश्ते को, जा मैं भैया राखी बंधवाए को आतुर रहवे और बहन की बाट देखे, और जो सखियां और बहनें आते हैं बेहू अपने की बाट देखे।

0: बड़ा ही मधुर गीत आपने सुनवायो संवेद स्वर में। बहना सावन की ऋतु मिलन और विरह को संगम सी लगे, कहूँ तो बाट चोहती सखियाँ और कहूँ पियाते मिलन या भैया के आईबे की खुशी। सच में ही सावन कैसे लोक जीवन को प्रभावित करे और गीतन में जे भाव प्रकट हुए हैं।
1: हाँ सखी, तुम सही कह रही हो। सावन में गाए जाए वाले लोकगीतन में प्रेम और संस्कृति की झलक मिले, तो आज यही विषय पे भेंट वार्ता सुनवाए दें। जब भेंट वार्ता का विषय है ब्रज में सावन के लोकगीतन में लोक जीवन, प्रेम और संस्कृति की मधुर अभिव्यक्ति, यहाँ पे जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल और भेंट कर रही हैं श्रुति पुरी।
2: राधे राधे श्रोताओं, सावन के संग ही संग ब्रज की धरती पे हरियाली सी छाई रही है, घटा घिर रही हैं, बिजुरी चमके हैं, मोर बोले हैं और बांगन में झूले पड़ गए हैं। आज की ब्रजमाधुरी में हम बात कर रहे हैं ब्रज की उन पुरानी मल्हारन की, जिनमें केवल सावन की फुहार नहीं बल्कि ब्रज को लोक जीवन, नारी के मन की बात, प्रेम भक्ति रिश्तेन की मिठास और समाज की अनेक तस्वीरें ने दिखाया गया है। आज हमारे संग हैं डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल जी, ब्रज भाषा लोक संस्कृति की समर्पित साधिका हैं। पूर्णिमा जी राधे राधे।
3: सभी श्रोता भैया बहनन को राधे राधे।
2: देखो पूर्णिमा जी, सावन को नाम सुनते ही ब्रज में जो हरियाली धरती है, कदम्ब की डार है, झूला झूलती सखियां हैं, यमुना की लहर और दूर दूर तक कहीं कान्हा की मुरली की तान सुनाई देवे है, तो ब्रज में ऐसा लगे है कि सावन बरस रहे है। और सावन को जो महीना हुए है ना, वो मन के भीजवे को महीना है और या भीगे मन ते निकले हैं हमारी लोक गीत मल्हार। तो हम आपते जे जानना चाह रहे हैं पूर्णिमा जी।

0: सावन की या
1: बात
0: मल्हार में बहन प्रकृति भी है और भक्ति भी है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो। और
0: हाँ
1: अभी हाल ही तीज निकल के गई है,
0: हाँ
1: तो तीज की हूँ कछु व्याख्या करो सावन के गीतन में।
0: तीज तो ब्रज की बेटी और बहुन को बहुत प्यारो त्योहार है। तीज आई तो बागल में झूला पड़ गयो और पीहर की याद भी जगवे लग जाए,
1: सच
0: जो
1: में।
0: बहन बेटी अपनी ससुराल में हुए हैं ना। तो मैं भाई की एक मल्हार सुनाऊं। अरी बहना तीजन को आयो त्योहार।

0: गए। या मल्हार में श्रुति बहन, जो बेटी अपनी ससुरार में है ना, वो अपने बारे में वर्णन कर रही है, और
1: हाँ
0: वो पियर जायबे को सपनों देख रही है।
1: हाँ और वाह के मन की कसक कितनी बढ़िया या मल्हार के माध्यम से बताई गई है कि कैसे छटपटाए रही है कि
0: हाँ
1: अपने वीर के संग वो अपने पीहड़ चली जाए और वहां पे सब घरवारें के संग झूला झूलवे को तरस रही है। लेकिन ऐसे और भी कई लोक चित्र होंगे ना जो मल्हारन में प्रत्यक्ष परिलक्षित है रहे होंगे, बिनके बारे में हूँ कछु बताओ।
0: हाँ बहन, हाँ तो बहन, सावन के महीना में बहू बेटी सब सज धज के, हरी हरी चूड़ी पहन के कुआं पे पानी भरवे जाएं और आपस में बात करें हैं, और कछु तो अपने मन में मगन है कि पानी भरती रहें और जो अगल बगल में बात होती रहे ना, बात सुनती रहें। तो ऐसा ही एक चित्रण में मल्हार के द्वारा आपको सब कुछ सुनाऊं। बहू अपनी सास से कहे है कि मैं पानी भरवे गई और मैंने वहां एक बात सुनी। तो बाकी सास कहे कि क्या सुनी, तो वो मल्हारन के माध्यम से वह अपनी भावनाएं व्यक्त करे है।
1: बिल्कुल सुनाओ।
0: हाँ वो कहे है

0: मेरी सासुल सुने आई नई नई बात कुएं पे मैं ना बोलती। वो अपनी सास से कह रही है कि सासुल आज मैंने कहा सुनो मेरी बात समझो। तो सास कह रही है हाँ बहू बता। एक लोग आई सासुल यों कहे अरी बहना तेरे बलम को दूजो ब्याह कुए पे मैं ना बोलती।
1: पूर्णिमा जी देखो लोकगीत में कितना बढ़िया चित्रण किया है। मैना के मुख सौ अपने हृदय की बात कह रही है। और एक बात और है ना कि लोकगीत तो लोक अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो आगे या गीत में कहा कहे हो गए है।
0: हाँ बहन वो कह रही है अपनी सास से पूछ रही है कि मेरे पति की दूसरी शादी की दूसरे ब्याह की चर्चा क्यों चल रही है। तो पूछ रही है के तोरी सासुल मेरी महीन बाप की अरी सासुल कह तो मैं लाई थोड़ो दान कुए पे मैं ना बोलती। फिर सास कह रही है
1: जवाब दे रही
0: हाँ कि
1: है
0: ना तोरी बहुवल तू हीन बाप की अरी बहुवल ना तो तू लाई थोड़ो दान कुए पे मैं ना बोलती।
1: कितना प्यारो लिखो है
0: हाँ बहन ये तो आपसी बातचीत को एक माध्यम है चाहे आपस में या
1: बिल्कुल।
0: मल्हार के माध्यम

0: माध्यम से सब बात है जाए। अब वो बता रही है कि वो दूसरी शादी के बारे में क्यों सोच रहे हैं।
1: हाँ, कि कहीं मेरे रूप रंग पे तो सवाल ना आए।
0: हाँ, वो सास बता रहे फिर अपनी बहू को, बता रही है कि तू तोरी बहुअल मेरी सामरी,
1: ओए होए।
0: तू तोरी बहु

0: बोलती
1: बहुत ही
0: मेरी
1: सुंदर,
0: बहुवल।
1: बहुत सुंदर। देखो लोकगीत जो हुए हैं ना, हमें केवल मनोरंजन ना करावे हैं, बल्कि समाज की जो बीती हुई तस्वीर है ना, वाकू सामने लाए के रखे हैं। तो पूर्णिमा जी, कहा सावन की मल्हारन में सामाजिक जीवन की लोक गाथाएं भी मिले हैं।
0: हाँ महेंद्र, देखो एक ऐसी मल्हार है कि पहले समय में अपनी बेटी को, बालकन को ब्याह छोटी उम्र में कर दियो जाओ, फिर वो बेटी ब्याह के बाद कई साल तक अपने मायके में ही रहे करेगी, और जब तक वो जवान है जाएं, उनके मन में प्रेम प्यार की बात हिलोर लेवे लग जाएं, तो उनको फिर कहूं दूसरी जगह प्रेम चक्कर चल जाए करे हो कब। तो ऐसी ही एक मल्हार चंदना के रूप में हमारे लोक जीवन में बड़ी प्रसिद्ध है कि चंदना को विवाह छोटी उम्र में है गयो, फिर वाके बाद वो अपने मायके में रही, तो वाको बाद में जब वो थोड़ी बड़ी भई, समझदार भई, तो वाको प्रेम एक समला नाम के सुनार के संग है गयो। और
1: अच्छा।
0: जब बाकी भाभी को ये बात पतो चली, तो माने अपने पति से कही, यही को चित्रण मैं मल्हार के द्वारा करूं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो अपने पति ते कह रही है और चंदना को भी समझा रही है, तीजन चरचा हीरी चंदना चल रही जी, ए जी को

0: जी जगत हंसाई चंदना तेरी है रही जी।
1: समझाए रही
0: हाँ
1: है। हाँ
0: गामन में तो बड़ी जल्दी फैल जाए ना ऐसी बात।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ चंदना की जो भाभी है ना वो अपने पति से या कि चंदना के भैया ते कह रही है ए जी को

0: उसके भैया ने चिट्ठिया लिखी। चिट्ठिया का मतलब धोरे पे कारो लाला जी ने लेके दियो
1: कितना बढ़िया
0: जी,
1: लिखा है ना, धोरे
0: धोरे
1: पे
0: पे
1: कारो,
0: कारो
1: यानी
0: हाँ
1: सफेद कागज पे कारी स्याही तो लिख दियो
0: चिट्ठी लिख दी।
1: है।
0: ││ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: बढ़िया बात कही है चंदना की मल्हार जी, हमें बतावे है कि लोकगीतन में केवल प्रेम और त्योहार नहीं है, बल्कि समाज की मर्यादा, स्त्री की स्थिति और वह समय की सामाजिक व्यवस्थाओं दर्ज है। तो हम आपसे पूर्णिमा जी ये पूछना चाह रहे हैं कि ब्रज में कान्हा की भी तो लीलाएं हुआ करती, तो कान्हा की लीला भी का मल्हारन में अलग अलग रूपन में मिले है?
1: हाँ बहन, बिल्कुल अलग अलग रूपन में मिले हैं। कान्हा तो ब्रज के कण कण में बसे हैं, कहीं मुरलीधर, कभी गोपाल, कभी नटखट कान्हा और कभी मनिहारी बन के ब्रज की नारिन के बीच में लीला करे हैं।
0: बिल्कुल।
1: यहाँ कान्हा को राधा के रूप में वर्णन ना है, यहाँ कान्हा राधा का रूप बनाए के ना है हमें। यहाँ तो कान्हा चूड़ी बेचने वाली मनिहारी को रूप धरे हैं। लोकगीत में या मल्हार में वाको बड़ो सुंदर चित्रण है।

0: लाल छलवे को रानी राधे का।
1: देखो कान्हा को ये रूप उनकी चंचलता हास परिहास ब्रज की लोक लीलान को कितनो
0: सामने
1: जीवंत,
0: लावे हैं।
1: हाँ
0: हाँ वे
1: जीवंत
0: सामने
1: बनाए
0: लावे
1: देवे हैं।
0: हैं।
1: और देखो बहन, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अब आपकी जो मल्हार में भक्ति और दाम्पत्य स्नेह को जो भाव है वो बहुत गहरो दिखे है, जैसे आपने मैना की बात करी या जैसे आपने जो अभी चंदना को मल्हार सुनायो, तो वहां में दाम्पत्य जीवन के बारे में हूँ कछु लक्षण से दिखे हैं बिनको कछु बयान मिले है, तो दाम्पत्य जीवन की भी बात मल्हारन में आई है।
0: हाँ बहन बिल्कुल आई है। या को सबसे बढ़िया एक चित्रण है सुदामा की पत्नी द्वारा अपने पति को भगवान के पास भेजनो और उन पे विश्वास करनो। और वो सुदामा जी ते कह रही हैं सुशीला जी

0: अरे का, और वो अपनी स्थिति को वर्णन कर रही है सुशीला जी कि छान पुरानी स्वामी है गई मेरे स्वामी, टप टप टप कत बूंद चले जाओ स्वामी द्वारे का।
1: कितना मार्मिक है।
0: और का कह रही है,

0: का।
1: यही तो है कि ब्रज के लोकगीतन में दुख के बीच में हूँ आस बनी रहवे है। तो पूर्णिमा बहन, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँ हूँ कि जैसे संयोग को मल्हार हुए है, वैसे ही विरह की भावना हूँ, विरह के मल्हार हूँ तो ब्रज में बहुत प्रचलित हैं, और वो तो बहुत ही मार्मिक रूप में मिले हैं। जैसे एक मौकू याद आ रहे हो है कि जब ते गए हैं मोहन छोड़ के, ब्रज को
0: हाँ
1: भयो है बेहाल, पड़े हैं लाले जान के।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
1: ऐसा ही
0: सुंदर।
1: और मल्हार आपकी स्मृति में आए रहे हो तो हमारे श्रोताओं से
0: मेरी
1: साझा
0: स्मृति
1: करो।
0: तो एक सबते मार्मिक और सबते ही विश्वास की और करुणा की एक मल्हार है जो आप समझेंगे कि रुक्मणी और कृष्ण को प्रेम। तो रुक्मणी जी आंसू बहाती बहाती पाती लिख रही हैं और श्री हरि पे अपनी खबर भेज रही हैं और विनती कर रही हैं कि

0: कहा कह रही है श्रुति बहन
1: हाँ
0: कि खबर हमारी लीजो हरी आए के जी, ए जी कोई है।

0: बहन या आंखन ते नीर बरस रहे हो है, पर मन श्री हरि को पुकार रहे हो है। विरह में भी भक्ति बस गई है।
1: कितना मार्मिक है, हृदय पसीज सो जाए है ऐसी मल्हारन को सुन के। पर देखो, एक मुँह को याद आ रही है, मैंने बहुत पहले सुनियो हो कि जब भगवान पे विश्वास की बात है, और ये भी एक द्रौपदी की मल्हार मैंने सुनी काई, बहुत समय पहले सुनी, आपको कच्ची स्मृति में आ रही है, बहुत ही मार्मिक सी
0: बहन
1: मल्हार
0: भाई,
1: है।
0: हम कैसे भूल सके हैं, वो तो हमारी धरोहर है बहन। हाँ, सभा के बीच में द्रौपदी संकट में ही और अपने साम्रे को मल्हार के द्वारा पुकार रही, मेरी बहना द्रौपदी तो रोवे ठाड़ी, दुर्योधन खींचे साड़ी, लाज बचइयो मेरे
1: मेरे
0: साम्रे।
1: सामरे।
0: मेरी बहना,
1: आगे कहा कह रहे हैं या मल्हार में?
0: हाँ बहन, स्त्री की लज्जा ही सबसे बड़ो गहनो है, और बाकी लाज उतर रही है तो वो कन्या के आस लगाए के बैठी है
1: बिल्कुल
0: और कह
1: साची कह
0: रही
1: रहे हैं।
0: है कि चीर तो खे

0: और या को एक और कड़ी तो है या कि एक और
1: हाँ
0: ही कड़ी
1: बहन,
0: है।
1: ये तो सबसे बढ़िया है, वो बता रही है कि कैसे हारे कहाँ वे हो। हाँ मेरी बहना जुआ में पतने हारी, रोवे द्रौपदी सी नारी, लाज बचइयो मेरे सामरे।
0: तो अटूट भरोसा दिखाई दे
1: हाँ
0: रहे हो
1: सुती
0: है ये
1: बहन,
0: हमें। ये तो बहुत मर्म की बात हमने करी। पर एक बात बताओ पूर्णिमा बहन, कि जब मल्हार में ज्यादातर जो हुए है ना, वो श्यामा श्याम के श्रृंगार को वर्णन हु मिले हैं, बिनकू हिंडोरा पे बैठे भय भी दिखावे हैं, बिनकू झूला झूलामत भय भी दिखावे हैं, और जो विहार करते भय भी दिखावे हैं। तो ऐसा हु कछु श्रृंगार को सुंदर वर्णन आप हमें हमारे श्रोतान को बताओ मल्हार के माध्यम से।
1: हाँ बिल्कुल बहन। ब्रज की नारी अपने श्याम के रूप को देख के बहन उनकी छवि को मन में बसाए ले है और कह रही है रुक्मन कि मेरी मैया मोइना सुहावे शिशु, पाल मेरो तो पति श्याम
0: कितना
1: है।
0: सुंदर लिखा है।
1: हाँ बता रही है मोर

0: मेरी बहन
1: वाह
0: ना,
1: बहुत
0: या को भाव तो आप समझ गई होंगी जब
1: बिल्कुल
0: उनको रिश्ता
1: बिल्कुल
0: शिशुपाल के संग करने की सोची ना उनके पिताजी
1: बिल्कुल। और
0: भैया
1: देखो
0: ने।
1: कितना सुंदर वर्णन किया है, मोर मुकुट हू है, वैजंती माल है, हाथन में मुरली है, और शाम के या रूप को ब्रज में याही की भक्ति करी जाए है, प्रेम बरसायो जाए है याही रूप पे, और प्रेम और भक्ति दोनों याही रूप में तो बसे हैं। तो पूर्णिमा जी, आज आपने सावन की मल्हार के माध्यम से ब्रज के लोक जीवन, प्रेम भक्ति और सामाजिक जीवन की बहुत सुंदर तस्वीर हमारे श्रोतान के सामने रखी। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमें ब्रज के लोक जीवन, प्रेम भक्ति, नारी मन और संस्कृति ते बेजोड़ तरीका से जोड़ दियो है। याई मधुर भाव के साथ हम आपको हृदय ते अभिनंदन करे हैं और आप ते विदा लेवे हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे हैं भेंट वार्ता, जानकारी दे रही हैं डॉक्टर पूर्णिमा अग्रवाल और भेंट करता हैं श्रुति पुरी। अभियाई के संग आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुए है। मोय यानी वंदना जोहरी को और मोय यानी के वंदना को देव अनुमति नमस्कार।
0: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
2: विवेक कुमार तोमर।
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: हेलो दोस्तों, हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सीएम श्री स्कूल सेक्टर 21 रोहिणी के विद्यार्थी हैं। आज हम आए हैं आकाशवाणी केंद्र के एफएम गोल्ड चैनल के
1: रेडियो हिट्स प्रोग्राम में।
0: मैं हूं अनन्या, आपकी रेडियो दोस्त। चलिए मेरे दोस्तों से मिलते हैं।
2: मैं अक्षत कक्षा 8वीं से।
3: मैं सौम्या कक्षा 7वीं से।
4: मैं अक्षिता कक्षा 7वीं से।
5: मैं तन्मय कक्षा 8वीं से।
6: मैं सवरीन कक्षा 8वीं से।
0: तो दोस्तों, आज हमारे पिटारे में है अनेक छोटी छोटी मगर प्रेरणादायक कहानियाँ और कविताओं का खजाना। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं हंसने को, गर्व करने को, भावुक होने को? क्योंकि हम

0: भारत की बात करेंगे जो हमारे दिलों में बसता है। वैसे सौम्या, इस बात से मुझे याद आया, आपको एक कहानी लेकर आई है।
1: हाँ जरूर, क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहोगी?
0: जरूर जरूर।
1: दोस्तों, कहानियाँ सुनना तो सबको पसंद है। आधुनिक मानव का विकास भी तो एक सुंदर कहानी है। आज मैं आप सभी के सामने भारत की अनेकता में एकता विषय को लेकर एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रंगों की एक ही डोर। कहानी छोटी है लेकिन दिल छू लेने वाली है। तो चलिए हम सब मिलकर इस कहानी के सफर पर चलते हैं। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले की एक छोटी सी सोसाइटी में एक नया सांस्कृतिक पार्क बन रहा था। पार्क के बीचों बीच एक बहुत बड़ी कैनवस लगाया गया, जिस पर पूरे भारत की एक साझी पेंटिंग बनानी थी। इसके लिए अलग अलग राज्यों से आए 4 बच्चों को चुना गया। असम से अंधता, पंजाब से मनप्रीत, तमिलनाडु से कार्तिक और राजस्थान से आया कबीर। पहले दिन जब चारों बच्चे पार्क में मिले तो सबने अपनी अपनी कला दिखानी शुरू करी। मनप्रीत ने ढोल और सरसों के खेत बनाए, कार्तिक ने अपने रंगों से सुंदर मंदिर और नारियल के पेड़ केरे, अंधता ने बिहू नृत्य की आकृति बनाई और कबीर ने रेत के टीले तथा रंग बिरंगी प्यारी प्यारी सुंदर कठपुतलियां बना दी। लेकिन जब शाम को उन्होंने पेंटिंग को दूर से देखा तो वह बहुत बिखरी सी लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि यह एक ही कैनवस है। सब अपनी अपनी तस्वीर को बेहतर बताने लगे। तभी सोसाइटी के दादाजी वहां आए। उन्होंने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बच्चों, तुम सबने अपनी अपनी जगह की तो सुंदरता को उकेर दिया, लेकिन एक बात बताओ, इस चित्र में भारत कहाँ है? कार्तिक ने पूछा, दादाजी, भारत तो इन सब में है ना? दादाजी ने कहा, ये सब अलग अलग मोती हैं। जब तक इन्हें एक धागे में ना पिरोया जाए, यह माला नहीं बनेगी। अगले दिन चारों बच्चों ने एक अनोखी योजना बनाई। मनप्रीत के खेतों के ऊपर से बहती हुई नदी को कार्तिक ने अपने नारियल के बागों से जोड़ दिया। कबीर के राजस्थान के रेगिस्तान की सीमाओं पर अंधता के असम की हरी भरी चाय की पत्तियां बिछा दी और सबने मिलकर बीचों बीच एक विशाल तिरंगा फहराता हुआ बनाया, जिसकी छाव में ये सारे दृश्य एक दूसरे से गले मिल रहे थे। जब पेंटिंग पूरी हुई तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा भारत एक ही सांस ले रहा हो। भाषा अलग थी, पहचान अलग थी, खान पान अलग था, लेकिन कला के उस कैनवस ने सबको एक कर दिया। दोस्तों, ऐसा ही तो है अपना प्यारा भारत। यहाँ अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, बोलियों, खान पान, नृत्य कला आदि को मानने वाले लोग रहते हैं, मगर जब एक भारत की बात आती है तो हम सब भारतीय बन जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी तो यही कहा है, पहले और सबसे अंत में हम सब भारतीय हैं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद।
0: इतना देशभक्ति प्रेम देखकर मानो मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया। इसी बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है।
2: भारत

0: अक्षता, तुम्हारे पास भी तो एक सुंदर कविता थी, क्या तुम वो हम सबको सुनाओगी?
1: जरूर जरूर, मैं सबको अपनी प्यारी सी कविता जरूर सुनाऊंगी। आज आपके लिए एक बहुत प्यारी सी लोरी लेकर आई हूँ, जिसका विषय है एक लोरी शहीदों के नाम। निंदियाँ आना मीठी मीठी, जब बल के झपकाऊँ मैं, नमन शहीदों को तुम करना जब

गाऊं मैं। तो चलिए अब मैं इस मीठी सी निंदिया में उन महान वीरों से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आजादी जती नशफाक उल्ला से।

बुद्ध को देखूं और सुने आऊं मैं, स्वामी विवेका गौतम बुद्ध को देखूं और सुने आऊं मैं। निंदियां आना मीठी मीठी जब पल की झपकाऊं मैं। वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। अब मैं उन बाल वीरों के सपने के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने छोटी उम्र में ही अद्भुत साहस किया। गुरु गोविंद सिंह के चार साहबजादे जिनको बाल में ही दीवारों में चिनवा दिया गया था। जोरा जीत जुजार फते सा, जोरा जीत जुजार फते सा, बालक वीर बन आऊं मैं।

वीर गाथा केवल और केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। अब मैं उन वीरांगनाओं के सपनों के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने साहस और त्याग की मिसाल

0: थी जब पल के झपकाऊं मैं, नमन शहीदों को तुम करना जब उनमें खो जाऊं मैं, जब उनमें खो जाऊं मैं। धन्यवाद।
1: अरे वाह, इसी बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, सुनना चाहेंगे आप लोग?
2: हाँ हाँ जरूर।

0: सबरीन, तुम्हारी आंखें कुछ लाल लाल सी लग रही हैं। लगता है तुमने रात भर कहानियां ही लिखते में अपनी आंखों को दर्द दिया है बस।
1: हाँ, क्या करूं।
2: सबरीन, आप ना टीवी कम देखना आज और अपनी आंखों को आराम देना, तो आपकी आंखों की लालिमा चली जाएगी।
0: ठंडे पानी से आंखों को धुला करो सुबह सुबह बहुत अच्छी तरीके से।
3: आप घर जाकर 15 मिनट अपने आंखों के ऊपर खीरा रखना
4: और अपनी आंखों के आसपास हमेशा सफाई रखना।
1: आप टीवी और फोन बहुत कम देखना।
2: वैसे अगर हम आंखों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, 25 अगस्त से नेत्र पखवाड़ा आ रहा है और ये

0: 8 सितंबर तक चलेगा।
1: अरे वाह, इस नेत्र पखवाड़े से तो हमें काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। किसी को इसका उद्देश्य पता है?
2: नहीं, आप क्या बताएंगी?
1: इसका उद्देश्य ये है कि ये लोगों को नेत्रदान के प्रति प्रेरित करता है और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना है।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी सोच है इसकी।
3: दोस्तों, यह मौसम बारिश का है। अगर इस मौसम में गीत संगीत के साथ चाय पकौड़े हो जाए तो बात ही क्या। बरसात की बात की है तो क्यों ना हम अपने विद्यालय की छात्रा साक्षी दीदी से कजरी का गीत सुने।
4: हाँ हाँ, जरूर।

0: अरे रक्षाबंधन भी तो आ रहा है, चलो अब उसके बारे में बात कर रहे हैं।
1: हाँ हाँ चलो।
2: हाँ, जरूर।
1: वैसे सौम्या तुमने क्या सोचा है रक्षाबंधन के बारे में?
0: मैं तो अपने भाई से काफी सारे तोहफे मांगूंगी और उसको सबसे प्यारी राखी बांधूंगी ताकि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करे।
1: और अक्षिता तुमने?
3: मैं तो अपने भाई को कितनी भी प्यारी राखी बांध दूं, देगा तो बेको वो वैसे भी कुछ भी नहीं।
1: कैसा भाई है? अक्षत तुमने क्या सोचा है अपनी बहन को देने के लिए?
0: मैं अपनी बहन को ढेर सारी चॉकलेट्स दूंगा।
1: बस चॉकलेट ही?
0: और क्या?
3: अपनी बहन को बस चॉकलेट से मनाओगे?
0: हाँ बस।
3: अरे ये तो बहुत छोटा सा गिफ्ट है, क्या वो खुश हो जाएगी चॉकलेट से?
0: छोटा है लेकिन मेरी भावनाओं से भरा है।
1: हाँ वैसे भी भाई बहनों को तोहफों से ज्यादा भावनाएं चाहिए होती हैं।
3: ये भाई बहन के बीच का प्यार जताता है और इससे हम ये भी सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने भाई बहनों की रक्षा करनी चाहिए।
4: हाँ एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है ताकि वो उसकी सुरक्षा करे, उसके साथ रहे।
5: और एक भाई भी राखी बनवाने के बाद वह सारी चीजें करता है जिससे कि उसकी बहन सुरक्षित रहे। और हाँ मैं अपनी बहन के लिए चॉकलेट्स के अलावा रेडियो पे एक गाना भी डेडिकेट करना चाहूंगा।
3: कौन सा?
1: कौन सा? बताओ।

0: दोस्तों, बातें तो बहुत हो गईं। अब समय हो गया है घर जाने का, तो आप तैयार हैं घर चलने को?
1: हाँ,
0: तो चलो अब घर चलते हैं। लेकिन लेकिन लेकिन अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नई कहानी नई कविताओं के साथ
1: इसी चैनल इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर।
0: तब तक

अभी हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम, 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। खेल खिलाड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम बात करते हैं सभी खेलों के बारे में, सभी खिलाड़ियों के बारे में। मैं विदुषी वत्स और मेरे साथ है मेरे साथी अतुल।
2: नमस्कार श्रोताओं और नमस्कार विदुषी।
1: नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हमारे पास बहुत सारे खेल और उनके समाचार हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। बात होगी हॉकी की, बैडमिंटन की,
2: बहुत कुछ है विदुषी आज, रेसलिंग की और डूरंड का फुटबॉल भी चल रहा है और बहुत कुछ। तो क्यों ना शुरुआत करें हॉकी से।
1: जी हाँ बिल्कुल।
2: बात करते हैं विश्व कप हॉकी की, जहां से कल का दिन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए निराशाजनक रहा। दूसरे चरण के पूल ई के एक मुकाबले में भारत को मेजबान नीदरलैंड्स के हाथों एक के मुकाबले 3 गोल से हार का सामना करना पड़ा। एम्स्टलवीन के वॉगनेर स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए उसे हर हाल में जीत की जरूरत थी। लेकिन बेहद प्रतिस्पर्धी मुकाबले में नीदरलैंड्स ने अहम मौकों पर बेहतर प्रदर्शन किया और 3 अंक अपने नाम कर लिए। नीदरलैंड के फ्लोरिस वॉटेलबोअर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुकाबले का पहला हाफ गोल रहित रहा। दोनों टीमों ने लगातार एक दूसरे के सर्कल में दबाव बनाया, लेकिन भारतीय रक्षा पंक्ति और नीदरलैंड्स का डिफेंस दोनों ही अपनी जगह मजबूत रहे। भारत ने कई अच्छे आक्रमण बनाए और पेनल्टी कॉर्नर के मौके भी हासिल किए, लेकिन उन्हें गोल में बदलने में सफलता नहीं मिली। तीसरे क्वार्टर में 41वें मिनट में नीदरलैंड्स को आखिरकार सफलता मिली। डुको टेलगेन कैंप ने गोल कर मेजबान टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। भारत ने इसके बाद बराबरी की कोशिश तेज कर दी, लेकिन चौथे क्वार्टर में नीदरलैंड्स ने अपने जवाबी हमले का शानदार इस्तेमाल किया। 51वें मिनट में ज्वेप उडेमेकर्स ने काउंटर अटैक पर शानदार वन टच फिनिश के जरिए नीदरलैंड्स की बढ़त 2-0 कर दी। भारत ने हार नहीं मानी और मुकाबला खत्म होने में लगभग 8.5 मिनट बाकी थे, तभी कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर जोरदार ड्रैग फ्लिक के जरिए भारत को मुकाबले में वापस ला दिया। भारतीय टीम ने इसके बाद बराबरी के लिए पूरा दबाव बनाया, लेकिन नीदरलैंड्स ने भारतीय आक्रमण का जवाब एक और तेज काउंटर से दिया। 55वें मिनट में थाइस वॉन डैम ने शानदार कौशल दिखाते हुए गेंद को गोलकीपर के ऊपर से उठाकर गोल में पहुंचाया और नीदरलैंड्स को 3-1 की निर्णायक बढ़त दिला दी। आखिरी मिनटों में भारत ने वापसी की कोशिश की, लेकिन नीदरलैंड्स की रक्षा पंक्ति ने कोई और मौका नहीं दिया। मुकाबला 3-1 से नीदरलैंड के पक्ष में समाप्त हुआ। इस जीत के साथ नीदरलैंड्स ने पूल ई में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है, जबकि भारत के लिए सेमीफाइनल की राह अब बेहद कठिन हो गई है। जहां भारत को अपने अगले मुकाबले में 5 गोल के बड़े अंतर से जीतना होगा, वहीं उसे यह भी देखना होगा कि उसी दिन नीदरलैंड्स इंग्लैंड को भी हराए। अब भारत के सामने अगली चुनौती अर्जेंटीना की है। भारत और अर्जेंटीना का मुकाबला 24 अगस्त को होगा। भारतीय टीम के लिए मैच बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हर मुकाबला उसके विश्व कप अभियान की दिशा तय करेगा। मैच के बाद हार्दिक सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: हमें अपनी टीम पे बहुत ज्यादा नाज है, जैसा भी खेले हैं, एज अ टीम खेले हैं। एंड हॉकी एक ऐसा गेम है कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी होती है, यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट। आई थिंक वहाँ पे हम शूटे हैं, बट इफ इट्स अ फेलियर, इट्स अ फेलियर एज अ टीम। इफ वी विन तो वो जीत भी टीम को जाती, एंड आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम।
2: विश्व कप की ही बात करें तो महिला वर्ग में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसा मुकाबला है जो उसके पूरे अभियान की दिशा तय कर सकता है। आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। मुकाबला एम्स्टलवीन के वॉगनेर हॉकी स्टेडियम में ही भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे खेला जाएगा। पूल ई की स्थिति इस समय बेहद रोमांचक है। नीदरलैंड्स पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। दूसरे स्थान के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच मुकाबला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के खाते में फिलहाल 1-1 अंक है, जबकि चीन के पास 2 अंक हैं। भारत को ये 1 अंक पहले चरण में चीन के खिलाफ 2-2 के ड्रॉ से मिला था। ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलकर 1 अंक हासिल किया था। दूसरे चरण के अपने पहले मुकाबले में भारत को नीदरलैंड से 0-2 गोल से हार मिली थी, यानी भारत के लिए समीकरण काफी स्पष्ट है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत ही जरूरी है, लेकिन केवल जीत ही काफी नहीं होगी। इसके पहले भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे नीदरलैंड्स और चीन का मुकाबला होगा। उस मैच का परिणाम भी भारत की सेमीफाइनल उम्मीदों पर सीधा असर डालेगा। अगर नीदरलैंड्स चीन को हरा देता है और भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो भारत 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। अगर नीदरलैंड्स और चीन का मुकाबला ड्रॉ रहता है और भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तब भी भारत 4 अंकों के साथ चीन से आगे निकल सकता है, लेकिन अगर चीन नीदरलैंड्स को हरा देता है तो चीन 5 अंक तक पहुंच जाएगा और भारत की जीत के बावजूद भारतीय टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। इसलिए भारत के लिए शाम का नीदरलैंड्स चीन मुकाबला भी उतना महत्वपूर्ण है जितना रात का अपना मैच। बात अगर भारतीय टीम की करें तो नीदरलैंड्स के खिलाफ 2-0 की हार के बावजूद भारतीय रक्षा पंक्ति ने काफी अनुशासित प्रदर्शन किया है। मेजबान टीम ने केवल 2 गोल किए और दोनों पेनल्टी कॉर्नर से आए। गोलकीपर सविता के नेतृत्व में भारतीय डिफेंस ने लंबे समय तक नीदरलैंड्स के हमलों को रोक कर रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को डिफेंस के साथ साथ आक्रमण में भी अधिक प्रभावी होना होगा। सर्किल के अंदर बने मौकों को गोल में बदलना, पेनल्टी कॉर्नर का बेहतर इस्तेमाल करना और शुरुआती मिनटों में दबाव बनाना भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया भी चीन के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ के बाद जीत की तलाश में उतरेगा। चीन ने उस मुकाबले में 39वें मिनट में बढ़त बनाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अबिगेल विल्सन ने पेनल्टी स्ट्रोक से बराबरी कर दी थी। इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला केवल 2 टीमों की भिड़ंत नहीं है, यह सेमीफाइनल की आखिरी उम्मीदों की लड़ाई है। अब बात करते हैं 22 अगस्त को पूल ई और पूल एफ में जो अन्य मैच खेले गए उनके क्या नतीजे रहे। पुरुष और महिला वर्ग दोनों वर्ग की बात कर लेते हैं। विश्व कप के दूसरे चरण में 22 अगस्त को पूल ई और पूल एफ में 4 मुकाबले खेले गए। इनमें पुरुषों के पूल ई में भारत नीदरलैंड्स के अलावा इंग्लैंड अर्जेंटीना मुकाबला शामिल था, जबकि महिला पूल एफ में जर्मनी बेल्जियम और अर्जेंटीना स्पेन के मुकाबले हुए। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों के पूल ई की। भारत और नीदरलैंड्स के मुकाबले के साथ ही इसी पूल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने थे। अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 3-1 गोल से हराया। इस मुकाबले के हीरो रहे अर्जेंटीना के टॉमस डोमेन। डोमेन ने 26वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से पहला गोल किया। 10 मिनट बाद उन्होंने सर्किल के किनारे से शानदार रिवर्स स्टिक शॉट लगाकर अर्जेंटीना की बढ़त 2-0 कर दी। इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में वापसी की कोशिश की। 50वें मिनट में सैम हुपर ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल करके स्कोर 1-2 किया, मगर अर्जेंटीना ने दबाव में संयम बनाए रखा और मैच खत्म होने से लगभग 2.5 मिनट पहले डोमेन ने ही एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की और अर्जेंटीना को 3-1 से जीत दिलाई। बात करें महिला पूल एफ की तो वहां बेल्जियम ने जर्मनी को 3-1 से हराया। मेजबान बेल्जियम ने 23वें मिनट में बढ़त बनाई। डेल्फिन मॉरियन ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे किया। जर्मनी ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए वापसी की, लेकिन बेल्जियम ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया और फिर से बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद 42वें मिनट में शार्लोट एंगलबर्ट ने गोल करके बेल्जियम को 3-1 की मजबूत बढ़त दिला दी। जर्मनी ने आखिरी मिनटों

0: में गोलकीपर को हटाकर अतिरिक्त फील्ड खिलाड़ी के साथ आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन बेल्जियम ने स्कोर को कायम रखा। 3-1 की जीत के साथ बेल्जियम ने सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को मजबूत किया। डेल्फिन मॉरियन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पूल एफ के अन्य मुकाबलों की बात करें तो अर्जेंटीना ने स्पेन को 3-0 से हराया। अर्जेंटीना ने मैच की शुरुआत ही बेहद तेज अंदाज में की। मैच शुरू होने के केवल 33 सेकंड बाद अर्जेंटीना को पेनल्टी स्ट्रोक मिला और अगुस्तीना गोरजिलानी ने उसे गोल में बदल दिया। इसके कुछ ही मिनट बाद जुआना कास्टेलेरो ने पेनल्टी कॉर्नर से अर्जेंटीना की बढ़त 2-0 कर दी। 14वें मिनट में गोरजिलानी ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 3-0 कर दिया। स्पेन ने इसके बाद गोल करने की कोशिश की, लेकिन अर्जेंटीना की डिफेंस ने उसे कोई मौका नहीं दिया। 3-0 की जीत के साथ अर्जेंटीना ने महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। सोफिया कैरो को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस तरह 22 अगस्त के मुकाबलों के बाद पूल ई और पूल एफ की तस्वीर काफी दिलचस्प हो गई है। पुरुषों के पूल ई में नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना ने अपनी स्थिति मजबूत की है, जबकि महिला पूल एफ में अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और बेल्जियम की उम्मीदें भी मजबूत हुई हैं। बात करें अगर आज खेले जाने वाले मुकाबलों की तो पूल ई और पूल एफ के आगामी मुकाबले हॉकी विश्व कप 2026 के अब उस दौर में पहुंच गए हैं जहां हर मुकाबला सेमीफाइनल की तस्वीर तय करने वाला है। पूल ई और पूल एफ में आज होने वाले मुकाबले इसी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात महिला पूल ई की करते हैं जहां भारतीय टीम की नजरें खास तौर पर टिकी हैं। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे नीदरलैंड्स और चीन आमने सामने होंगे। इसके बाद रात 10:30 बजे ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला होगा। दोनों मुकाबले एम्स्टलवीन में ही खेले जाएंगे। बात पुरुष पूल एफ की, आज इस पूल में दो महत्वपूर्ण मुकाबले निर्धारित हैं। भारतीय समय के अनुसार रात 9 बजे जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। इसके बाद रात 12 बजे यानी 24 अगस्त की शुरुआत में स्पेन और बेल्जियम के बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबले इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूल एफ में दूसरे चरण में पहुंची टीमों के बीच सेमीफाइनल की दौड़ जारी है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में दोनों टीमों के लिए 3 अंक महत्वपूर्ण होंगे। वहीं स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाला मुकाबला भी पूल एफ की अंतिम स्थिति पर असर डालेगा। महिला पूल एफ की शेष मैच 24 अगस्त को ही होंगे। वहां स्पेन और जर्मनी तथा बेल्जियम और अर्जेंटीना के मुकाबले खेले जाएंगे। इन मुकाबलों से इस पूल की अंतिम स्थिति और साफ होगी। यानी कुल मिलाकर आज भारतीय दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ध्यान महिला पूल ई पर रहेगा। शाम 7:30 बजे नीदरलैंड्स बनाम चीन और रात 10:30 बजे ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, ये दोनों मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारतीय महिला टीम के लिए समीकरण सरल है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत और चीन के मुकाबले का अनुकूल परिणाम। दूसरी ओर पुरुष पूल एफ में जर्मनी ऑस्ट्रेलिया और स्पेन बेल्जियम के मुकाबले सेमीफाइनल की दौड़ को और रोमांचक बनाएंगे। विश्व कप के इस दूसरे चरण में अब एक एक गोल की अहमियत बढ़ गई है। पेनल्टी कॉर्नर, डिफेंस में अनुशासन और आखिरी मिनट तक दबाव बनाए रखने की क्षमता ही बड़े मुकाबलों का फैसला कर सकती है। भारतीय खेल प्रेमियों की नजरें खास तौर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के महिला मुकाबले पर रहेंगी।
1: हॉकी की बात से आगे बढ़ेंगे बैडमिंटन की तरफ, जहां BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है और हमारे सहयोगी सेमीफाइनल्स की रिपोर्ट के साथ हैं तैयार।

चोट से जूझती ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की बैडमिंटन जोड़ी को शायद ये लगने लगा होगा कि 2026 उनके करियर का सबसे नाकाम साल है। इंजरी के चलते ना एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा ले सके ना प्रतिष्ठित उबर कप में, लेकिन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में उम्मीदों के विपरीत भारत के लिए मेडल जीत उन्होंने इतिहास रच डाला। शनिवार को नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। 8,000 से ज्यादा दर्शक ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की उस जोड़ी को देखने आए थे जिन्हें टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कोई उम्मीदवारों की गिनती में भी नहीं रख रहा था। आखिर शुक्रवार को इन्होंने 15 साल के लंबे इंतजार के बाद वुमेन्स डबल्स में भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया था। पिछली बार ये कारनामा 2011 में अश्विनी पुनप्पा और ज्वाला गुट्टा ने किया था, जिनको ट्रीसा अपना रोल मॉडल मानती हैं।

0: of the ideal for us, the women's doubles, that they made created histories in India.
1: BWF World Championships 2026 में ट्रीसा और गायत्री का खेल देख अश्विनी पोनप्पा भी प्रभावित हुई. बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा,
2: Both Gayatri and Treza can rotate well. Gayatri has smart smashes that she plays from the back of the court. Incredibly sharp at the net. Treza, powerhouse from the back of the court. Moves into the net. Also can take the pace off from the net. Overall game, very solid from both Gayatri and Treza.
1: शायद सफलता का एक पैमाना ये भी है, जब आपके आदर्श आपके गुणगान गाने लगे तो कामयाब हैं आप. हालांकि सेमीफाइनल में पहली वरीयता प्राप्त टान निंग और ल्यू शेंग शू की जोड़ी के सामने भारतीय जोड़ी अंडरडॉग थी.
3: From China, ल्यू शेंग शू एंड टान निंग.
1: लेकिन शायद वो क्वार्टर फाइनल में अपने से कई ज्यादा मजबूत चीनी जोड़ी को हराने वाली ट्रीसा और गायत्री की परफॉर्मेंस थी जिसने भारतीय फैंस की उम्मीदें परवान चढ़ा रखी थी. बार बार स्टेडियम पुलेला पुलेला जॉली गुड के नारों से गूंजता. और गड़गड़ाती तालियों के बीच इन्होंने शुरुआत भी ऐसी ही की, 7-2 से प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ा. लेकिन टान और लियू की चीनी जोड़ी जिसका लोहा दुनिया मानती है कहां पीछे रहने वाली थी. 9 पॉइंट लगातार हासिल कर उन्होंने मैच का रुख बदला और ऐसी चीख पुकार के साथ हर पॉइंट का जश्न मनाया जो छत से उतरती भारतीय फैंस की खामोशी को चीरती चली गई. दर्शकों ने फिर भी गायत्री और ट्रीसा का उत्साहवर्धन करना नहीं छोड़ा.

0: जो है तेजी से बढ़ता है।
1: और देखिए इसका जो लक्ष्य है वो देश के 500 से अधिक जिलों को कम से कम 4 लेन वाले जो राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ना है, और साथ ही सीमा और तटीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों का सड़क संपर्क को और अधिक बेहतर किया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और लॉजिस्टिक अगर दक्षता की बात करें तो इसका उद्देश्य यातायात की बाधाओं को कम करके परिवहन लागत और समय की बचत करना भी है।
0: बिल्कुल। और अभी जैसे फरमाइशी हमारा कार्यक्रम चल रहा है तो अगले जो हमारे कलाकार हैं वो है नरदेव बेनीवाल, और नरदेव बेनीवाल को सुनने के लिए हमारे पास बहुत सारी फरमाइश हैं, और जिसमें पहली फरमाइश बिहरवाला खुर्द सिरसा से आई है सुनील भाई। बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैनी जाखड़, हिमानी जाखड़, शिवम जाखड़, और इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी, और इसी
1: और
0: क्रम
1: नरदेव बेनीवाल को ही सुनना चाहते हैं। ये जो फरमाइश मिली है नगर निगम वार्ड 28 से, और इसको भेजने वाली हैं बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, जबीना और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश आदर्श नगर मलुट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: और ये फरमाइश हमें मिली आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, इसको भेजने वाले ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर और उनका समस्त परिवार।
0: नरदेव बेनीवाल को ही सुनना चाहते हैं गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर महाराष्ट्र से, इसको भेजने वाले अभिजीत, सरिता, परिणीता और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लाड़ू, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: नरदेव बेनीवाल को ही सुनना चाहते हैं सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है नलवेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नवांकर, निर्मला और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: नरदेव बेनीवाल को ही सुनना चाहते हैं जिला मुरादाबाद गांव दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा और उनके परिवार के बाकी सदस्य भी।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है गांव कलाना तहसील भादरा राजस्थान से, इसको भेजने वाले हैं विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश और उनका समस्त परिवार।
0: अगली फरमाइश हम तक आई है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू की।
1: नरदेव बेनीवाल को ही सुनना चाहते हैं गांव खोखरा वाली, विनोद वारसा, विशाल, विकास, रोशनी और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और उनके परिवार के सदस्य।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक अरोड़ा और प्रकाश अरोड़ा की।
0: गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करणपुर राजस्थान से फरमाइश आई है राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू, मनु शिवी सेठी, करणपुरी और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मेरी है धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और उनका समस्त परिवार।
0: नरदेव बेनीवाल को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये।
1: ये फरमाइश हमें मिली है हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह और उनका समस्त परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश दतरंगी से आई है भाटा हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा।

0: उनके परिवार के सदस्य।
1: तो आइए भाइयों की पसंद पर सुनते हैं नरदेव बेनीवाल से रागनी और किस्सा रहेगा पिंगला भरथरी का। और भाई ये उस मौके की रागनी है हेमंत भाई, जब राजा भरथरी अपनी पत्नी पिंगला के मुंह में डूबे हुए थे। वह हर समय रानी के ख्यालों में खोए रहते थे। जब उन्हें संसार की नश्वरता और वैराग्य का एहसास होता है तब सब कुछ त्यागकर जोगी बनने की राह पर जाने की बनाते हैं। इस रागनी में राजा भरथरी को समझाया जा रहा है कि वह स्वयं आत्ममंथन करें कि किसने देखा स्वर्ग आपा मारे बिना।
0: बिल्कुल,
1: इसका अर्थ है कि भाई खुद मरे बिना, खुद तपस्या कर कष्ट सहे बिना कोई व्यक्ति स्वर्ग को नहीं पा सकता। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी नरदेव बेनीवाल से, और आज के हमारे जो अगले कलाकार हैं वो है मूलचंद शर्मा।
1: और उनके लिए जो फरमाइश हमारे पास आई है, शिवाजी विहार दिल्ली से, गार्विक चौधरी, गुरप्रीत, परमजीत सिंह, राजन सिंह, सोनिया, लक्ष्मी देवी और उनके परिवार के सदस्य।

0: और ये अगली फरमाइश हमें मिली है सादुल सहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश कलानौर से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा।
0: और ये फरमाइश मिली है भटिंडा रोड मंडी से, इसको भेजने वाले राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और उनका समस्त परिवार।
1: वही अगली फरमाइश रोबर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और उनके परिवार के सदस्यों की। अगली फरमाइश एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लाभ्या, आरब, मेघा, साक्षी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है
1: ये मुंगी पेठण महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगड़कर, परमेश्वर रोहिणी कंगड़कर परिवार के और बाकी सदस्यों की। और अगली फरमाइश इसी क्रम में आई है पहाड़गंज मुंताली ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और अहमद भाई देखिए फरमाइश हमें काफी और भी मिली है जो हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे हमेशा की तरह। तो भाई देखिए कार्यक्रम कृषि जगत भी आप सुनते रहें।
1: जी
0: और अब आप सभी की पसंद पर सुन लेते हैं मूलचंद शर्मा से रागनी किस्सा रहेगा नल दमयंती का। और ये उस मौके की रागनी है जब राजा नल व दमयंती जुए में सब हारने के बाद जंगल में भटक रहे होते हैं तो भूख व प्यास से दमयंती बेहोश होकर गिर जाती है। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी मूलचंद शर्मा से, और किस्सा था नल दमयंती का। और मूलचंद शर्मा की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुई। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यावहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
3: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वह महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्टस एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्पष्ट किया है कि वायरस H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौजूदा समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसम में इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: हेमंत भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। देखिए, सरकार द्वारा हमेशा कोशिश रहती है कि किसान भाइयों की मदद के लिए कोई ना कोई योजना चलाई जाए,
1: बिल्कुल,
0: कोई ना कोई कार्यक्रम चलाया जाए। और इसी क्रम में सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड यानी चलाया गया, और इसके तहत किसानों को उनके जो खेत की मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की स्थिति की सही जानकारी दी जाती है। और इतना ही नहीं, यह रिकॉर्ड इसमें दर्ज किया जाता है। यह कार्ड हर 3 साल में दिया जाता है ताकि किसान मिट्टी के हिसाब से सही खाद और उर्वरकों का प्रयोग कर सके। और इसका किसानों को, भाइयों को सबसे बड़ा फायदा यही है हेमंत भाई कि देखिए, जो उर्वरक की सही मात्रा, खेत में किस पोषक तत्व की कमी है, इसकी सटीक जानकारी मिल जाती है। लागत में कमी आती है, अनावश्यक खाद या यूरिया के इस्तेमाल से बचत होती है, पैदावार में वृद्धि होती है, मिट्टी के अनुकूल फसल और खाद चुनने से पैदावार में बढ़त होती है।
1: बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी या कृषि वैज्ञानिक खेतों से मिट्टी के नमूने यानी सैंपल इकट्ठा करते हैं। इसके बाद प्रयोगशाला में इस मिट्टी की बारीकी से जांच की जाती है। जांच के दौरान मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक और आयरन जैसे 12 जरूरी पोषक तत्वों और मिट्टी के पीएच मान का पता लगाया जाता है। जांच पूरे होने के बाद किसानों को एक प्रिंटेड कार्ड दिया जाता है जिसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं। ये कार्ड बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य की जांच रिपोर्ट की तरह होता है।
0: बिल्कुल भाई, देखिए, मिट्टी की जांच की आपने बात की, तो मिट्टी की जांच पहले की जाती है, तो इसमें भी भाइयों को कुछ सावधानी बरतने की हेमंत भाई जरूरी है। जब भी आप मिट्टी की जांच कराएं तो भाई देखिए, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। एक तो खेत के चारों कोनों से आप मिट्टी अंदर जाकर अच्छी तरह से चारों कोनों से मिट्टी लें। ये नहीं कि भाई एक जगह से आपने मिट्टी ले ली, और कम से कम 6 इंच गहराई से मिट्टी लें। करीब 250 ग्राम के करीब आप मिट्टी लें। इसे मिलाकर साफ सुथरी थैली या उस किसी थैले में आप रखें, और जिसमें चीज में भी आप रखें उस पर भाई देखिए अपने खेत का नंबर, खसरा नंबर, ये लिखना बहुत ही जरूरी है ताकि आपकी जो पहचान बनी रहे। और नमूना लेते समय इस बात का भी एक ध्यान आपको रखना चाहिए कि भाई जहाँ गोबर की खाद, कई बार गोबर की खाद की ढेर हम खेत में इकट्ठी लगा देते हैं
1: जी,
0: तो उसके नीचे से भाई वहां से नमूना ना लें। इसी तरह खेत में यदि कोई पेड़ हो और उसकी छाया वहां पड़ती हो तो भाई वहां से भी नमूना ना लें। इस तरह से आप ठीक से नमूना लेंगे और सही पहचान खेत खसरे की लिखेंगे तो भाई आपकी जो मिट्टी की सही से जांच हो पाएगी और उसका सारा रिकॉर्ड मृदा स्वास्थ्य कार्ड में रहेगा।
1: बिल्कुल, जैसा खेती को, हमारे खेत को जरूरत है उस तरह का उर्वरक, उस तरह का खाद हम लगाएंगे और उससे जो पैदावार है वो काफी अच्छी तादाद में होगी।
0: बिल्कुल, और भाई जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि अभी फरमाइश हमें काफी और भी मिली है, तो अगले कलाकार हैं

0: प्रेमराज प्रधान, और इनसे जो उपदेश सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है गुलाम रोड हरगोबिंद रोड नगर पंजाब से मिली है। इसको भेजने वाले हैं सुरेंद्र संधू, अनिता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश शिवाजी बिहार दिल्ली से आई है गार्विक चौधरी, गुरप्रीत, परमजीत सिंह, राजन सिंह, सोनिया, लक्ष्मी देवी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर, गौरव ग्रोवर, उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश सुनील भाई आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: ये फरमाइश हमें मिली है सिद्धेश्वर नगर और इसको भेजने वाले हैं पंजाब रामटेक, यशोधरा, पूजा और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, करण बत्ता, हार्दिक बत्ता और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है भाई गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा की।
1: अगली फरमाइश आई है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगम परवीन और शहनवाज अब्बासी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। और ये फरमाइश मिली है ऊपर कोट मोहला चौखंडी बुलंदशहर से।
1: प्रेमराज प्रधान को सुनने के लिए एक और फरमाइश हमारे पास है, ये कोटवा नारायणपुर पावा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय। इसी क्रम में दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और उनके समस्त परिवार की तरफ।
1: अगली फरमाइश जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है जमानिया गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: अगली फरमाइश आई है हमारे पास, ये आई है फरमाइश, ये तहसील भद्रवाह जिला डोडा जम्मू कश्मीर से आई है पुरुषोत्तम कुमार, शेख जफर हसन, उस्मान अली अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है असम से और इसको भेजने वाले हितेंद्र दास। साथ ही हमें फरमाइश मिली है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू की।
1: अगली फरमाइश गांव रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आई है उदयपान पाल सिंह, जयहंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है साले भाटा छत्तीसगढ़ से, इसके भेजने वाले जीतू धुरो, केवल, किरण और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शहना हसन, नाक्सा अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: ये फरमाइश हमें मिली है कुकदा कुमारी छत्तीसगढ़ से, बलराम बया, दामिनी, रोमेश और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: रोबर्ट करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, रामफल शर्मा और उनके परिवार के सदस्य।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है लखनऊ दोनों मध्य प्रदेश से जी बी चौबे, लाडली चौबे और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रबीना, आफिया, सना, समाहिना और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: प्रेमराज प्रधान को ही सुनना चाहते हैं भगवत शर्मा, शांति शर्मा, लीलावती, विनता और उनका समस्त परिवार। और ये फरमाइश मिले है दतरंगी से।
1: अगली फरमाइश आई है जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: ये फरमाइश हमें मिली है मेरठ कैंट से और इसको भेजने वाली दिग्दर्शन और कविता गौड़। भाई आप सभी की पसंद पर सुनते हैं प्रेमराज प्रधान से ये उपदेश।

0: तो सुनील भाई, हमने अभी सुना प्रेम राज प्रधान को, पानी में पानी मिल जा ये उपदेश, और जैसा कि ये हमारा पत्रोत्तर पर आधारित कार्यक्रम है, और इसमें हमारे पास एक पत्र आया है सुनील भाई, और ये पत्र आया है चौधरी रामकुमार सिंह और हरिंद्र सिंह का।
1: तो रामकुमार भाई क्या लिखते हैं?
0: और ये पत्र लिखते हैं गांव करथला इगलास से। ये कहते हैं कि मैं दलहनी फसलों में सब्जी वाली मटर की बिजाई करना चाहता हूं, इसका बिजाई का सही समय और कौन सी भूमि अच्छी और इसके लिए कितने डिग्री तापक्रम उचित रहेगा, इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं और सिंचाई आदि की क्या व्यवस्था करें ताकि अच्छा उत्पादन रहे।
1: तो देखिए, रामकुमार भाई और हरिंदर भाई, दलहनी सब्जियों की बात करें तो सब्जी वाली मटर पहले नंबर पर आती है, और मटर की खेती करके किसान भाई अच्छी आमदनी ले सकते हैं। आप, अच्छी सोच है आपकी। और मटर की खेती के लिए देखिए, 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का जो समय सबसे उचित समय माना जाता है। और भाई, इसके अलावा देखिए, अगेती व पछेती मटर की खेती भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे उचित समय है वो 25 अक्टूबर से और 15 नवंबर तक का है
0: जी।
1: जमीन की बात आपने की, तो देखिए, अम्लीय भूमि को छोड़कर मटर हर प्रकार की भूमि में

0: उगाई जा सकती है, लेकिन अगर दोमट मिट्टी मटर की फसल के लिए सबसे जो उपयुक्त और उचित मानी जाती है, तो दोमट मिट्टी वाले अगर आपके पास खेत है तो भाई आप उसमें उपयुक्त जो मटर की फसल लगा सकते हैं।
1: जी
0: मटर की बुआई के लिए बीज अंकुरण के लिए 22 डिग्री जो सेल्सियस तापमान उचित माना जाता है, और फसल के विकास की अगर बात करें तो फसल के विकास के लिए 10 से 18 डिग्री जो सेल्सियस तापक्रम सबसे उचित माना जाता है।
1: जी
0: सब्जी मटर की उचित किस्मों में पंत उपहार, जवार मटर 3, T9, T56, NP29, अर्ली बैजर बोनीवाल, जवार P4, काशी उदय आदि जो प्रमुख किस्में हैं। इसके अलावा भाई क्षेत्र के हिसाब से आप किस्में ले सकते हैं, लेकिन जहाँ से भी बीज लें उपचारित बीज लें। सिंचाई की जहाँ तक बात है तो देखिए, प्रारंभ में मिट्टी में जो नमी के आधार पर 1-2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय पर और दूसरी सिंचाई फलियां बनने के समय पर करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि सिंचाई जब भी करें तो हल्की सिंचाई करें और फसल में पानी ठहरने ना दें।
1: जी
0: कटाई में मटाई की बात करें तो मटर की फसल सामान्यतः 130 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी कटाई दराती से करना उचित माना जाता है। तब 5 से 7 दिन धूप में सुखाने के बाद इसकी मड़ाई करनी चाहिए। इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे, उन्नत किस्म लेंगे और सही खेत का चयन करेंगे, तो आप मटर फसल से ले पाएंगे भरपूर उत्पादन।
1: बिल्कुल, और उम्मीद है कि रामकुमार भाई और हरिंद्र भाई को जो जानकारी सुनील भाई ने दी है, उम्मीद है कि वो अच्छी लगी होगी और इस जानकारी का इस्तेमाल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल में मुनाफा कमा सकते हैं। साथ में अब जो अगली फरमाइश, जैसा कि फरमाइश पर आधारित हमारा कार्यक्रम चल रहा था, रामेंद्र नागर और विनय नागर हमारे अगले कलाकार हैं, और उनको सुनने के लिए जो हमारे पास सुनील भाई जो फरमाइश आई है, वो इसमें पहली फरमाइश जो है हमारे पास, वो ग्राम पाजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चांसोलिया।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम स्तोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम, यश और उनके परिवार की तरफ
1: इसी
0: से।
1: क्रम में अगली फरमाइश आई है, ये फरमाइश आई है चिट्टा मंदिर रोड यमुना नगर से। लिखने वाले श्रोता हैं तेजपाल सिंह, प्रजापति, अनुराधा, क्षमा, शिवी और उनके परिवार के सदस्य।
0: ये फरमाइश हमें मिली है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी की।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और उनके परिवार के सदस्य। इसी क्रम में अगली फरमाइश जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है, वो आई है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और ये आई है फरमाइश हमारे पास जालंधर से।
0: ये फरमाइश हमें मिली है जिला मुरादाबाद से, और उसको भेजने वाले मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल और उनका समस्त परिवार।
1: अगली फरमाइश आई है ढाणा नरसान भिवानी से जगदीश चंडालिया, राजवीर चंडालिया, सतीश चंडालिया, ऋतिक चंडालिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: अगली फरमाइश हमें मिली है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, गुरशब्द सिंह राहुल और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: रविंद्र नागर और रविंद्र नागर को सुनना चाहते हैं अनारकली वजरा जगराओ पंजाब से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, जयपाल यादव और उनका समस्त परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है गांव खोकरा वाली से विनोद बारासा, रोशनी बारासा, विशाल बारासा और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है गाजियाबाद से शीशपाल अकेला की।
1: चौधरी बास हिसार से फरमाइश आई है राजू अग्रवाल, केशव, नैन्सी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी से हमें फरमाइश भेजी है संजय जांगड़ा, राजबाला और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: अगली फरमाइश हमारे पास आई है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं रोमेंद्र नागर और विनय नागर से ये उपदेश।

0: हेमंत भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना रोमेंद्र नागर और विनय नागर से। और भाई देखिए, मौसम की अगर बात करें तो भाई देखिए, जो अधिकतर तापमान 33 डिग्री से 37 डिग्री के बीच आगे रहने की उम्मीद है, और
1: जी
0: न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री से 29 डिग्री रहने की उम्मीद जताई जा रही है।
1: जी
0: तो ऐसे में देखिए भाई, अगस्त माह चल रहा है, जिन किसान भाइयों ने ज्वार आदि चारे की जो फसल लगा रखी है वो इसकी कटाई कर लें, और भाई यदि आपका खेत खाली है और सूरजमुखी की अगर आप फसल लगाना चाहते तो भाई वो भी लगा सकते हैं। धान में उर्वरक की मात्रा अवश्य दे दें, साथ ही भाई इसी प्रकार धान, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द आदि फसलों से खरपतवार निकाल दें।
1: बिल्कुल। और इस मौसम में सुनील भाई क्या होता है, घास फूस जो है बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ती है, तो सफाई बारिश के दिनों में घास फूस की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और घास जमीन की सारी ताकत जो होती है ना, खाद और पानी खुद को सोख लेती है, जिससे हमारी मुख्य फसल कमज़ोर हो जाती है। इसलिए इस हफ्ते खेतों में निराई गुड़ाई जरूर करें और खरपतवारों को निकाल फेंके, इससे पौधों की जड़ों को हवा मिलेगी और फसल जो है तेज़ी से बढ़ेंगी।
0: और देखिए भाई, बागवानी की अगर बात करें तो जो भाई आम व अमरूद के नए बाग लगाना चाहते हैं और भाई अभी लगाए नहीं हैं, तो भाई अब इसमें देरी ना करें, और पपीते के बाग लगा रखे हैं तो भाई उनमें खाद अवश्य दे दें, वे कीट व बीमारियों का भी ध्यान रखें। सब्जियों में बात करें भाई, टमाटर, बैंगन, गोभी की पौध नर्सरी से उखाड़ कर उसकी रोपाई इस समय की जा सकती है।
1: कीड़े और बीमारियों से बचाएं, मतलब कीड़े और जो बीमारियां होती हैं इस समय ज़्यादा पनपते हैं, हवा में नमी और गर्मी की वजह से इस समय फसलों में कीड़े और बीमारियां लगने का डर सबसे ज़्यादा होता है। धान में अक्सर पत्ती लपेटक या तना छेदक कीड़ा लग जाता है। रोज सुबह खेतों में जाकर पत्तों को ध्यान से देखें, अगर पत्तों में पीले धब्बे या कीड़े दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर यानी किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह से सही दवा का छिड़काव करें। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आसमान में बादल हों या बारिश की संभावना हो तो दवा ना छिड़कें।
0: और भाई अब कल कार्यक्रम के बारे में बता दें, कल 5:10 पर आनंद ले सकेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का।
1: वहीं समय रहेगा 6:30 बजे कार्यक्रम ग्राम संसार का, चर्चा रहेगी उद्यानिकी के क्षेत्र में रोजगार की संभावना और योजना रहेगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
0: और 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी देंगे नींबू वर्गीय फलों का गिरना और प्रबंधन के उपाय, साथ ही भाई योजना बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: और भाई ये हमारा आज का कार्यक्रम था, आपको कैसा लगा, अपने सुझाव या शिकायत हमें अवश्य लिखें। इसके लिए हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली 1100001।
1: और साथ में मेल आईडी आप मेल भी कर सकते हैं, और मेल आईडी हमारी feedback@gmail.com।
0: इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय ही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिव नंदन लाल, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:35 हुए हैं। ये प्रस्तुत है जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने गज़ल सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं, अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
2: अच्छा
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सके। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। दिल्ली सरकार ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2025 को राजधानी में लागू करेगी। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई विशेष कार्रवाई में 161 दोपहिया वाहन और 10 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स से ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों CEOs के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
6: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
5: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की दूरदृष्टि, साहस और प्रतिभा को सलाम किया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान 3 की 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग की याद में मनाया जाता है जिसने भारत को विश्व के अग्रणी अंतरिक्ष यात्री देशों में शामिल कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली विद्यार्थियों के में विज्ञान प्रौद्योगिक

0: इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा और वैज्ञानिक जिज्ञासा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ संवाद को मुख्यमंत्री ने देश के युवा इनोवेटर्स के लिए एक प्रेरक आह्वान बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के बदरपुर और देवली विधानसभा क्षेत्रों में 30 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से इन क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, विशेषकर सड़कों और नालों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन और जल निकासी की समस्याएं दूर होंगी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 9 में स्थित आत्मवल्लभ हाउसिंग सोसाइटी में एरोबिन और प्लास्टिक वेस्ट ड्रॉप बॉक्स का लोकार्पण किया। एरोबिन की सहायता से एक बार में एक बिन में 10 किलो गीले कूड़े को बायोकल्चर की सहायता से कंपोस्ट खाद में बदला जा सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान नुक्कड़ नाटक की सहायता से नागरिकों को स्वच्छता के महत्व पर जागरूक भी किया गया।
1: इस अवसर पर महापौर ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण निस्तारण करने में सहायता मिलेगी। श्री वाही ने कहा, इस प्रकार की छोटी छोटी पहलों को अपनाकर हम कूड़े को लैंडफिल साइट पर जाने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता बेड़े में अनेक आधुनिक मशीनों को भी शामिल किया गया है। इससे पूरे शहर में स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने दिल्ली वासियों से भी अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने में दिल्ली नगर निगम का सहयोग करें तथा राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाने के इस अभियान में सक्रिय भागीदार बनें। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: दिल्ली सरकार ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2025 को राजधानी में लागू करेगी। इसके लिए सरकार ने राजधानी की जेलों में बंद विचाराधीन गैंगस्टरों, संगठित अपराधियों और अधिक जोखिम वाले कैदियों को जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों की जेलों में स्थानांतरित करने की योजना तैयार कर ली है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव के अंतर्गत संबंधित राज्यों की आपसी सहमति और गृह मंत्रालय की स्वीकृति से विचाराधीन गैंगस्टरों, संगठित अपराधियों तथा अन्य अधिक जोखिम वाले कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य की जेल में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इससे आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और जेलों के बेहतर प्रबंधन में भी मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार राजधानी की जेलों में दोषियों के साथ बड़ी संख्या में कठोर और कुख्यात अपराधी विचाराधीन कैदी के रूप में बंद हैं। साथ ही वर्तमान व्यवस्था में ऐसे विचाराधीन गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों को राजधानी की जेलों से दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करना संभव नहीं है। इसे संशोधित व्यवस्था को दिल्ली में लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे गंभीर और अधिक जोखिम वाले विचाराधीन कैदियों को परिस्थितियों के अनुरूप दूसरे राज्यों की जेलों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य जेल सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे कैदियों के अंतर्राज्यीय स्थानांतरण को संभव बनाना और संगठित अपराध से निपटने में राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली पुलिस ने रोहिणी जिला में 18 से 22 अगस्त तक एक विशेष कार्रवाई की है। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने कहा कि इस कार्रवाई में 161 दोपहिया वाहन, 10 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद की गई है।
3: जब हमने रॉबर स्नैचर को पकड़ा तो उनके पास से अवैध हथियार भी मिले। हमने जो है आर्म्स एक्ट में मुकदमे दिए हैं। साथ में जब हम एनडीपीएस की बात करें तो हमने कुछ लोगों को पकड़ा है जिनके पास से हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की हीरोइन जो वो लोग सेल करते थे उसको हमने बरामद किया है और एनडीपीएस के केस रजिस्टर करे हैं। करीब 10 करोड़ करीब की जो है हीरोइन बरामद की है और वो मेनस जो बने हुए थे उन लोगों को हमने गिरफ्तार करके कानून के दायरे में लेके आए हैं। साथ में इसके चोरी के मोबाइल्स भी हमने रिकवर किए हैं, तो इलिसिट लिकर भी हमने रिकवर की है, गैम्बलिंग डेन को भी बस्ट किया है और जो एक कॉल सेंटर था उसको भी बस किया, 6 लोग अरेस्ट किए हैं।
0: दिल्ली पुलिस की बाहरी जिला टीम ने देश में अवैध रूप से अवधि से अधिक समय तक रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 9 थाई, 3 बांग्लादेशी, 4 नाइजीरिया, 1 युगांडा और 1 गिनी नागरिक शामिल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट और वीजा की वैधता समाप्त हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पकड़े गए विदेशी नागरिकों के विरुद्ध विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा नियमानुसार निर्वासन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

0: अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के द्वारका जिले की टीम ने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी रुके हुए दो नाइजीरियाई नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान इन विदेशी नागरिकों के पास कोई वैध और कानूनी दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने कहा कि आगे की कानूनी कार्रवाई और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या सभा के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने बताया कि आरक्षण सुधारों के मुद्दे पर लोगों को जुटने के लिए उकसाने वाले भ्रामक वीडियो और पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में पहले से निषेधाज्ञा लागू है, जिसके अंतर्गत विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक लोगों की सभाओं पर सख्त प्रतिबंध है। पुलिस ने नागरिकों से ऐसे भ्रामक पोस्ट और वीडियो के आधार पर एकत्रित न होने तथा अपुष्ट सामग्री साझा न करने की अपील की है। साथ ही फर्जी या भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के सामने पेश करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया। नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आयोजित कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि देश भर के कलाकार महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के पारिजात हरण अंकिया नाट को प्रस्तुत करने के लिए पूरे समर्पण भाव से एकजुट हुए हैं।
1: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नित्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: रक्षाबंधन को लेकर बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुटखुर्द गांव में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शाहबाद डेयरी क्षेत्र की महिलाओं ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री तथा बवाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह को राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री इंद्राज ने कहा कि बहनों का प्रेम और विश्वास इस पावन अवसर को विशेष बनाता है और जनसेवा के प्रति हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में भाई बहन के बीच प्रेम, विश्वास और आत्मीय संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने एक पौधारोपण कार्यक्रम का नेतृत्व किया। यह कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम ऑन संडे अभियान के लगातार 38वें रविवार के अवसर पर आयोजित किया गया। अलीगंज में आयोजित कार्यक्रम में आज युवाओं, स्थानीय निवासियों, महिलाओं, बच्चों, आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधारोपण अभियान में भाग लिया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में समापन हो गया। 17 अगस्त से शुरू हुई प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स का खिताब फ्रांस के एलेक्स लेनियर और महिला सिंगल्स का खिताब दक्षिण कोरिया की अन से यंग ने अपने नाम किया। वहीं पुरुष डबल्स का खिताब चीन के लियांग वेई किंग और वांग चंग तथा महिला डबल्स दक्षिण कोरिया की बेक हा ना और ली साही की जोड़ी ने जीता। फ्रांस के थॉम गिस्कल और डेल्फिन डेलरो ने मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। भारत के लिए प्रतियोगिता में सबसे सफल प्रदर्शन त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का रहा, जिन्होंने 2011 के बाद विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स में भारत को कांस्य पदक दिलाया। राजधानी में आज सुबह तेज बारिश हुई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सके। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। दिल्ली सरकार ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2025 को राजधानी में लागू करेगी। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई विशेष कार्रवाई में 161 दोपहिया वाहन और 10 करोड़ रूपये के मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद। दिल्ली पुलिस ने देश में अवैध रूप से रह रहे 18 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संपन्न

0: हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर प्रीता पवार।
1: आकाशवाणी दिल्ली के सभी श्रोताओं को डॉक्टर प्रीता पवार का स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी के लिए कविताओं की खूबसूरत महफिल सजाई है। इस सुंदर महफिल के नाम चार पंक्तियाँ वक्त की शाख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं। ऐ जिंदगी, हम गम में भी मुस्कुराने का हुनर रखते हैं। इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएगा जमाना हमें, हम बिखर कर संवर जाने का हुनर रखते हैं। ऐसे ही नायाब हुनर रखने वाले जो कविगण आज काव्य पाठ हेतु उपस्थित हुए हैं, उनके नाम हैं डॉक्टर मनोज कैन, मनीष शर्मा जी और दीपा गुप्ता जी। सबसे पहले मैं नारी शक्ति को आवाज़ देती हूँ दो पंक्तियों से। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ी हूँ मैं, ऐ मुश्किलों देखो तुमसे कितनी बड़ी हूँ मैं। दीपा गुप्ता जी जो कि शोधार्थी हैं, हिंदी साहित्य में लिखती हैं, जनजीवन की कविताएं लिखती हैं। दीपा गुप्ता जी आपका स्वागत है, अपनी प्रस्तुति दें।
2: लाख व्यस्तताएं हो जीवन में, लाख व्यस्तताएं हो जीवन में, बातचीत चलती रहे साथ साथ।
1: बहुत खूब।
2: अभर निराशाएं भले घेरे हों, निराशाएं भले घेरे हों, जहन में आशाएं पलती रहें साथ साथ। कोई राह कभी रुकने न पाए, कोई राह कभी रुकने न पाए, हौसला कभी झुकने न पाए, कदम सहस्रों चलना पड़े भले, मंजिल मिलती रहे साथ साथ।
1: बहुत
2: बहुत
1: बढ़िया।
2: कड़ी धूप में चलना पड़े चाहे, कितनी आंधियों से लड़ना पड़े, बादल चाहे गरजते हों गड़गड़, बूंदे भी बरसती रहें साथ साथ। शीतलहर हाड़ कप कप आती हो, या तपित वायु देह झुलसाती हो, हर कठिनाई का सामना करेंगे, बस ऋतुएं बदलती रहें साथ साथ, बस ऋतुएं बदलती रहें साथ
1: साथ
2: साथ।
1: साथ साथ साथ बहुत बढ़िया।
2: बहुत धन्यवाद। एक छोटी बहर की गजल मैं रखती हूँ।
1: स्वागत।
2: एक एक गजल जैसे कमल, एक एक गजल जैसे कमल, खिलते हैं लब आँखें सजल, बदली है रुत तू भी बदल, मत लड़खड़ा मत लड़खड़ा, थोड़ा संभल, पाना मुका निश्चय अटल, तू बन खरा मत कर नकल, पथ में कभी मत बन खलल, खिलने दे गुल यूं मत मसल, खिलने दे गुल यूं मत मसल, बातों में यूं मत दे दखल, और झूठों से तू अब मत पिघल, सर खा लिया चल अब निकल।
1: बहुत बढ़िया,
2: शुक्रिया।
1: बहुत बढ़िया।
2: एक और गजल मैं पढ़ती हूँ। उस

0: एक कविता मैं सुनाना चाहूंगी। परिधान
1: स्वागत।
0: पश्चिमी पहने तो क्या, परिधान पश्चिमी पहने तो क्या, गहने हुए न दारद तो क्या, परिधान पश्चिमी पहने तो क्या, हुए न दारद गहने तो क्या, परिधान पश्चिमी पहने तो क्या, हुए न दारद गहने तो क्या, बड़ों के आशीष को माथे पर बिंदिया सा सजाती हूँ मैं, बड़ों के आशीष को माथे पर बिंदिया सा सजाती हूँ
1: बहुत
0: मैं,
1: बढ़िया।
0: शुक्रिया, छोटों पर प्रेम की खनक को कंगन सा बजाती हूँ मैं, छोटों पर प्रेम की खनक को कंगन सा बजाती हूँ मैं, सहनशीलता का घूंघट ओढ़, सहनशीलता का घूंघट ओढ़, आंगन में खुशियों की झांझर छनकाती हूँ मैं, आंगन में खुशियों की झांझर छनकाती हूँ मैं, करुणा दया ममता की मूरत यूं ही नहीं कहलाती हूँ मैं, करुणा दया ममता की मूरत यूं ही नहीं कहलाती हूँ मैं, कितनी पीड़ा कितने घाव हंसकर सह जाती हूँ मैं, कितनी पीड़ा कितने घाव हंसकर सह जाती हूँ मैं, यूं ही नहीं नारी कहलाती हूँ मैं,
1: क्या बात,
0: यूं ही
1: क्या बात,
0: नहीं
1: बहुत बढ़िया,
0: नारी
1: बहुत बढ़िया,
0: कहलाती हूँ
1: बहुत
0: मैं।
1: बढ़िया।
0: सौंदर्य क्या है, सौंदर्य क्या है, सभी का अपना नजरिया अपनी दृष्टि है, सभी का अपना नजरिया अपनी दृष्टि है, मेरी नजर में शिशुओं की मोहक मुस्कान है सौंदर्य, मेरी नजर में शिशुओं की मोहक मुस्कान है सौंदर्य, बुजुर्गों के चेहरे की झुर्रियां है सौंदर्य, प्रकृति है सौंदर्य, ईश्वर है सौंदर्य, मेहनत की सूखी रोटी में है सौंदर्य,
1: बहुत खूब,
0: धन्यवाद, मजदूर के पसीने से बने महलों में है सौंदर्य, मजदूर के पसीने से बने महलों में है सौंदर्य, प्रतिदिन सींच सींच कर बड़े होते पौधों के नवांकुर है सौंदर्य, धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर,
0: बहुत
1: बहुत
0: सुंदर,
1: सुंदर।
0: जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। दो पंक्तियां याद आ गई मुझे आपकी कविताएं सुनकर। जीवन सागर में पावन बड़ वानल की ज्वाला सी, यह सारा कलुष जलाकर तुम जली अनल बाला सी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मनीष शर्मा जी हैं, मूलतः पत्रकार हैं, लेखक हैं, हिंदी साहित्य से इनका लगाव है, रुचि है, जुड़ाव है। चार पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ क्योंकि आप पत्रकार
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: समाज से राबता रखते हैं। मशालें ये जो हम तुम जलाए हुए हैं, अंधेरे बहुत तिल मिलाए हुए हैं, इन्हें खल रही है ये हिम्मत हमारी, ये लोग क्यों परचम उठाए हुए हैं। तो मनीष शर्मा जी, स्वागत आपका।
1: धन्यवाद प्रीता जी। दीपा जी ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। उनका अपना नज़रिया है चीज़ों के प्रति और मेरा अपना नज़रिया चीज़ों के लिए है। मैं कुदरत को जिस नज़र से देखता हूँ, ये पहली कविता कुदरत को समर्पित है।
0: स्वागत।
1: धरती से मिलती है गन्ने को मिठास, मिर्च को तीखापन, फूल को मिलते हैं रंग, अंगूर को मिलता है रस, जिसका गुण जैसा होता है

0: कुदरत उसे दोगुना कर देती
1: क्या
0: है।
1: बात
2: बहुत
1: है, बहुत खूब।
0: ये एक समझ है कि कुदरत जो है किस तरह काम करती है, जो बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा, ये कहा जाता है। कुदरत का एक और गुण मेरी नज़र में जो है वो मैं अपनी कविताओं के जरिए पेश कर रहा हूँ। सीधा कुछ नहीं होता, हम मानते हैं कि परफेक्शन की तलाश रहती है, इसी तरह परफेक्ट कुछ नहीं होता, तो सीधा कुछ नहीं होता। आड़ी तिरछी रेखाएं चित्र बना देती हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं चित्र बना देती हैं गर सोच हो पीछे। आधे अधूरे शब्द देते हैं पूरा अर्थ अगर दर्द भरा उनमें। दिलचस्प है कुदरत में कुछ पूरा नहीं होता, कुछ सीधा नहीं होता। पहाड़ हों नदियां हों अथाह हैं पर पूरे नहीं हैं।
2: बहुत बढ़िया, बहुत
1: बहुत
2: बढ़िया।
1: सुंदर।
0: पहाड़ हों या नदियां अथाह हैं पर पूरे नहीं हैं, वो बदलते हैं हर पल। जिंदगी में फिर क्यों होती है हमें पूरा होने की चाह, जो हमें और अधूरा बना देती है, जो हमें और अधूरा बना देती है। क्यों चलें सीधा साधा जब कुदरत कहती है सीधा कुछ नहीं होता, सीधा कुछ नहीं होता।
2: अच्छा है, बहुत अच्छा।
0: एक और दर्द से निकली एक कविता है कि जिस तरह दर्द हर तरफ फैला हुआ है, दर्दे जहां आप कह सकते हैं, तो कविता का शीर्षक है सुबह से सुबह की बात कर।
1: क्या बात है, स्वागत।
0: देखते देखते हवाएं आंधियों में बदल गई, देखते देखते हवाएं आंधियों में बदल गई, शाम खुशनुमा जैसे रंग बदल गई।
1: बहुत सुंदर।
0: शाम खुशनुमा जैसे रंग बदल गई, धूल चढ़ते चढ़ते जैसे सिर ही चढ़ गई, और चंदी पलों में दुनिया बदल गई।
2: दुनिया बदल
1: बहुत
2: गई,
1: खूब।
0: चंदी पलों में दुनिया बदल गई। टूटते हैं तारे पर कैसे दिखाई दें, टूटते हैं तारे पर कैसे दिखाई दें, आंखें खुली घर तो अपने जख्म दिखाई दें, आंखें खुली घर तो अपने जख्म दिखाई दें। दिल यहां भरा है हर किसी का आज, दिल यहां भरा है हर किसी का आज, बंद आंखों से ही पर उम्मीद की बात कर,
2: उम्मीद की बात।
0: बंद
2: बहुत
0: आंखों से
2: सुंदर,
0: ही सही पर उम्मीद
2: उम्मीद
0: की
2: की
0: बात
2: बात
0: कर।
2: कर, बहुत बढ़िया। आह
0: हमने तो बस परिंदा
1: क्या
0: होना
1: बात है,
0: चाहा, मौसम हाल ने पर तमाम किए, अब पिंजरों में बैठकर ताका करते हैं हम, अब पिंजरों में बैठकर
2: ताका
0: ताका
2: करते
0: करते
2: हैं।
0: हैं हम। ए खुदा मस्त हवाएं फिर बहाल कर, ए खुदा मस्त हवाएं फिर बहाल कर।
1: बहुत सुंदर।
0: लगता है जैसे रात बस आने को है, लगता है जैसे रात बस आने को है, न जाने लौए उम्मीद कब तक झिलमिलाएगी, न जाने लौए उम्मीद कब तक झिलमिलाएगी। ए दोस्त मालूम है रात लंबी होगी अभी, ए दोस्त मालूम है रात लंबी होगी अभी, चल बैठ सुबह तक सुबह की बात कर,
1: वाह
0: चल
1: क्या
0: बैठ
1: बात है, क्या बात है,
0: सुबह तक
1: सुबह तक
0: सुबह की
1: सुबह
0: बात
1: की
0: कर।
1: बात कर, बहुत खूब।
0: घर घर में धूल पसर गई
1: पसर
0: पसरेगी
1: गई।
0: अभी, बस दुआ कर कि दिलों तक ना पहुंचे कभी, बस दुआ कर कि दिलों तक ना पहुंचे कभी। गर्द है गर्दिश भी होगी तय है, गर्द है गर्दिश भी होगी तय है, चल कोई नहीं सबके दर्द की बात कर,
1: आहा,
0: चल
1: सबके
0: कोई
2: दर्द की
0: नहीं
2: बात, क्या
0: सबके
2: बात है,
0: दर्द की बात
2: क्या
0: कर।
2: बहुत बढ़िया।
0: आंखों में आंसू दिल में जलन, आंखों में आंसू दिल में जलन, दम घुट रहा है पल पल छिन छिन। ये जो है माहौल वो सबका है आज, ये जो है माहौल वो सबका है आज, चल गले मिलकर सबसे सबकी बात कर,
1: बहुत
0: चल गले
2: सुंदर,
0: मिलके सबसे
2: सबके
0: सबकी
2: सबकी
0: बात
2: बात,
0: कर।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: एक छोटी सी कविता और मैं कहना चाहता हूँ, शीर्षक
1: स्वागत।
0: है मैं। हर कोई जो है एक दौड़ में है, हर कोई अपने को तलाश रहा है, लेकिन उन सबके बीच में जब अंदर झांकते हैं तो क्या नजर आता है, वो इस कविता का सार है। गहन अंधकार की चादर सा फैला, गहन अंधकार की चादर सा फैला, रेत के विशाल मैदान सा मैला। मैं
1: क्या
0: जीवन
1: बात है,
0: के अपठित छंद को पढ़े जा रहा, जीवन के अपठित छंद को पढ़े जा रहा, अकेली अनजानी बिहड़ राहों पर बढ़े जा रहा, नहीं जानता कहाँ है छोर कब होगी भोर, अंधेरी दुर्गम राहों पर ज्यों हाथ ढूंढता साथ ढूंढता, आगे बढ़ने की नई राह ढूंढता, समय चक्र के पहिए के नीचे पिसा जा रहा पिसा जा रहा।
1: क्या बात है,
2: बहुत बढ़िया।
0: बिखरता कण कण, बिखरता कण कण रेत का दल, काली होती अंधेरी चादर, शायद यही हूं मैं, शायद यही हूं मैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका। दो पंक्तियां याद आ गईं। उदास शाम किसी ख्वाब में ढली तो है, उदास शाम किसी ख्वाब में ढली तो है, यही बहुत है कि ताजा हवा चली तो
0: चली चली
1: है,
0: तो है
1: ताजा
0: जी।
1: हवा। बहुत सुंदर। और

0: कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और
1: और
0: बढ़ती
1: बढ़ती
0: है।
1: है।
0: बुझाने को हवा के साथ अगर बारिशें भी आ जाएं, बुझाने को हवा के साथ अगर बारिशें भी आ जाएं, चरागे बेहकीकत की हकीकत और बढ़ती है। मनोज जी, आपका स्वागत है। आप
1: धन्यवाद
0: अपनी
1: मैम।
0: प्रस्तुति दें, रचनाओं को पढ़ें।
1: मैं इस काव्य गोष्ठी में सर्वप्रथम अपनी माँ को समर्पित करते हुए कविता पढ़ूंगा।
0: स्वागत
1: मेरी
0: है आपका।
1: स्वर्गीय माँ, और मुझे लगता है कि माँ से बड़ा कोई संबंध नहीं है। माँ तुम चली गई कहाँ, माँ तुम चली गई कहाँ, माँ तुम चली गई कहाँ, माँ तुम स्वप्न में आ जाया करो, माँ तुम स्वप्न में आ जाया करो, रोज नहीं, रोज नहीं तो कभी कभी, रोज नहीं तो कभी कभी अपने इस बेटे के पास आ जाया करो। जो मार्ग आपने दिखाया था उससे अलग हो गए हैं तो समझाया करो, डांट लगाया करो, समझाया करो, डांट लगाया करो, पर माँ सपनों में आ जाया करो।
0: क्या बात, क्या बात।
1: अपने खून पसीने से बनाया था जो उपवन, उस उपवन की फुलवारी के फूलों को तो दुलार जाया करो, माँ सपनों में आ जाया
0: क्या
1: करो,
0: क्या बात,
1: बहुत बढ़िया। माँ तुम सपन में आ जाया करो। सुंदर लुभावनी छवि, वात्सल्य मुस्कान, ममत्व आंखें, उदार हाथ, दो मीठे बोल बोल जाया करो, माँ तुम सपन में आ जाया करो। आओगी तो मैं रुकने के लिए जिद नहीं करूँगा, आओगी तो मैं रुकने के लिए जिद नहीं करूँगा, जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। अपनी मातृत्व वृष्टि कर जाया करो, माँ तुम स्वप्न में आ जाया करो, माँ तुम स्वप्न
0: सपन में
1: में
0: आ
1: आ
0: जाया
1: जाया
0: करो
1: करो।
0: जी, बहुत बढ़िया।
1: मेरी वो दूसरी कविता है, अब लौट जाओ उनके पास। ये उनके लिए है जो गांव छोड़ छोड़ के शहरों में आ गए और गांव खाली हो गए और अपने बुजुर्गों का ध्यान न रख करके शहरों की तरफ आ रहे हैं। जहां थे कभी खेत खलियान, वहां बना दिए मकान पर मकान, इस नए शहर में इंसान कम मकान ज्यादा हैं। जो भी गांव जाता है, जो भी गांव जाता है, दो चार साथ लिए आता है। जो गांव तुमने कर दिए वीरान, वही थे कभी तुम्हारी पहचान, वही थे कभी तुम्हारी पहचान, उन्हीं में करती है तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा वास। तुम शहर आ गए, तुम शहर आ गए, शर्मिंदा है। शहर में करते हो उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ, पलायन करते वक्त तुम्हें नहीं रही उनकी कोई भी बात याद, पलायन करते वक्त तुम्हें नहीं रही उनकी कोई भी बात याद। हमें छोड़कर मत जाना, हमें छोड़कर मत जाना, अगर जाओ तो ले जाना अपने साथ, तो ले जाना अपने साथ, जिसके लिए शहर आए थे, जिसके लिए शहर आए थे वह हो गए संपूर्ण काज, तो अब लौट जाओ वापस उनके पास। कितने वर्षों से तुम्हारे बिना है वह मलिन और उदास, मलिन और उदास, तुम आए हो उनसे दो कदम दूर, तुम आए हो उनसे दो कदम दूर, तुम्हारी संतान होगी तुमसे चार कदम कोसों दूर, जैसे पेड़ लगाओगे वैसे ही फल
0: वैसे फल
1: खाओगे।
0: खाओगे।
1: मत करो शहर में निर्माण, गांव में भी है तुम्हारे अपने और अपना मकान, मिलेगा सुख शांति स्वास्थ्य का जीवन दान, मिलेगा सुख शांति और स्वास्थ्य का जीवन दान, अब लौट जाओ उन्हीं के पास।
0: बहुत सुंदर,
1: बहुत सुंदर,
0: बहुत
1: बहुत सुंदर।
0: सुंदर।
1: एक कविता वीर पे पढ़ूंगा, वीर का असली धर्म क्या होता है। वीर निकाल तुनीर से बाण, वीर
0: बहुत
1: निकाल
0: सुंदर।
1: तुनीर से बाण, रख धनुष पर कर अनुसंधान, शत्रु जब खड़ा हो समक्ष फिर क्यों भ्रमित होता है, वीर तू क्यों अभी तक सोता है, वीर तू क्यों अभी तक सोता है, क्यों किसी के दुख में दुखी होता है, दुख में ही सुख की परिणति है, फिर क्यों मारी गई तेरी मति है, सुख दुख में
0: वीर
1: वीर
0: की
1: की
0: सत्य।
1: एक सी गति है, इससे तुझे ना कोई फर्क पड़ता है, वीर केवल युद्ध करता है।

0: युद्ध करता है।
1: बहुत बहुत
0: वह निर्णय की कहां परवाह करता है, रणभूमि में जब कदम धरता है मारता है या मरकर वीर गति को प्राप्त करता है। वह अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता है, वह अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता है, वीरता ही वीर का आभूषण होता है, वीरता ही वीर का आभूषण होता है। वीर आलंबन नहीं खोजता है, वीर आलंबन नहीं खोजता है, अपने बल पर जीता है, अपने बल पर ही मरता है।
1: बहुत सुंदर,
0: अपने बल पर ही जीता है, अपने बल पर ही मरता है, परमार्थ हेतु हो जाए जो नुछावर, परमार्थ हेतु हो जाए जो नुछावर, वही सही अर्थों में वीर होता है, वही सही अर्थों में वीर होता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका, और बड़ा मार्मिक माँ और संतान का संबंध आपने जो अपनी पहली कविता में दिया, और दूसरा आपने समसामयिक एक गंभीर समस्या पलायन की गांवों से शहर की ओर, जिससे हमारा सारा सामाजिक ढांचा छिन्न भिन्न हो रहा है, और तीसरी आपने ओज की कविता सुनाई, बहुत सुंदर। दो एक पंक्ति याद आ गई आपकी कविताओं को सुनकर, कि अपने शब्दों में सहज भाव रखते हैं, कलम की नोक से घाव भरते हैं। तो बहुत खूब।
0: मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा काव्य पाठ के लिए डॉक्टर प्रीता पवार जी को, जो इस काव्य गोष्ठी का इतना सुंदर संचालन कर रही हैं। आप एक शिक्षाविद हैं, आप साहित्यकार हैं और आप समाज सेविका हैं। आप निरंतर सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने लेखन कार्य से समाज को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। आप पूर्ण अधिकार के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखती हैं और निरंतर आप अपने रचनाक्रम से समाज को समृद्ध कर रही हैं, और ऐसी आदरणीय डॉक्टर प्रीता पवार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मेरी कविता भी प्रकृति से जुड़ी है, और हम स्वयं प्रकृति के हिस्से हैं, और जितना हम प्रकृति से दूर होते जाएंगे उतना ही हमारा जीवन कलुषित होगा, दूषित होगा और जटिल भी होगा, और यही हमारी आज आधुनिक जीवन की त्रासदी भी यही है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, और न केवल दूर होते जा रहे हैं बल्कि प्रकृति का हम विनाश करते जा रहे हैं। तो उसी पर मेरी कविता है, दोषी कौन।
0: दोषी कौन, बहुत स्वागत है जी।
1: सर्वस्व पिघलते दृश्य, धरती के हिमाच्छादित दोनों ध्रुव, विशाल हिमनद, ऊष्मा की तपन, गर्म गैसों का विसर्जन, उत्तुंग चोटियां, पर्वतों की बर्फीली, नितांत बर्फीली, पिघलती रही, पिघल रही, अथाह जलपुंज बन रही, सागरों में सागर ढल रहे, उफन रहे, उबल रहे, कैसी कैसी गर्जनाएं कर रहे, धरती को निगल रहे, धरती भी तो गल रही, कण कण पिघल रही, धरती निर्वासित सी, एकाकी व्यथित सी, उसकी कोख से निकले रक्त बीज कैसे कैसे,
0: रक्त बीज कैसे,
1: उसकी कोख से निकले रक्त बीज कैसे कैसे, कहलाए मानव सहस्र सहस्र मानव, पाषाण युग से चलकर परमाणु युग तक, पाषाण युग से चलकर परमाणु युग तक, प्रगति की गाथाएं पार की बाधाएं, विजय का खुमार अंबर पार, विजय का खुमार अंबर पार, किंतु अब क्या, किंतु
0: अब क्या,
1: अब क्या, अब सब पिघल रहा, धरती सिकुड़ रही, जल बढ़ रहा, अकाल मृत्यु से वृक्ष मर रहे, सूर्य दहक रहा, धरती धधक रही, धरती का कवच ओजोन चादर हो रही छीण सी और छिद्रिल भी, मानव की प्रगति बनी घोर विपत्ति, मरघट से वन अंगारे से चंदन, सर्वत्र प्रदूषण, स्वासों में धुआं, कांपती कोपलें मृत्यु के भय से, वो देख रही साम्राज्य धुओं के, विषाक्त काले बादलों के, रासायनिक वर्षाओं के, परमाणु बमों के, कान भेदी धमाकों के, जल नहीं, छाया नहीं, नदी नहीं, झरना नहीं, शुष्कता चहुं ओर, काल का शोर।
2: काल का शोर,
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
1: शुष्कता चहूं और काल का शोर, भविष्य नहीं जीवन नहीं, दोषी कौन,
2: दोषी
1: कौन, तू भी मैं भी,
0: तू भी मैं भी,
1: किंतु वो कोपल नहीं कदापि नहीं, जिसने जीवन जिया ही नहीं, जिसने जीवन
0: जिया ही नहीं। अति सुंदर
1: एक कविता ये है, और एक जिंदगी के ऊपर है। हम लोग जिस मोड़ पर, आप नहीं हम, मैं शायद थोड़ा सा आप, थोड़ा सा आप, हम लोग जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़े हैं उस पर एक छोटी सी नज्म है। आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं,
0: आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं,
1: पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं।
0: अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं, पन्ना पन्ना सारी किताब देख रहे हैं, कहाँ संवरे कहाँ बिखरे, मुड़कर सारे मकाम देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं।
0: बहुत सुंदर।
1: हुई कितनी गुस्ताखियाँ नादानियाँ, हुई कितनी गुस्ताखियाँ नादानियाँ, दिल में उठता कोहराम देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। दिल के छाले मिले बे इंतिहा, दिल के छाले मिले बे इंतिहा, सहलाने वालों के हम नाम देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। जो बिछड़ गए अपने दौरे सफर में, जो बिछड़ गए अपने दौरे सफर में, उनकी यादों का सैलाब देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। मौसम कब कहाँ एक सा रहा
2: जी,
1: मौसम कब कहाँ एक सा रहा, आती जाती धूप छांव देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। उम्र है कि बढ़ती ही जा रही है, उम्र है कि बढ़ती ही जा रही है, रोज सरकते सुबह शाम देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। दुश्मनी तो हमसे कर बैठे हो खूब, दुश्मनी तो हमसे कर बैठे हो खूब, तुम्हारे अंदाज में तुम्ही को जनाब देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: रेशे रेशे पंखों के बिखरे बिखरे, रेशे रेशे पंखों के बिखरे बिखरे, उड़ने का फिर भी हम ख्वाब देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। स्याह काली इस रात की सरहदों के पार, स्याह काली इस रात की सरहदों के पार, उग रहा वो सुर्ख आफताब देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। और देखिएगा ये हम सबकी कहानी है। उम्र सारी लगा दी नौनिहालों को पालने में, उम्र सारी लगा दी नौनिहालों को पालने में, अब उनका इंतजाम देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। दर बदर यहाँ वहाँ खूब भटका किए, बाद भटकन का अब हम आराम देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। अंतिम दो पंक्तियां, मंजिल पर पहुंच ही गए चलते चलते, छलनी हुए अब अपने पांव देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। दुखों में साथ खूब रहा ऊपर वाले का, ये जिंदगी का दर्शन है। दुखों में साथ खूब रहा ऊपर वाले का, प्रभु श्री राम की नेमतें नायाब देख रहे हैं, आज जिंदगी का हिसाब देख रहे हैं। धन्यवाद।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
1: और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता आपकी,
1: रचनाओं को।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: और इस प्रकार हमारा आज का काव्य पाठ सुचारू रूप से संपन्न हुआ, और मैं डॉक्टर मनोज कैन, डॉक्टर मनीष शर्मा जी और दीपा गुप्ता जी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हमारे श्रोताओं को सुनने को मिली, तो निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को ये कविताएं पसंद आई होंगी। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की इतिश्री करते हैं। आप सभी का दिल से आभार, शुक्रिया, पुनः धन्यवाद, नमस्कार।
3: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। इस गोष्ठी का संचालन कर रही थी वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर प्रीता पवार। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग था वंदना का, और प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।

बताओ, अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। रात्रि के 8:30 हुए हैं और अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अपने सभी श्रोताओं का मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म सदमा से और जिसे आवाज से सजाया है सुरेश वाडकर ने।

दोस्तों, फिल्म संगीत की यही खासियत होती है कि ये सीधे दिल से दिल तक दस्तक देती है। कुछ यादें हमें बचपन में ले जाती है, तो कुछ हमें ऐसे किसी अपने की याद दिलाती है जो कहीं ना कहीं हमारे दिल के तारों को छूता होगा या महसूस करता होगा, और हमारी यादों के उस कोने में होगा जो कहीं ना कहीं हमें एक खूबसूरत एहसास और एक खूबसूरत प्यार का, जो कहते हैं ना उसको, एक प्यार की तरंग जो है हमारे शरीर में वाइब्रेट करती है, कुछ इस तरीके का एहसास जगाता है। ये संगीत की बात होती है। तो यही इसी प्रकार का प्यारा सा गीत अभी आपने सुरेश वाडेकर की आवाज़ में सुना था फिल्म सदमा से, और अब सुनते हैं अगला गीत मुकेश की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं फिल्म म्यूजिक कार्यक्रम। दोस्तों, सिनेमा सिर्फ एक कहानी और किरदारों का नाम नहीं है। किसी फिल्म का संगीत उस कहानी को आगे बढ़ाता है, कभी प्यार की कहानी कहता है तो कभी जुदाई का दर्द। तो सिनेमा में जो संगीत है वो एहसास कराता है तमाम तरह के उन पहलुओं को जो जीवन के आपके किसी ना किसी तार को छेड़ता जरूर है। और इसी को बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत उदित नारायण की आवाज़ में, फिल्म जो जीता वही सिकंदर से।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 800

0: 19 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस के इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा

0: जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरएसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
2: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देशभर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
3: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
4: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में

0: लागू करने के लिए सहयोग करें।
1: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को

0: जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Visakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohun Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on the National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures.
2: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
1: During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: अपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई, कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
1: During the interaction, Chief Executive Officer of India's first space tech unicorn, Skyroot Aerospace, Pavan Kumar Chandana, thanked Mr. Modi for opening up the space sector. He said on the 18th of last month, they successfully launched India's first privately developed rocket. Meanwhile, the National Space Day has been observed today. The country celebrates the day on 23rd of August every year to mark historic soft landing of Chandrayaan 3 near the moon's south pole, making India the first nation to reach the lunar south polar region. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi extended their greetings on the occasion. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, India's remarkable achievements in space exploration stand as a testament to the country's scientific excellence, spirit of innovation and determination to push the frontiers of knowledge. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi, while sharing a video on social media, said that in the new global order, India is continuously expanding its space sector.
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: On National Space Day, Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh said the historic soft landing of Chandrayaan 3 placed India among the world's leading space-faring nations and lauded the remarkable contribution of the Indian scientists. Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for five expansion projects of the garden-reach shipbuilders

0: Dana Abadi as film Saman Bhadwast.
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा तुम चोर हो चोर हो चोर हो।
2: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा? बोलो क्या चुराया है?
3: मेरा दिल।
2: क्या?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को $45 अरब की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

0: अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यह यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक आने के साथ ही संपन्न हो गई। तीर्थयात्रियों ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात कर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की है। भारतीय उच्चायोग ने कल बताया कि इस बैठक के बाद तेल और गैस सहयोग पर सरकार से सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन और इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड तथा मॉरिशस के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के बीच एक समझौते का आदान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गदेरी नदी के तेज बहाव में फंसे 9 लोगों को पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया है। 22 अगस्त को भारी बारिश के कारण गुफाओं वाले इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इसके बाद राज्य आपदा मोचन बल के जवान तेज बहाव के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बचाव के बाद उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और सुरक्षित पाए जाने पर उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा किनाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट के मुख्य ग्रुप चरण में प्रवेश कर लिया है। अब ईस्ट बंगाल की पुरुष और महिला दोनों टीमें एक ही सीजन में एएफसी ग्रुप स्टेज में हिस्सा ले रही हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: मिस्टर मोदी स्टेटेड दिस ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद सीईओज एंड फाउंडर्स ऑफ 20 स्पेस स्टार्टअप्स रिसेंटली। According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's most competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Defence Minister Rajnath Singh has stressed the need for self-reliance in building warships, offshore vessels and related maritime sectors, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSE and Yantra India Limited worth approximately 3400 crore rupees in Kolkata. The defense minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high quality maintenance services and timely delivery of defense products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research ICMR has clarified that no new strain of H1N1 commonly known as swine flu has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। और दोस्तों ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें हम उस जमाने के गीत आपको सुनाते हैं जो बहुत ही सुनहरा दौर था संगीत की दुनिया का। उस वक्त के जो गीत थे वो इतने प्यारे होते थे जो दिल में उतर जाते थे, और उन्हें हम बिल्कुल ऐसे महसूस कर सकते थे जैसे वो हमारे दिल की बात हो। ऐसा ही एक बहुत ही पुराना और प्यारा सा गीत हम लेकर आए हैं। फिल्म का नाम है ग्राम कन्या और इसमें आवाज़ दी है सुरेंद्र एलियाराम शर्मा जी ने। सुरेंद्र एलियाराम शर्मा जी।

दोस्तों पुराने गानों का ये जो संग्रह है आकाशवाणी के पास है, ये सच में किसी खजाने से कम नहीं है। और अब वो आवाज़ हम आपको सुनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा हमारे पुराने संगीत प्रेमी इस बात से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, उस नाम से KL सहगल साहब। उनकी फिल्म जो आई थी 1939 में, फिल्म का नाम है दुश्मन।

1943 में, यानी 1943 में, और फिल्म का नाम है हॉस्पिटल और इसको आवाज़ दी है कानन देवी जी ने। आइए सुनते हैं इतने सालों पुराना ये प्यारा सा गीत।

और लीजिए प्रस्तुत है केएल सहगल साहब की आवाज़ में ही एक और गीत जिस की फिल्म आई थी 1943 में, यानी 1943 में। फिल्म का नाम है तानसेन।

और दोस्तों आइए अब सुनते हैं फिल्म दास्तान से ये गाना, जिसे आवाज़ दी सुरैया जी ने और रफ़ी साहब ने। और ये भी बहुत ही पुरानी फिल्म है, 1950 के दशक में आई थी। और पुराने गीतों को सुनने के बाद, उनको एहसास करने के बाद ये पता चलता है दोस्तों कि प्यार की सूरत तब भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है और हमेशा वैसी ही रहेगी। लेकिन ज़रूरत बस इतनी सी है कि प्यार सच्चा होना चाहिए।

दोस्तों, दिल को बहलाने के लिए ही हम लेकर आते हैं आपके लिए 24 घंटे ऐसे कार्यक्रम जिन्हें सुनकर आपका दिल हमेशा ऐसी यादों के साथ जुड़ा रहे, जो आपके अपने वो सारे गम भुला दे, वो सारी परेशानियां भुला दे जिन्हें आप कहीं ना कहीं याद करते हैं। बस आप सुनते रहिए हमारे साथ और यूं ही जुड़े रहिए।

और अगला गाना जो हम आपके पास भेज रहे हैं उसके लिए बस एक शेर कहना चाहेंगे, जाने उस शख्स को कैसे ये हुनर आता है, जाने उस शख्स को कैसे ये हुनर आता है, रात होती है तो आँखों में उतर आता है।

दोस्तों, लता मंगेशकर जी की प्यारी सी आवाज़ के बाद आइए सुनते हैं राजकुमारी जी को। फिल्म है बावरे नैन और ये फिल्म आई थी 1950 में।

और दोस्तों, अब जो गाना हम आपको सुनाने वाले हैं वो फिल्म, उस फिल्म का नाम है बंदिश। ये फिल्म आई थी 1955 में, और दोस्तों ये आवाज़ 1955 से पहले भी हमारे साथ थी और उसके कई सालों बाद तक हमारे साथ थी, और वही खूबसूरत आवाज़ यानी रफ़ी साहब की आवाज़ आप तक आ रही है।

दोस्तों रफ़ी साहब ने हर गाने में, हर किरदार में, हर उसमें सांस फूंक दी, उसमें जान फूंक दी। सच में रफ़ी साहब का कोई तोड़ न कभी हुआ था, न कभी होगा, नहीं रहती दुनिया तक, रहती दुनिया तक रफ़ी साहब का कोई भी एक उनकी तस्वीर भी नहीं बन सकता। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक प्यारी सी आवाज़ आप तक आने वाली है, और उस आवाज़ को आप तक पहुंचाने से पहले एक प्यारा सा शेर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। मेरी दुआओं की कबूलियत का यकीन तो देखो, मेरी दुआओं की कबूलियत का यकीन तो देखो, हाथ उठाए नहीं और वो सामने आ गए।

रात भर जागती हूँ सांस में, ख्वाब में ही सही साजन मिले इस प्यास में। रात भर जागती हूँ सांस में, ख्वाब में ही सही साजन मिले पास में।

प्यार हुआ, इकरार हुआ, दिल को किसी का इंतज़ार हुआ, नज़रें मिली हैं जब से उनसे, ये दिल उन्हीं पर निसार हुआ।

0: पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम गीत सुनहरे अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें। तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। सांची के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इसकी इमारत को नया और आधुनिक रूप दिया गया है। सब पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आधार और पार्सल जैसी सेवाएं मिलेंगी। लोग डाक और वित्तीय सेवाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकेंगे।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीट शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क नहीं देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसारक के अनुसार यह कदम हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अमरीका का नया इलाका दिखाया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। महिला हॉकी विश्वकप में नीदरलैंड के एम्स्टलवीन में कल रात खेले गए दूसरे राउंड के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस नतीजे के बाद ज्यादा गोल करने के नियम के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Indian Council of Medical Research has clarified that no new strain of H1N1 commonly known as swine flu has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow on a 2-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The 2-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a 4-day visit to Japan from today till the 27th of this month, travelling to Tokyo, Nagoya and Osaka, leading India's largest ever business delegation to Japan. The delegation comprises more than 200 business representatives. The Commerce and Industry Ministry said that the visit reflects the scale of ambition both

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे गीत बहार, फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, रात्रि के 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। यह दिवस हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश के सांची सब पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है। सांची की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए इसकी इमारत को नया और आधुनिक रूप दिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मुसुनुरु में भारत का पहला गैर अनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाला पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज जारी करेंगे। साथ ही किसानों को सम्मानित करेंगे तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को भी संबोधित करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन जनजातीय

0: भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के रोड मैप को आगे बढ़ाता है, जिसके अंतर्गत भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी समुदाय पीछे न छूटे समावेशी राष्ट्रीय विकास के प्रमुख स्तंभ हैं। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उड़के करेंगे। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस फीस में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। सरकारी प्रसार के अनुसार यह कदम हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद उठाया गया है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस अहम जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने कल कोटा के नाबालू में एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के ग्रुप ए के आखिरी शुरुआती दौर के मैच में मलेशिया के सबा फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day yesterday, PM Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. The National Skill Development Corporation, NSDC, and Cultus Education have announced the launch of a nationwide cloud and artificial intelligence skilling initiative in collaboration with Amazon Web Services. The program aims to provide foundational AI and cloud literacy to 1,50,000 learners through AWS digital training content and to offer intensive job-ready training to 10,000 participants through the AWS Restart program, focusing on youth in Tier 2 and Tier 3 cities. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reached Moscow on a two-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a four-day visit to Japan from today till the 27th of this month, traveling to Tokyo, Nagoya and Osaka, leading India's largest ever business delegation to Japan. The delegation comprises more than

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन लेकर आया हूँ गजल गीत कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे आज बेहद प्यारी और कुछ चुनिंदा गीत, बेहद प्यारी गजलों के साथ कुछ चुनिंदा गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बाजार की इस प्यारी सी गजल के साथ, जिसमें स्वर लता मंगेशकर का है।

कौन है जो एक साये की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से, एक आवाज, एक नगमा, एक गीत बनकर रख रख में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन, सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूँ। कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है, कदमों की आहट सुनती हूँ, पलटती हूँ, उसे देखती हूँ, तस्वीर बन जाती हूँ, खुद को भूल जाती हूँ, बेखुद हो जाती हूँ।

0: इसी के साथ ही गीत गज़ल कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रोताओं, प्रातः के 4 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। माफ कीजिए, प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

மனசின்னுள்ளே மகிமகள் வந்தால் மகேஸ்வரன் வருமன்ன மணிகள்.

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। नाद ब्रह्म कार्यक्रम में अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत, प्रस्तुति तालावाद्य कचेरी की, साथ में येल्ला वेंकटेश्वरा राव, तालम आदि।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, संवत 1948 के भाद्रपद मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 अगस्त सन 2026 सुबह के 4:54 और ठीक 23 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, हमारी प्रातःकालीन सेवा में आरंभ होने वाले कार्यक्रमों का हम आपको विवरण दे दें। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होती है प्रातः 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। उसके उपरांत 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी समाचार।

6:10 का समय कार्यक्रम वंदना का है और 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन महात्मा बुद्ध।

6:45 पर रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 27 आप सुनेंगे 6:45 पर। छह बजकर पचपन मिनट पर आप सुन सकते हैं संस्कृत समाचार। प्रातः 7 बजे हिंदी समाचार होंगे और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुन सकते हैं संगीत का कार्यक्रम और गीतों भरी का समय 7:30 है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित

0: होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरू में भारत के पहले गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 तारीख तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सांची उप डाकघर का उद्घाटन आज शाम करीब 5 बजे वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत सरकार के डाकघर आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इस डाकघर का नवीनीकरण किया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी में तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। सूचना मिलते ही बचाव दल घने जंगल और दुर्गम इलाके से होते हुए लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर घटना स्थल पर पहुंचा। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री, पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। राष्ट्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

0: Royals Mohun Bagan Super Giants 4-1 in the final in Kolkata last evening. And the IMD has issued an orange alert for very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं, प्रातः के 5:10 और ठीक 23 सेकंड हुए हैं. आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, आओ योग करें.

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा